0: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 208.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी श्रीनगर समय वलियो मजलिस आगाज मजबूत प्रोग्राम सुबहगाही।
1: प्रोग्राम सुबहगाही सुनने वाले सभी सामीन की खिदमत में हमारा खुलूस भरा सलाम पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम के आगाज में आइए कुरान करीम की ان چند آیات مبارکہ کی تلاوت سنتے ہیں۔ آیات مبارکہ کی تلاوت کے بعد انہی آیات کا ترجمہ بھی نشر ہوگا۔

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। इस अवसर पर मुख्य कार्यक्रम आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: सुखिनः सर्वे संतो निरामया। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: इसके अलावा सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में एक विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम में 1500 वरिष्ठ नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। कार्यक्रम सुबह 7:30 बजे से सदर इलाके के गैरिसन ग्राउंड में होगा। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति आज कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जनजातीय समुदाय, चीतों की देखभाल करने वाले कर्मियों और उद्यान कर्मचारियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में ही नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रे का जलावतरण करेंगे। इनका विकास नौसेना युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोतों का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइलों और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। वहीं INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रे तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस एक पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। परीक्षा में 22,79,000 से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षा भारत के 551 और विदेशों के 14 शहरों में हो रही है। परीक्षा अंग्रेजी और 12 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जाएगी। परीक्षा से पहले कल राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA ने मॉकड्रिल का अभ्यास किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज राजस्थान में यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। श्री वैष्णव बीकानेर रेलवे स्टेशन से लालगढ़ साबरमती एक्सप्रेस को झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे जयपुर में खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। श्री वैष्णव उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा विकसित कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन करेंगे। पत्तनपोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मुज जल डमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं।

हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेराल्ड। श्री सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार भारत के समुद्री हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस को लगातार दूसरे वर्ष पासपोर्ट सेवा के लिए राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये पुरस्कार पासपोर्ट सत्यापन में तेजी, लोकोन्मुखी सेवा उपलब्धता और सुशासन में जम्मू कश्मीर पुलिस के उत्कृष्ट योगदान की मान्यता के तौर पर है। विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में ये पुरस्कार प्रदान किया। फीफा विश्व कप फुटबॉल में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती पर 3-0 की आसान जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सैर पे जाइए, सुबह की सैर पे, क्योंकि सेहत पे जब अच्छा असर पड़ेगा तो दिन के कामकाज भी मामूल के मुताबिक अच्छे से होते रहेंगे।
1: बिल्कुल।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप तक पहुंच रहा है एक नए रंग, नए आहंग और नई लय के साथ।
1: पल पल जाऊं मैं तोरे रंग दे जिमा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशिद सुनो,
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहां जाएगा हमें पाएगा।
5: लाइव मॉर्निंग शो पर सुबह आप इस वक्त आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। जी सकीना जी, हमने बात की कश्मीर के मौसम की और सुबह की सैर की। चूंकि आज 21 जून है और आज दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जा रहा है और इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग।
6: बिल्कुल, और थीम भी आपने बता दिया, तो सुनने वालों को मैं बता दूं कि यूमे योगा की मुनासिबत से श्रीनगर की मशहूर पोखरीबल झील में पहला फ्लोटिंग योगा सेशन मुनक्कद किया गया। वाटर स्पोर्ट्स के खिलाड़ियों और मकामी अफराद ने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म्स पर योगा की मशकें की, जिसका मकसद कुदरती माहौल में जहनी सुकून और जिस्मानी तंदुरुस्ती को फरोग देना है।
5: बिल्कुल, वादी भर में भी वसी पैमाने पर इज्तिमाआत मुनक्कद किए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर बांडीपोरा में जिले सतह का मरकजी प्रोग्राम एसकी स्टेडियम में मुनक्कद किया जा रहा है। इसके अलावा सुंबल और गुरेज में भी बैक वक्त योगा सेशंस का एहतमाम किया जा रहा है।
6: और माहरीन की अगर बात करें महराज, माहरीन के मुताबिक ये जो योगा है वो जहनी तनाव को कम करने और जिस्मानी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करता है।
5: बिल्कुल।
6: अब चूंकि मॉर्निंग में ही आपने बात की सुबह की सैर की, एक हिसाब से मेंटल हेल्थ की जब हम बात करते हैं तो ये कह सकते हैं जब तक आप मॉर्निंग में हिलेंगे डुलेंगे नहीं,
5: सही सही,
6: सेहत पे अच्छा असर कैसे पड़ेगा। और सुनने वालों को ये भी बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी इस दिन को भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है। वादी में सरकारी और निजी इदारों, स्कूलों और कैंपों, ये भी कह सकते हैं कि बशमूल जम्मू एयरपोर्ट और मुख्तलिफ तालीमी मराकज में कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत खसूसी योगा सेशंस का इनेकाद किया जा रहा है।
5: बिल्कुल, हुकूमत हिंद की वजारत आयुष और अक्वामी मुतहदक के तआवुन से दुनिया भर में इस दिन अवामी सतह पर योगा की मशकों का एहतमाम किया जाता है, ताकि लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में योगा को शामिल करने की तरगीब दी जा सके।
6: सो आज के दिन कश्मीर में क्या एक्टिविटीज होगी इस योगा डे के हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। और ये भी सुनने वालों के साथ में ये खबर शेयर करूं कि सबसे बड़ा रियासती सतह का इवेंट शेर कश्मीर श्रीनगर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर श्रीनगर में मुनक्कद किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जो शिरकत है वो मुतवक्के है। इस हवाले से हम बात करेंगे अपने कश्मीर के नुमाइंदे इमरान नायकू से चंद ही लम्हों के बाद। पहले एक प्यारा सा गीत अपने सुनने वालों को।
5: जरूर जरूर।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: अरे यार तू कहाँ ले आया मुझे? अम्मा तेरी भाभी ने घर का सामान मंगाया है, नहीं ले गया तो शामत है। सुना यहाँ ऑफर्स भी है।
2: ओह,
1: सॉस एक में एक फ्री, कुकिंग ऑयल 40% ऑफ, 5 किलो आटा 70 रुपए।
2: भाई ऑफर तो ठीक है, लेकिन क्वालिटी और लेवल का क्या?
1: अम्मा लेवल लेवल छोड़, ऑफर्स देख।
2: ओए ऑफर किंग, ऑफर के चक्कर में अपनी आंखें मत ऑफ कर। क्वालिटी पर रखने के लिए लेबल पे गौर कर। किसी भी खाद्य उत्पाद की प्रामाणिकता की पहचान उसका लेबल है। खरीदने से पहले लेबल की जांच अवश्य करें।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन जेएनके।
4: वर्क फ्रॉम होम, हाई सैलरी, बस एक क्लिक में। अरे वाह,
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: जी जिन दोस्तों ने अभी अभी अपने रेडियो से ऑन किया उनको हम बता दें कि आकाशवाणी श्रीनगर से आप लाइव शो एंजॉय कर रहे हैं पयाम ए सुबह। आज चूंकि वर्ल्ड योगा डे है, 12वां एडिशन है इसका, और तमाम जिला हेडक्वार्टर सहायती मकामात और महकमे आयुष के तमाम 642 मराकिस पर योगा की मशकें की जा रही हैं। और सबसे बड़ा इवेंट यहाँ पे SKICC श्रीनगर में हो रहा है। इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ चुके हमारे कश्मीर के नुमाइंदे इमरान नायकू, इनसे बात करेंगे क्या तफसीलात है योगा डे के हवाले से। हेलो
8: जी
7: इमरान, क्या तफसीलात है आपके पास? आज योगा डे है, सबसे बड़ी तकरीब SKICC श्रीनगर में हो रही है, तो बताइए आंखों देखा हाल।
8: जी बिल्कुल, मैं इस वक्त SKICC में हूँ। चूंकि आज दुनिया भर के साथ साथ मुल्क में भी और बिलखसूस वादी कश्मीर में 12वां बैन अल-अक्वामी योम योगा जोश और खरोश के साथ मनाया जा रहा है। और इस सिलसिले में जहाँ तक वादी कश्मीर का ताल्लुक है, तो यहाँ सबसे बड़ी और मरकजी तकरीब SKICC में मुनक्किद हो रही है। और यहाँ मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों अफराद शरीक हैं। तकरीब में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी यहाँ पे शरीक हुए हैं, जबकि वजीर तालीम व समाजी बहबूद सकीना यत्तू मेहमान एजाज के तौर पर मौजूद है। और इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, सीनियर सरकारी अफसरान, मुख्तलिफ महकमों के मुलाजमीन, तलबा, खिलाड़ी, रजाकारों और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी मौजूद हैं। और तकरीब

0: के दौरान जो पार्टिसिपेंट्स हैं इज्तिमाई तौर पर योगा के मुख्तलिफ आसन अंजाम दिए और योगा की अहमियत को उजागर किया जा रहा है। और यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि योगा न सिर्फ जिस्मानी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होता है बल्कि जहनी सुकून, रूहानी तवाजुन और मस्बत तर्ज जिंदगी के फरोग में भी अहम किरदार अदा करता है। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि योगा हिंदुस्तान की कदीम रिवायत और तहजीबी विरासत का एक अहम हिस्सा है जिसे आज पूरी दुनिया ने अपनाया है। और उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में जब दुनिया मुख्तलिफ चैलेंजेस और जहनी दबाव का सामना कर रही है, योगा सेहतमंद और मुतवाजन जिंदगी के लिए एक मौसर जरिया बनकर उभरा है। और वजीर तालीम ने भी आज यहाँ खिताब किया है और उन्होंने कहा कि योगा की अफादियत पर रोशनी डाली, कहा कि नौजवान नस्ल को योगा जैसी मजबूत सरगर्मियों में जोड़ने की जरूरत है ताकि वो जिस्मानी तौर और जहनी तौर पर सेहतमंद रह सके। और इस बात पर जोर दिया गया कि अगर दुनिया में अमन, हम आहंगी और तनाजात का खात्मा मतलूब तो है तो योगा के फलसफे को रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना है और खासकर ड्रग्स के खात्मे के लिए योगा को अहम करार दिया गया है। और इसके साथ साथ वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला और सरकारी महकमों के हेडक्वार्टर्स में भी योगा की मुनासबत से खसूसी तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है जहाँ सरकारी मुलाजमीन, तलबा और आम शहरी जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और पार्टिसिपेंट्स उम्मीद जाहिर कर रहे हैं कि इस तरह की सरगर्मियाँ सेहतमंद तर्ज जिंदगी के फरोग और आवाम में जिस्मानी व जहनी सेहत के हवाले से बेदारी पैदा करने में मुआविन साबित होंगी।
1: बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका तफसीलात शेयर करने के लिए, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता है हम आपको कॉल करते हैं, आप श्रीनगर के नुमाइंदे, आप चूंकि सबसे बड़ी तकरीब योगा के हवाले से SKICC श्रीनगर में मुनक्किद हो रही है, आपने पूरी डिटेल शेयर की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत शुक्रिया, थैंक यू।

0: जी दोस्तों, आज संडे का दिन है और संडे का थीम होता है गुड न्यूज़ अराउंड द वर्ल्ड।
1: बिल्कुल
0: तो खुशी की खबरें, मस्बत खबरें आपके साथ शेयर करेंगे। और सबसे पहले ये बात मैं शेयर करूं कि जम्मू कश्मीर और दुनिया भर में मस्बत और हौसला अफजा पेशरफ्तों के तहत कश्मीर में ये कह सकते हैं कि 4G इंटरनेट नेटवर्क दूर दराज इलाकों तक या तालीमी इदारों में तरक्की और सेहत आमा की स्कीमों को वसअत दी जा रही है और आलमी सतह पर काबिले तजदीद तवनाई के इस्तेमाल में तेज़ी से या और मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बैनुल अक्वामी सतह पर खातिरखा इकदाम किए जा रहे हैं।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी और मुस्बत खबर है ये। इसके साथ साथ इंटरनेट की फराहमी में भी तारीखी संग मील, कश्मीर के दूरदराज और सरहदी देहातों तक राबितों को मुस्तहकम करने के सेचुरेशन प्रोजेक्ट के तहत 4G के लिए सैकड़ों नए टेलीकॉम टावर्स फ़ाल कर दिए गए हैं, जिससे तकरीबन 1400 से जायद सरहदी देहात डिजिटल राबितों से मुंसलिक हो गए हैं।
0: और ये भी कि आला तालीमी इदारों में अंडर ग्रेजुएट और इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स के दाखिलों के लिए दस्तावेजात की तस्दीक की तारीख में तौसी की गई है ताकि तलबा की सहूलत को यकीनी बनाया जा सके।
1: बिल्कुल,
0: और ये भी है कि
1: श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरी से मुफ्त ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम का आगाज किया गया है, जिसका मकसद आवाम को मुफ्त तिब्बी जांच और मशावरत की सहूलियत फराहम करना है।
0: बहुत अच्छी खबर आपने शेयर
1: बिल्कुल
0: की। अगर सेहत के हवाले से हम बात करते हैं और आए दिन ये हम कहते रहते हैं जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं कि ये इलाज तो
1: सही
0: बड़ा
1: सही सही
0: दुर्गमत,
1: बिल्कुल
0: तो जब ऐसे कैंप्स मुनक्किद होते हैं जो पेशेंट्स होते हैं, जाहिर सी बात है उनको एक रिलीफ सा मिलता
1: बिल्कुल
0: है।
1: बिल्कुल
0: श्रीनगर के पापोर में मुनक्कदा आला सतही इजलास में रेशम की पैदावार के फ़रोग के लिए नए क्लस्टर्स बनाने और पैदावार को बढ़ाने का रोड मैप भी तैयार किया गया है, तो ये भी एक खुशी की बात है।
1: बिल्कुल, हमने कश्मीर की ये जम्मू कश्मीर की मस्बत खबरें आपके सामने, अपने सामीन के सामने शेयर की, और हम दुनिया भर की जो मस्बत खबरें हैं अपने सामीन को के साथ हम शेयर करेंगे। काबिलिश तजदीद तवानाई दुनिया के बेशतर ममालिक बशमूल यूरोपीय ममालिक और एशिया में शमसी और हवाई तवानाई के इस्तेमाल में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिससे कार्बन के अखराज में कमी और माहौल को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है।
0: और दोस्तों, आलमी तिबी साइंस की जानिब से कैंसर की तशखीस और इलाज में नई तकनीकों की दरियाफ्त हुई है जिससे इलाज की कामयाबी के तनासुब में बेहतरी आई है।
1: तरक्की पजीर ममालिक में डिजिटल टेक्नोलॉजी और AI के इस्तेमाल को मस्नूई जहानत तालीमी निज़ाम का हिस्सा बनाया जा रहा है, जिससे तलबा के लिए आलमी सतह पर सीखने के नए मौके पैदा हुए हैं।
0: देखिए, ये कुछ ऐसी इजादात हैं, ऐसी दरियाफ्तें हैं, ऐसी खोजें हैं जिससे इंसानियत को ही
1: फायदा
0: एक
1: मिल रहा है,
0: फ़ायदा मिल रहा है।
1: बिल्कुल
0: लेकिन जब हम AI की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो उसमें भी इंसानी जहन की कारकर्दगी
1: सही
0: शामिल
1: सही
0: है,
1: सही
0: ये इंसान को नहीं भूलना चाहिए। देखिए, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, लेकिन जहानत किसकी है?
1: बिल्कुल
0: इंसानों
1: इंसान के
0: की है।
1: इंसान के
0: तो कभी कभार जो पेरेंट्स होते हैं, सेलफोन बच्चों के हाथ में होता है तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चे से ये छीना जाए,
1: सही
0: लेकिन अब हम देख रहे हैं कि पढ़ाई का सिलसिला दिन ब दिन उसी तरफ हम टर्न होता हुआ देख रहे हैं,
1: सही
0: तो इससे हम दूर नहीं रह सकते हैं। लेकिन इतना कर सकते हैं कि जो सही तरीका है सेलफोन इस्तेमाल करने का या इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने
1: करने
0: का,
1: का
0: उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाए।
1: सही
0: बाकी हमारे साथ इस शो में बने रहिए, बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करनी है। फिलहाल ये कश्मीरी गीत आपके लिए।

0: जी दोस्तों, आज मुल्क भर में नीट का इम्तहान मुनक्कद किया जा रहा है और इसमें लाखों उम्मीदवार शिरकत करने जा रहे हैं और आज तमाम एस्पिरेंट्स बरसों की मेहनत के बाद इस इम्तहान में शरीक होने जा रहे हैं और वो भी रिशेड्यूल जब इसका डेट किया गया, क्योंकि
1: बिल्कुल,
0: पहली
1: बिल्कुल।
0: बार भी बच्चे बहुत जहनी परेशानी में मुब्तला हो
1: सही,
0: गए थे,
1: सही।
0: अब आज इसका डेट है तो कहना चाहेंगे कि
1: बिल्कुल सकीना जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जानिब से इम्तिहान के इनेकाद के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं, जबकि उम्मीदवारों को वक्त पर इम्तिहानी मराकज पहुँचने, ज़रूरी दस्तावेजात साथ रखने और तमाम हिदायत पर अमल करने की ताकीद की गई है।
0: जी, ये दिन आज हजारों नौजवानों के ख्वाबों को हकीकत में बदलने का दिन है। आज का दिन उन तमाम उम्मीदवारों के लिए सब्र और एतमाद का दिन भी है। आपको अपना 100% देना है, बाकी अल्लाह के हाथ में है।
1: बिल्कुल, कहा जाता है कि कामयाबी सिर्फ जहानत से नहीं बल्कि हौसले, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी से भी हासिल होती है।

0: पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अल्लाह आपकी राह में आसानियाँ करें।
1: आमीन।
0: और जितनी भी आपने तैयारियाँ की हैं, पहले आपको बड़ी दिक्कत का सामना हुआ, इंशाल्लाह आगे चल के बहुत आसाइशें होंगी।
1: सकीना जी, 7:05 हेतन सप्तन मे बसान बोजो गोशन खबरन हूं बुलेटिन।
0: बिल्कुल।
2: आदाब, यह आकाशवाणी। शबीर उज़्ज़मा बोजनावी खबर, गोड़े खास खास खबरन हिंद खुलासा। बैन अवी योगा डे च तकरीब चिकचाव सान जारी, कोलकाथास मन सारे खत बड़िस प्रोग्रामस मन कर वजीर आजमन योग करित कौमच कयादत। कौमी टेस्टिंग एजेंसी च आज मेडिकल कोर्सन मन नीट अंडर ग्रेजुएट 2017 इम्तिहान दोबारा मुनद करान। एस के आई सी सी श्रीनगर, श्रीनगर नालिंदा डायलॉग मुनद, लेफ्टिनेंट गवर्नरन दुत यह मुजाकर तरक्की याफ्त भारत नो नजरिए हमत सान ब्रोह पकन मौक करार। तो लेबनानस मज मुसलसल फौजी कारवैन हंदिस तनोजरस मज ईरानन आबनाए हरमुज बे बंद कर ऐलान कर्मुत। वेश खबर तफसील। आज योगा बैन अवी दोह मनान यूस की बैन अवी दुह मौजू योगा फार हेल्दी एजिंग थाना आमुत। यह मौजू कथ पे जोर दिवान जी योगा सेहतमंद फाल तो बावेकार जिंदगी गुजारने खतर पूर उम्र पान नाउन जरूरी। बैन अवी योगा दो 2017 सारे खत बड़ तकरीब सपज मगरबी बंगाल किस कोलकाथास मज तारीखी रेड रोडस पे मुनद ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी पान मुश्तरक योगा प्रोटोकाल च मशक मज कौम कयादत कर। यह प्रोग्राम सपूद आज सुबह 5 बजे शुरू यथ मज सास बदेव योग शायको पन बनफसी नफीस शिरकत कर जन मुल्क तो द्रुस दुनिया के लच्छ बदेव लोको अत प्रोग्रामस मज ऑनलाइन शिरकत कर। एम प्रोग्रामन वतलो योगुक बड़वुन आलमी किरदार युस सेहत हम आहंगी तो इज्तिमाई पापर जई वथ वाशर दिवान। अत मौकस पे वोन वजीर आजमन पन ख्याल जाहिर करान।
3: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
2: सकाफत च मरकजी वजारतन च मुल्क चन हतन जायन पे योग तकरीबन हुन संज कोरमुत। अत बारस मंज छु 12 अहम जायन बजन तकरीबन हुन एहतमाम यमन मज मुंबई महाबलीपुरम हेम्पी कोनाक सन टेम्पल हरिद्वार लाल किले हैदराबाद लेह सरनाथ अहमदाबाद नालिंदा ते सिलचर शामिल छु। सकाफती तौलुकातन मुतलिक भारतीय काउंसिल के अथवास छ द्रुस दुनियास मंज 10 खत ज्यादा भारतीय मिशनो देश करीब 500 शायन योग प्रोग्राम मुनद करने इवान। दिल मज इमन अहम जायन योग तकरीब मुनद सपदान तिमन मज शांति पथ लॉन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कर्तव्य पथ न्यू मोती बाग सेंट्रल पार्क तलकटोरा गार्डन तो यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल। नवी दिल्ली हिंदिस भारत मंडपस मज समाजी इंसाफ च वजारत तरफ बुजुर्ग शहरियन हिंदे अके खास योगा प्रोग्राम संज। जम्मू कश्मीर मज आज बैन अवी योगा डे जोश तो जज्ब सान मना मन सपज सारे खत बड़ तकरीब डल बठिस पे वाका एस के आई सी सी एस मज ये 7,000 खत त्याद नफरों योग आसन मन हिस्स नियु। तकरीब हिंस कयादत करान दुत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान अख सेहतमंद जिंदगी गुजारने बापत योगा पन्ने दोह दिश च जिंदगी हुन हिस्स बनावनस पे जोर। तमो वोन योगास मन यह ताकत जी बुलराव मनशियात कन शिकार गमत नफरन त तो कर अख मुनशियात निश पाक तो सेहतमंद मुल्क कयाम बनावि यकीनी।
4: जीवन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा उत्साह आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती बल्कि शारीरिक मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है हजारों

दिन में 1:10 पर मगरिबी मौसीकी का हफ्तावार प्रोग्राम पेश होगा, संडे रिक्वेस्ट शो। प्रोग्राम नई मंजिलें ब्रॉडकास्ट होगा दिन में 2:30 पर। पहाड़ी प्रोग्राम 4 पेश होगा, इसमें असमा शबीर की बातचीत पेश होगी, मौजू है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। पंजाबी प्रोग्राम नश होगा 4:30 पर, इसमें बैन अवी योगा दिन पर बात करेंगे सुरजीत सिंह। गोजर प्रोग्राम में शाम 5 इंटरनेशनल योगा डे पर बात होगी। इसके अलावा जीनत अमीन की बातचीत भी पेश होगी प्रोग्राम में, मौजू है योगा। शाम 6:05 पर गर्मी बाइन हिंद खतर प्रोग्राम पेश होगा। प्रोग्राम में मामूल के अलावा आलमी योमी योगा पर बात होगी। इसके अलावा सैन गाम सैन मसाइल सिलसिले के तहत गुलाम अहमद भट्ट भी बातचीत प्रोग्राम में पेश करेंगे। हालात हाजरा का प्रोग्राम शहर बीन आप सुनते हैं हर रोज शाम 7 और वादी की आवाज़ प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा रात 8। सामिन ये थी तफसील, अब के बाद आज हमारे यहाँ से नश्र होने वाले बकिया प्रोग्रामों की।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। दुनिया भर में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के तीन स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और आग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे तीन टैंकरों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से। अब समाचार विस्तार से। देश भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व कर रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को एक साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है।
1: भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: कई केंद्रीय और राज्य मंत्री भी कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों को बधाई दी है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और जीवन को शांतिपूर्ण बनाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संदेश में कहा कि योग भारत की प्राचीन ज्ञान परम्परा का प्रतीक है जो मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। इस अवसर पर विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में योग सत्र में भाग लिया। भारत में नॉर्वे की राजदूत मेयलिन स्टेनर भी कार्यक्रम में शामिल हुईं। ब्रह्मकुमारी संगठन ने ऐतिहासिक लाल किले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इसमें लगभग 20,000 लोगों ने भाग लिया।

0: आज उत्तर प्रदेश में भी विशेष योग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष और सभी राज्य मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न जिलों में आयोजित योग सत्रों में भागीदारी की। आज गुजरात में भी कई जिलों में योग सत्र आयोजित किए गए। मुख्य आयोजन गांधीनगर के मनसा में हो रहा है, जहां मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल उपस्थित हैं। गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद के प्रहलाद नगर में योग कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। ओडिशा में हजारों लोग योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। प्रमुख आयोजन विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के प्रांगण में किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
1: उड़ीसा ने आज पूरे देश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जश्न बड़े उत्साह और लोगों की भारी भागदारी के साथ

0: आया जा रहा है। इस साल के आयोजन के लिए चुने गए 12 खास हेरिटेज स्थलों में से एक मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर में एक भव्य योग सत्र आयोजित किया गया, जिसमें हर वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया। भुवनेश्वर में राज्य स्तरीय समारोह में शामिल होते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने कहा कि योग जीवन का एक अहम हिस्सा है और इसके लिए उम्र की कोई सीमा नहीं होती। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योगा फॉर हेल्दी एजिंग की थीम पर मनाए गए इस समारोह के साथ ही एक हफ्ते तक चल योग महोत्सव का समापन भी हुआ। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इधर नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और संगठन योग सत्रों में भाग ले रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने शांति पथ पर समारोह में भाग लिया। श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है और इस अवसर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आनंद।
2: संस्कृति मंत्रालय द्वारा देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्थलों और योग परंपराओं को जोड़ते हुए देश भर के 100 विशेष स्थानों पर योग के विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस पहल के तहत 12 प्रमुख स्थलों पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिनमें नई दिल्ली में लाल किला, उत्तराखंड में हरिद्वार, उड़ीसा में कोणार्क, कर्नाटक में हम्पी, तमिलनाडु में महाबलीपुरम, महाराष्ट्र में मुंबई, बिहार में नालंदा, गुजरात में अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, लद्दाख में लेह, तेलंगाना में हैदराबाद और असम में सिलचर शामिल है। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर विदेशों में मौजूद 210 से ज्यादा भारतीय मिशन लगभग 2500 स्थानों पर योग कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। ये कार्यक्रम सदर इलाके गैरिसन ग्राउंड में आयोजित किया गया। राष्ट्रपति आज रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि भी होंगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उद्देश्य लोगों को ध्यान के महत्व से अवगत कराना और मानसिक, शारीरिक तथा भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है।
3: ध्यानेनात्मानि पश्यन्ते केचिदात्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जिसका उल्लेख वेदों, उपनिषदों और ग्रंथों में मिलता है। ये शरीर को स्वस्थ रखने, मन को एकाग्र करने, आत्म चेतना बढ़ाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। योग की ही एक शाखा ध्यान भी है। ध्यान प्राणायाम के माध्यम से मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। अगर कुछ यूं कहा जाए कि ध्यान सचेतन नींद है और नींद अचेतन ध्यान, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि ध्यान एक तरह निद्रा की ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति एक तरह की नींद में तो होता है, लेकिन साथ ही उस समय उसके भीतर पूर्ण चेतना भी होती है। ठीक इसके उलट नींद में व्यक्ति चेतना में तो होता है, लेकिन उसके मन के भीतर तमाम तरह के विचार हिलोरे ले रहे होते हैं। वैज्ञानिक शोध भी ये सिद्ध करते हैं कि योग और ध्यान करने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है और व्यक्ति की कार्य क्षमता बढ़ती है। विश्व योग दिवस हमें ये संदेश देता है कि आंतरिक शांति और संतुलन के बिना वैश्विक विकास की संकल्पना अधूरी है। इसीलिए कहा भी गया है कि योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कुशलता के साथ कर्म करना ही योग है।
1: इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: नौसेना के बेड़े में शामिल किए जाने वाले इन पोत का विकास नौसेना युद्ध पोत डिजाइन ब्यूरो ने और निर्माण गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने किया है। इन पोत का उद्देश्य युद्धक अभियानों, जल सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों को मजबूती प्रदान करना है। INS दुनागिरी ब्रह्मोस मिसाइल और मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणालियों से लैस है। INS संशोधक को तटवर्ती और गहरे पानी के जल सर्वेक्षण अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है। INS अग्रह तटीय रक्षा के लिए टॉरपीडो, रॉकेट लॉन्चर और सोनार प्रणालियों से लैस पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है। नौसेना ने कहा कि इनमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है और इसमें 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी रही है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
1: स्नातक मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट की आज दोबारा परीक्षा ली जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परीक्षा सफल रूप से कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं।
5: परीक्षा के सुरक्षित, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए पर्यवेक्षकों, समन्वयकों, पुलिस बलों और प्रशासनिक अधिकारियों सहित 2

0: लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती की गई है। निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। NTA भ्रामक सूचनाओं पर रोक लगाने और किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी सक्रिय रूप से निगरानी कर रहा है। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक आयोजित की जाएगी। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय ध्वज वाले 3 टैंकर सफलतापूर्वक होर्मोज जलडमरू मध्य को पार कर स्वदेश आ रहे हैं। इनमें 8,60,000 मीट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल है। ये टैंकर हैं देश वैभव, देश विभोर और सनमार हेलाड। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सरकार अपने नाविकों और ऊर्जा क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी एजेंसियों के साथ तालमेल बिठा रही है। 19वां मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज संपन्न हो रहा है। ये वर्ष 15 जून को शुरू हुआ था। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 5 दिनों तक सिनेमा का शानदार उत्सव प्रस्तुत करने के बाद मिफ 2026 का आज समापन होगा। मिफ के अंतिम दिन महान फिल्मकार वी शांताराम की 125वें जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उनकी स्मृति को समर्पित फिल्म वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट का प्रदर्शन होगा। आज शाम मुंबई के रविन्द्र नाट्य मंदिर में आयोजित होने वाले समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिता वर्गो की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को कुल 18 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इन पुरस्कारों में ट्रॉफी और प्रमाण पत्रों के साथ कुल 45,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। अंकिता आप्टे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज हम चर्चा कर रहे हैं असम के नौगांव जिले की जुमरमुर पंचायत के प्रयासों पर। इस पंचायत को हाल ही में स्वच्छ और हरित पंचायत श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चर्चा आज सुबह 9:10 पर 100.1 फ्रीक्वेंसी पर आकाशवाणी गोल्ड चैनल पर सुनी जा सकेगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल और सिक्किम में हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय में भी बृहस्पतिवार तक कुछ स्थानों में तेज वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में इस महीने की 26 तारीख तक अत्यधिक बारिश की संभावना है। इस बीच विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में अगले 3 से 4 दिनों तक कुछ स्थानों पर लू चलने की आशंका व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मछुआरों को इस महीने की 25 तारीख तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में न जाने की सलाह दी है। श्रीलंका में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम अपने अंतिम राउंड रॉबिन मैच में अफगानिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंची है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। प्रतियोगिता में कल रात नीदरलैंड्स ने स्वीडन पर 5-1 से शानदार जीत दर्ज की। कल ही ब्राजील ने भी हैती को 3-0 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर।
3: धन्यवाद फरहत। NTA ने सख्त सुरक्षा इंतजामों के साथ आज नीट UG पुनः परीक्षा कराने की तैयारी पूरी कर ली है। सभी समाचार पत्रों की ये पहली खबर बनी है। हिंदुस्तान लिखता है अभूतपूर्व इंतजामों के बीच आज दोबारा नीट। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं नीट का शुद्धि योग, छात्रों से ज्यादा सिस्टम की परीक्षा। लेबनान में इसराइल के हमले, हारमूज फिर बंद, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स ने भी इस खबर को अहमियत दी है। ईरान ने अमरीका को घेरा, इसराइल अपनी सुरक्षा पर अड़ा। मानसून की 2 हफ्ते की सुस्ती टूटेगी, 23 से फिर आगे बढ़ेगा, दैनिक भास्कर की खबर है। योग करने में भी महिलाओं ने पुरुषों को पछाड़ा, दुनिया में योग का बिजनेस 12,00,000 करोड़ तो भारत में 57,000 करोड़ पार, लोकसत्व की सुर्खी है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दैनिक जागरण ने भी योग को अपने संपादकीय पन्ने पर अहमियत दी है। पत्र लिखता है मानवीय क्षमता बढ़ाता है योग। 7 सबसे ऊंचे शिखर छूने के करीब उत्तराखंड का युवा रुद्रप्रयाग के आकाश नेगी ने फतेह की यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है दुनिया के सभी महाद्वीपों के 7 शिखरों में से 6 पर फतेह की, अब अंटार्कटिका की बारी। आज फादर्स डे पर विशेष राजस्थान पत्रिका ने भावुक कर देने वाली खबर सचित्र प्रकाशित की है। पत्र लिखता है पिता नहीं रहे पर हर दिन मिल रहा उनका आशीर्वाद, प्रतिमाओं में स्मृतियां, हर शुभ कार्य से पहले लेते हैं बच्चे आशीर्वाद।
1: धन्यवाद रवि। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दुनिया भर में आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड पर योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में नौसेना के 3 स्वदेशी पोतों INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण करेंगे। चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए देश विदेश में नीट UG पुनर्परीक्षा आज। कच्चा तेल लेकर भारत आ रहे 3 टैंकरों ने होर्मुज जल डमरू मध्य पार किया। पश्चिम बंगाल में हिमालय

के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट और त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: भारत की मालामाल सकाफती विरासत को उसकी पायदार योग रिवायात के साथ जोड़ रही है। बड़ी तकरीबात नई दिल्ली में, लाल किला, हरिद्वार, कोनार, हम्पी, महाबलीपुरम, मुंबई, नालंदा, अहमदाबाद, सारनाथ, लेह, हैदराबाद और सिलचर समेत 12 अहम मुकामात पर मुनाकिद की जा रही हैं। आयुष की वजारत ने कहा है कि 6 लाख से ज़्यादा तंजीमों ने योग संगम पोर्टल पर इंदराज कराया है, जिससे इस साल की तकरीबात में आवाम की बेमिसाल शिरकत की अक्कासी होती है। बैन अलाक्वामी सतह पर 210 से ज़्यादा भारतीय मिशन सकाफती ताल्लुकात के लिए भारतीय कौंसिल की मजबूत कोशिशों के जरिए दुनिया भर में तकरीबन 2500 मुकामात पर योग तकरीबात का इनेकाद कर रही है। दिल्ली में योग तकरीबात कई अहम मुकामात पर मुनक़िद हो रही हैं। नीज योग तकरीबात शांति पथ, कर्तव्य पथ, न्यू मोती बाग, कनॉट प्लेस में सेंट्रल पार्क, तालकटोरा गार्डन और यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हो रही हैं। दिल्ली से रोहन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में रियासती सतह के योग के आलमी दिन के प्रोग्राम में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। ये तकरीब सादर में गैरिसन ग्राउंड में मुनक़िद हुई थी। योग के दिन की तकरीब के बाद सदर जमहूरिया रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी पहुंचेंगी, जहां वो मेहमान खसूसी की हैसियत से यूनिवर्सिटी के 36वें तकसीम असनाद की तकरीब में शिरकत करेंगी। गवर्नर मंगू भाई पटेल भी इस तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में सदर जमहूरिया कूनो नेशनल पार्क जाएंगी, जहाँ वो सहरिया कबायली बिरादरी, चीता ट्रैकर्स और पार्क की फील्ड टीम के अरकान से मुलाकात करेंगी। योग का 12वां सालाना बैन अलाक्वामी दिन मनाने के लिए कौमी राजधानी खित्ते में बहुत से मरकजी वजरा और तंजीमें योग सेशंस में शिरकत कर रही हैं। सेहत के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने आज शांति पथ में योग के दिन की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक इज्तमा से खिताब करते हुए जनाब नड्डा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने योग को आलमी सतह पर ले जाकर जबरदस्त खिदमात अंजाम दी हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज योग के 12वें सालाना बैन अलाक्वामी दिन के मौके पर नई दिल्ली के नेहरू पार्क में योग तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में भारत में नॉर्वे के सफीर मे एलन स्ट्रेनर भी शामिल हुए। खेलों के मरकजी वजीर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में योग के आलमी दिन की तकरीबात में हिस्सा लिया। अदाकार अक्षय कुमार योग सेशन खेलों के वजीर के साथ शामिल हुए। ब्रह्मा कुमारी तंजीम ने भी नई दिल्ली में लाल किले पर योग के आलमी दिन की तकरीब मनाई। उत्तर प्रदेश में आज योग के आलमी दिन के मौके पर खसूसी योग प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। गवर्नर, वजीर आला, नायब वजीर आला, कानून साज असम्बली के स्पीकर, कानून साज कौंसिल के चेयरमैन और रियासत के सभी वजरा ने मुख्तलिफ जिलों में मुनक़िद योग तकरीबात में शिरकत की। सऊदी अरब के रियाद शहर में 500 से ज्यादा शुरका ने कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। आज योग के आलमी दिन से पहले कल मगरबी ममालिक में योग से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने बड़े ग्रुपों में योग की वर्जिश की। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो कानून साज असेंबली में सरकारी नुमाइंदों, सिफारती तंजीमों, योग की मश्क करने वालों और तंदरुस्ती से मुतालिक इदारों और कम्युनिटी रहनुमाओं ने योग के एक पुरजोश मश्क में हिस्सा लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में भारतीय बहरिया के प्लेटफॉर्म्स में देसी टेक्नोलॉजी से तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म अंजाम देंगे। बहरिया के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो के जरिए डिजाइन किया गया और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के जरिए तैयार किए गए ये तीनों बहरी जहाज लड़ने की कार्रवाइयों की सलाहियतों को मुस्तहकम करेंगे। इसके अलावा ये हाइड्रोग्राफिक सर्वे और बहरी आबदोज शिकन जंगी सलाहियत को भी मुस्तहकम करेंगे। INS दुनागिरी एक प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट है, जिसका मकसद ब्रह्मोस मिसाइल्स और दरमियानी दूरी की फिजाई दिफाई निजाम से लैस किया गया है। INS संशोधक एक निगरानी करने वाला जहाज है, जो साहिली और गहरे पानी में हाइड्रोग्राफिक ऑपरेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जबकि INS अग्रह एक आबदोज शिकन जंगी बहरी जहाज है, जिसे टॉर्पेडोज, रॉकेट लॉन्चर्स और सुनार निजाम से लैस किया गया है। ये साहिली दिफा के लिए तैयार किया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। कौमी अहलियत और दाखिले का टेस्ट नीट UG 2026 का दोबारा इम्तिहान आज कराया जाएगा। नीट UG

0: 2026 का दोबारा इम्तिहान भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्कों के 14 शहरों में मुनाकिद होगा, जिसमें 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार इम्तिहान में बैठेंगे। इम्तिहान अंग्रेजी और 12 भारतीय जबानों में मुनाकिद कराए जा रहे हैं। इम्तिहान से कबल इम्तिहान कराने वाली कौमी एजेंसी NTA ने सभी निजाम जैमर्स, CCTV, तलाशी लेने वाले अमले और बायोमेट्रिक की तस्दीक करने के लिए कल कौमी पैमाने पर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया था। NTA ने कहा है कि वो साफ शफाफ और खुश उसलूबी से इम्तिहान मुनाकिद कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: नीट के इम्तिहान को साफ और शफाफ और खुश उसलूबी से कराने के लिए मुशाहिदीन, कोऑर्डिनेटर्स, पुलिस फोर्सेज और मुंतजमीन समेत 2,00,000 से ज्यादा अमले को तैनात किया गया है। साफ शफाफ और मुनसिफाना इम्तिहान को यकीनी बनाने के लिए एक कसीर सतही सिक्योरिटी फ्रेमवर्क भी तैनात किया गया है। इसमें CCTV, निगरानी कैमरे, आधार पर मबनी बायोमेट्रिक तस्दीक, सील बंद प्रोटोकॉल के तहत मखसूस मकामात पर खुफिया इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान को महफूज तरीके से हवाले करने और इम्तिहान से मुतालिक साजो सामान की नकल व हमल के लिए GPS से लैस गाड़ियाँ शामिल हैं। NTA गलत मालूमात को रोकने, बेजाबतगी खत्म करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से निगरानी भी कर रही है। नीट के इम्तिहान आज 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक मुनक़िद होंगे। दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि 8.6 लाख मेट्रिक टन से ज्यादा की खेप के साथ भारतीय परचम बरदार खाम तेल के 3 टैंकर्स ने कल आबनाए हुरमुज को कामयाबी के साथ पार कर लिया है और अब वो भारत आ रहे हैं। इन टैंकरों में भारतीय अमले के 94 अफराद सवार हैं। इन टैंकरों के नाम में देश वैभव, देश विभोर और सेमर हेराल्ड हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब सोनोवाल ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की फैसला कुन क्यादत में हुकूमत भारतीय बहरी मफादात के तहफ्फुज़ को सबसे ज्यादा तरजीह देने पर काम कर रही है। जनाब सोनोवाल ने कहा कि उनकी वजारत भारतीय मल्लाहों और तवानाई की लाइफ लाइन्स को मुकम्मल तौर पर महफूज बनाने की जमानत के लिए तमाम मुतल्लिका एजेंसियों के साथ सरगर्म तरीके से तालमेल कायम कर रही है। 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल MIFF आज इख्तिताम पजीर हो जाएगा। 10 आवेजी फिल्मों, शॉर्ट फिक्शन, एनिमेशन और AI सिनेमा का ये 2 साला फेस्टिवल 15 जून को शुरू हुआ था और आज रात एक शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ खत्म होगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: सिनेमा के शानदार रंगों से भरे 5 दिनों के बाद मिर 2026 आज इख्तिताम पजीर होगा। ताहम इख्तितामी तकरीब से पहले फिल्म शायकीन के पास मुख्तलिफ सेक्शंस में प्रिज्म, बेस्ट ऑफ फेस्ट, नेशनल कंपटीशन, मोजेक और इंडिया लाइव्स एंड लैंडस्केप्स के तहत गैर फिक्शन कहानियों की ताकत का तजर्बा करने का एक और दिन होगा। मिफ के आखिरी दिन की अहम तरीन पेशकश में से एक वी शांताराम द पायनियरिंग स्पिरिट की स्क्रीनिंग होगी, जो इस लेजेंडरी फिल्म साज की 125वीं सालगिरह के मौके पर दिखाई जा रही है। आशा मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में मुनाकिद होने वाली इख्तितामी तकरीब में बैनर अक्वामी और कौमी मुकाबलों के ज़ुमर में बेहतरीन फिल्मों को 18 अवार्ड दिए जाएंगे। मुंबई से अंकित आपटे की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: भारतीय महकमा मौसमियात ने आज जैली हिमालयाई मगरबी बंगाल और सिक्किम में और बहुत तेज बारिश के सबब रेड अलर्ट जारी किया है। महकमे ने जुमेरात तक असम, मेघालय में इक्का दुक्का मकामात पर भी तेज बारिश की पेशगोई की है। क्रिकेट में आज डिम्बोला में खेली जाने वाली 3 मुल्कों की सीरीज के फाइनल में इंडिया ए का मुकाबला श्रीलंका ए से होगा। अपने साबिका मैच में शिकस्त को भुलाते हुए इंडिया ए श्रीलंका ए को हराने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने आज योग के आलमी दिन से मुतल्लिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार प्रताप की सिलसिले में शह सुर्खी है, आयोग के बैन अक्वामी दिन के मौके पर आयुष की वजारत ने लोगों से बड़ी तादाद में हिस्सा लेने की अपील की। अखबार इंकलाब की सुर्खी है, सख्त सिक्योरिटी के दरमियान नीट इम्तिहान आज, शफाफ और नकल से पाक, इम्तिहान के लिए मरकज और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बड़ी तैयारियां। अखबारात ने उड़ीसा में वजीर आजम के हाथों 47,600 करोड़ रुपए के मंसूबे का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने से मुतल्लिक खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है।
0: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। आज दुनिया भर में योग का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में तारीखी रेड रूट से मुश्तरका योग प्रोटोकॉल अपनाने में मुल्क की क्यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज कोलकाता में 3 बहरी जंगी जहाजों आई

0: दुनागरी INS संशोधक और INS अग्रह को पानी में उतारकर बहरिया में शामिल करने की रस्म भी अंजाम देंगे। इम्तिहान मुनाकिद कराने वाली कौमी एजेंसी आज से पहर भारत और बैरून मुल्क में नीट UG के दोबारा इम्तिहान मुनाकिद कराएगी। भारतीय परचम बरदार 3 ऑयल टैंकर्स ने कामयाबी के साथ आबनाए हुरमुज पार कर लिया है, जिसमें 8.6 लाख से ज्यादा मैट्रिक टन तेल लदा है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। सुबह के 8:45 हुए हैं। पेश स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम खामोशी कुदरत की जुबान है।
2: खामोशी कुदरत की जुबान है। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउफुन कर रहे हैं डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स, लाल चौक अनंतनाग, कोट रोड, शुपया।

0: ऑपरेशन होता है। अक्सर दोनों टांगों में इस तरह की सनसनाहट या जनजनाहट बोलिए, इस तरह की अलामत पाई जाती हैं।
1: जी जी।
0: इस तरह से एक और दर्द है कि मरीज जो है हाथ एक साइड में ऐसे देके फिर वो चलने लगता है। तो ऐसे हाथ देने से ये पता चलता है कि भैया इसका एक साइड का जो सैक्रोइलियक जॉइंट है वहां पर दर्द है, और इसको हाथ रखने से वहां शायद कुछ सपोर्ट मिलता होगा मसल्स को, तो इस तरह से वो गुड फील करता है। तो हमें फिर उस साइड के हाथ को देखना चाहिए। कभी शाटिका में भी हाथ रख सकता है इंसान, या कहीं खड़ा है तो कोई ना कोई सपोर्ट वो उस साइड से जरूर ले लेगा जिस साइड से उसको वो दर्द हो। यानी अगर मान लीजिए अगर शाटिका का ही दर्द है तो वो इस साइड से जा रहा है, तो इस साइड से अगर वो दोनों पांव पे बराबर बराबर जोर डाले तो यहाँ पर शायद उससे दर्द ज्यादा होता है, तो वो इस साइड से कोशिश करेगा कि कोई ना कोई सपोर्ट में ले लूं, और सपोर्ट लेने से क्या होगा कि वो जो दबाव इस टांग पे आ रहा है वो कम आ जाए। तो इस तरह से भी एक किस्म का दर्द जो है वो देखा जा सकता है। और एक दर्द और भी है कि मरीज को कहा जाता है कि भैया कहाँ पर दर्द है, तो वो दिखाता है कि ये कमर में दर्द है, तो पूरे हाथ से दिखाएगा कि यहाँ से यहाँ तक दर्द है। फिर उसे कहेंगे आप नहीं एक उंगली से दिखाओ मुझे दर्द कहाँ पर है
1: जी।
0: तो एक उंगली फेर के वो दो तीन उंगलियां चार पांच उंगलियां फिर इकट्ठे उसे दिखाता है, मतलब एक उंगली से वो दिखा नहीं पाता है कि कहाँ पर दर्द है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिन पॉइंट पेन नहीं है। पिन पॉइंट पेन हमेशा नर्वस में होती है उमूमन, मगर जब मस्क्यूलर दर्द हो तो वहां पिन पॉइंट पेन नहीं होती, इसलिए इंसान एक हाथ से दिखा रहा है। तो ये सारे मसल्स जो हैं या कोई एक मसल जहां की तरफ वो हाथ फेरता है तो वहां पर इस तरह का दर्द होता है
1: जी।
0: और कभी कभार अगर नर्व इंजर्ड हो गई हो, जैसे हर्पीज में नर्व हो जाती है, तो उस दर्द के साथ साथ जलन भी होती है। मान लो किसी के थाई पे निकल गया हर्पीज, तो वो ऐसे ही दिखाएगा जहां से नर्व रूट है वैसे ही दिखाएगा कहां से कहां तक दर्द है। तो इसी तरह से अगर हम देखें कि न्यूरोपैथीज है, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज, तो उसमें जब मरीज से पूछा जाता है कि भैया किस तरह का दर्द है, तो वो बोलता है कि सुई चुभने वाला जैसा दर्द है। यानी वो होता है कि आपके नर्व्स कहीं ना कहीं जो छोटे छोटे नर्व्स आपकी पेरिफेरीज में जाती हैं वो कहीं ना कहीं उनमें इंजरीज पैदा हुई होती हैं। डायबिटीज में भी इस तरह का होता है जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो इस तरह के दर्द जो है वहां पर भी पैदा होते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार होता क्या है कि इन मसल्स में जो थाई मसल्स हैं, जो काफ मसल्स हैं, इनमें स्पाज्म आया होता है। स्पाज्म के मतलब टाइटनेस मसल्स में। तो इसके मरीज के जो चलने का अंदाज होता है वो ऐसे झुक के चलेगा और टांगे भी ऐसे झुक के रहेगा, क्योंकि जो ही उसने अपने आप को स्टैंड किया बिल्कुल इरेक्ट पोजीशन में तो ये दुखने लगती हैं। तो उसमें बेसिकली अक्सर ये जो अमराज जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, अक्सर यहाँ पर दवाओं का ज्यादा रोल नहीं होता है। अब अगर दवाओं का रोल है तो वो टेम्परेरी होना चाहिए। उसका मकसद सिर्फ इतना होना चाहिए कि अगर आप कहीं न्यूरोटॉनिक देते हैं कि नर्व को कुछ ताकत मिलेगी, तो इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिए। एतराज तब होता है कि जब आप दर्द की दवाई महीनों भर खिलाते रहेंगे, स्टेरॉइड्स महीनों भर खिलाते रहेंगे, इवन साल हा साल चलाएंगे
1: जी।
0: तो मैंने ऐसे बहुत सारे मरीज देखे हैं कि जिन्हें इन दर्द की दवाओं की वजह से या तो लिवर की सिरोसिस हो गए या तो किडनी का फेलियर हो गया, तो वो एक बड़ी मुसीबत को दावत देनी होती है। उससे बेहतर मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि भैया ये जो दर्द है इसके साथ दोस्ती कर लो, इसके साथ एक रिश्तेदारी बना दो, यही दर्द आपका अपना है, वो दवा आपकी अपनी नहीं है। तो हम लोग बेसिकली हमारा प्रोटोकॉल क्या है, हमारा तरीका क्या है, वो ये है कि भाई इन सब दर्दों को हम दवा के बगैर जो है ठीक करने की कोशिश करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी आप एक मरीज की आपने क्लिप सुनी, ये बेचारे गुरेज के थे, एक्यूट रेडिकुलोपैथी थी, लवर बैक एक फिर रेडिकुलोपैथी, और इसको कोई एक्सीडेंट हुआ है या छत से गिर गया है। तो फिर ये जब आया मेरे पास तो मैंने इसको कहा, हालांकि स्टेरॉइड एमआरआई तीन तीन जगह या दो दो जगह लोगों ने करवाया,

0: है कि नहीं जी यहाँ पर अच्छा नहीं होता है, वहां पर करवा लो। और एक गरीब इंसान ही जानता है कि दो दो बार एमआरआई करने से उसके बेचारे के खर्चे कितने हो
1: हालत
0: जाते
1: खराब
0: हैं,
1: हो
0: वक्त
1: जाती है
0: कितना जाया
1: बिल्कुल।
0: हो जाता है। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी चीजें जो भी मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों ने अप्लाई कर लिए। मैंने उसको आते ही कहा कि अभी आपको फर्क हो जाएगा। वो माँ थी, बेटा था, बाप था, और तीनों हैरान हो गए मुझे देख के। हालांकि मैंने बेड पे भी तब तक नहीं लिया था, क्योंकि उसके चलने के अंदाज से मैंने पता किया कि भैया इसमें स्पाज़म बहुत आया है और नर्व दब चुकी हैं, और मुझे किसी तरह से इसको आज ही रिलीफ। मैंने क्या किया, सिर्फ स्ट्रेट लेट रेजिंग इन 90 एंगल पे हमने रेज की, और फिर हमने एक स्ट्रेच जिसको हम साइड स्ट्रेच बोलते हैं वो किया। दो तीन बार उसने चलाना शुरू कर दिया और उसी स्ट्रेच से ये इंसान जो है बिल्कुल ठीक हुआ।
1: ठीक हो गया
0: फिर मैंने
1: बिल्कुल।
0: जिसका एक्सरे देखा तो इसमें मैंने देखा कि सबलक्जेशन है। जब ये गिरा होगा तो होता क्या है कि ये जो सैक्रल बोन है, एक बोन थोड़ी सी खिसक गई है, 1-2 mm भी अगर खिसक गई ये भी बहुत बड़ी बात है दर्द उठाने के लिए। तो हमने वहां पर उसको कायरो किया और वो बोन भी खटक करके अपनी जगह वापस आ गए। उसके बाद जो मसल्स इन्वॉल्व हुए थे, मसाज किया उसको, उसको टकोर किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 1.5 आवर आई थिंक सो, तो इतने ही टाइम में वो
1: इफाक मिल
0: पेन
1: गया।
0: फ्री हो गया और 3 महीने के बाद उसको इफाका मिल गया। तो हमें कहने का मकसद क्या है, कहने का मकसद ये है कि भैया रेजिमेंटल थेरेपीज दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस इन LVS, और जो आपके शैट का दर्द है दिस शुड बी द फर्स्ट चॉइस। पुराने कमर दर्द है, कोशिश कीजिए जितनी आप दवाओं से बच सकते हैं बच जाइए, क्योंकि ये तरीके आपके लिए बहुत बेहतर हैं
1: बिल्कुल
0: और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। अब सवाल है आना किधर है। हमारे यहाँ अनंतनाग में लाल चौक में यूनानी पंचकर्मा हॉस्पिटल है, आज इतवार के दिन मैं वहाँ रहता हूँ। कल हमारा डे रहेगा यहाँ पर नटीपोरा, जो हमारा सेंटर है यूनानी पंचकर्मा इकबाल कॉलोनी में,
1: जी।
0: वहाँ रहूँगा। परसों ट्यूसडेज को हमारा सिकड़ावर सेंटर है ईदगाह श्रीनगर में, तो मैं बजाय खुद वहां रहूंगा। मेरे कहने का मकसद यह है कि ये कभी भी इस तरह की चीजें मेरे अकेली जात से वाबस्ता नहीं होती हैं, दिस इज टीम वर्क।
1: बिल्कुल
0: और इसी तरह से हमारे हर सेंटर में, जो एक सेंटर हमारा मागाम में है बायस हायर सेकेंडरी के सामने, वहाँ डॉक्टर जान साहब होते हैं, एक सेंटर हमारा उर्दू बाजार बारामूला में है, वहाँ डॉक्टर शौकत साहब हमारे पेन मैनेजमेंट के हैं, इसी तरह से बाकी डॉक्टर साहिबान भी हैं। इसी तरह से शुपियन के सेंटर में हमारे डॉक्टर माजिद साहब होते हैं, डॉक्टर अब्बास साहब होते हैं, और एक और सेंटर हमारा त्राल में है, वहाँ डॉक्टर फारूक साहब होते हैं, डॉक्टर माजिद साहब, डॉक्टर अर्शद साहब। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी पेशेंट को अगर LBA हो, लो बैक एक पुरानी हो या नया हो, एक्यूट हो या क्रॉनिक हो, तो कम से कम फर्स्ट चॉइस आप रेजिमेंटल थेरेपी मानिए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप किसी दवा के शिकार न हो जाए। और अगर आपको हमसे कुछ बात करनी हो तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है 9419408011, एक बार फिर से दोहराना चाहूँगा 9419408011।
1: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी मुफीद और कारामद बातें हमारे सामने तक पहुंचाने के लिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे तो फिर बात होगी। इस वक्त इजाजत लेना होगा। अस्सलाम वालेकुम।
0: अस्सलाम वालेकुम।
2: खामोशी कुदरत की जुबान, ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउफुन कर रहे थे डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर्स लाल चौक अनंतनाग कोट रोड शुपया खानका फैजपना त्राल सिकदाफर चौक ईदगाह श्रीनगर उर्दू बाजार बारामूला मागाम अपोजिट बॉयज हायर सेकेंडरी डॉक्टर नसीर यूनानी व पंचकर्मा सेंटर इकबाल कॉलोनी बर्शा नगर नट्टीपोरा श्रीनगर सेल नंबर 9419408011।
3: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है। मीडियम वेव 268.8 मीटर के अलावा FM2 103.5 MHz पर। सुबह के 9 बज चुके हैं।
4: आज की सुर्खियां, सुर्खियां, सुर्खियां।
5: आज की सुर्खियां आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं होंडा, पियाजो, एक्साइड, इशर, निसान और TVS कंपनियों के बा इख्तियार डीलर कश्मीर मोटर्स मौलाना आजाद रोड श्रीनगर।

जी दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर। लाइव शो जारी है पयाम सुब। अब आपके लिए एक गजल पेश करते हैं नाहिद अख्तर की आवाज में।

0: बनाए। वज्रासम ने
1: पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
0: इधर मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी योगा का आलमी दिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर के SKICC में एक बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी क्यादत LG मनोज सिन्हा ने की, जबकि तालीम और तिबी तालीम की वजीर सकीना एतू भी तकरीब पर मौजूद थीं। 7,000 से ज्यादा अफराद इस तकरीब में शरीक हुए जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे। LG ने योगा की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि ये दिन हमें जिंदगी में सेहत की अहमियत और मन की शांति याद दिलाता है।
2: उत्साह, आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
0: तालीम और सेहत की वजीर सकीना एतू ने योगा को सेहत के लिए एक कारगर नुस्खा करार देते हुए कहा कि जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ जहनी दबाव कम करने के लिए भी अहम है।
3: अगर आप परेशानियों को दूर करना चाहते हैं तो योगा में ज्यादा से ज्यादा हिस्सा लेने से, योगा को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करने से आप उन परेशानियों का निजात पा सकते हैं। अगर आप वाकई फिट रहना चाहते हैं, चाहे आप फिजिकली बात करें या मेंटली बात करें, तो योगा करने से ये सारे फायदे जो हैं आपको मिल सकते हैं।
0: वादी के दूसरे अजला में भी योगा की तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक खबरें मौसूल हुई हैं जिनमें इंतजाम के आला अफसरान, स्कूली बच्चों और आम शहरों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। सीनियर कांग्रेस लीडर और रुकन पार्लियामान डॉक्टर शशि थरूर ने लोक भवन श्रीनगर में LG मनोज सिन्हा से मुलाकात की, जबकि ऑल जैन के क्रिश्चियन सभा जिसकी क्यादत इसके सदर आशु पीटर मट्टू कर रहे थे ने भी LG से मुलाकात की, जिस दौरान यूनियन टेरिटरी में ईसाई बरादरी की तरक्की से मुतालिक दरकार मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में आज नीट 2026 इम्तिहान का इनेकाद हो रहा है। ये इम्तिहान पिछली बार इम्तिहानी पर्चा फाश होने की वजह से मनसूख किया गया था। श्रीनगर और वादी के दूसरे अजला में भी इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं जहां बच्चों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहान को शफाफ बनाने के लिए बायोमीट्रिक, CCTV और सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह बंदोबस्त है। श्रीनगर के SKICC में कल जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अहतमाम से ख्वातीन को बाख्तियार बनाने और इनके लिए कानूनी सपोर्ट मजबूत करने से मुतालिक एक जानकारी प्रोग्राम मुनाकिद हुआ जिसकी सदारत सुप्रीम कोर्ट के जज और कौमी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस विक्रम नाथ ने की, जबकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायमकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजय धर और अदलिया के कई दूसरे आला हुक्काम भी तकरीब पर मौजूद थे। इस मौके पर ख्वातीन और बच्चियों को बाख्तियार बनाने से मुतालिक कानूनी इमदाद मजबूत करने की जरूरत उजागर की गई। तुलमुला गांधरबल में मेला खीर भवानी में शिरकत की गर्ज से श्रद्धालुओं का पहला जत्था गांधरबल पहुंचा, जहां डिप्टी कमिश्नर गांधरबल जतिन किशोर और SSP गांधरबल सुधांशु धामा के अलावा मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने उनका गर्मजोश इस्तकबाल किया। मेला खीर भवानी कल मनाया जा रहा है। खेलकूद और नौजवानों के अमूर के वजीर सतीश शर्मा ने कल बड़गाम में फाउस ताइकांडो कप का इफ्तिताह किया जिसमें UT के मुख्तलिफ अजला से आए उभरते मार्शल आर्ट खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। दर्ज हरारत, श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 13.9 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
4: हमारी जिंदगी के लिए जरूरी मालूमात,
5: माहिरीन की आरा, तजुर्बा और रहनुमाई,
6: उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूसिव फंडिंग रखी है और स्टेट गवर्नमेंट ने न कि इसको एक्नॉलेज किया, इसको चैनलाइज किया, अपनी तरफ से अच्छा खासा पैसा डाला हुआ है।
4: सेहत के मशवरे,
7: ऑर्थोपेडिक कुंत तकलीफस मंज छै ब्रॉडली कलनिम क्लासिफाई इनटू सम ग्रुप्स,
4: साइंसी मालूमात और रोजमर्रा के मुफीद नुकात
5: जो आप तक पहुंचेंगे एक मौसर और बावकार अंदाज में।
4: आकाशवाणी श्रीनगर का मॉर्निंग लाइव शो पयाम में सुबह।

0: इल्म और आगही का संगम हर रोज सुबह 7:10 से 11:30 तक पयामे सुबह
1: मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर पयामे सुबह।
2: आकाशवाणी श्रीनगर पर चुत विकस प्रोग्राम बोजान पाया सुबह बुस तुह मेजबान महराज उद्दीन तो मे
3: सकीना
2: जी वक्त कशर मौसीकी बोजन तेज म्यूजिक लवर अत इंतजार मे सान बापत कर यी म्यूजिक पेश कर मौसीकी
3: बिल्कुल म्यूजिक लवर मौसीकी ये आकाशवाणी श्रीनगर पे बोजन पसंद कर
2: बिल्कुल
3: तम कान लगत वेडियो वॉल्यूम तम
2: बढ़ा
3: मगर गोडनुक बात बोजन ब्रोह वन महराज कि अगर वन बैठक अश्र मौसी इकवट बूजित बिहत करो यह मौसीकी बोजो तम ब्रो वन समावना लाल जारन मंज समावना लाल जारन मंज ये दुनिया कौन मशराओ
2: दपा जिंदगी छ मुख्तलिफ अनहारो पन्ने आसनुक बास दिवान
3: बिल्कुल
2: गाहे गुलन हिंजे खुशबू जरिए ते गाहे गुलन हिंदे वुट कुम लावने किन
3: मेराज दिलस हरगा जिंदगी बापत लोलच कल आसे ते चश्मु छ पानी पाने प्रत का मंजर वुचत वलसनस अनान
2: बिल्कुल
3: अदई छ खलके कायनात छ खुशनवई हिंस हक अदई ते सप्तान तो ज्यो पानी पाने वनान

0: दोस्तों, जम्मू कश्मीर बैंक ने अपने फैलाव पर कार बंद रहते हुए गुज़श्ते दिनों एक और संगे मील अबोर किया। बैंक ने अपना 100वां EBU यानी ईजी बैंकिंग यूनिट अवामी सहूलियात के लिए खोल दिया। मनकोट सखी मैदान जिला पूंछ के मकाम पर शुरू किए गए इस EBU से मकामी आबादी को काफ़ी राहत मिलेगी और बेसिक बैंकिंग खिदमात को आवाम के करीब तर पहुंचाने के हमारे आज़म को तकवीत मिलेगी। इस EBU को जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ अशोक कुमार शर्मा ने SDM इमरान रशीद, तहसीलदार मारूफ कादरी, बैंक के जोनल हेड रजौरी पूंछ राजीव डिगरा, क्लस्टर हेड आशुतोष गुप्ता और दीगर अहम शख्सियात और बारी अवामी जमीयत के बीच इनॉग्रेट किया। DC पूंछ ने बैंक के इस अवाम दोस्त इकदाम को काफी सराहा और उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत के मालियाती शमूलियत इनिशिएटिव्स को इससे काफी बल मिलेगा और अवाम मुख्तलिफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम से फायदा उठाने के साथ साथ दीगर बैंकिंग सहूलियात से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। बैंक के जोनल हेड रजौरी पूंछ राजीव डिगरा ने बैंक के उस अजम को दोहराया कि अवामी सहूलियात को बैंक अवलीन तरजीह देता है और दूर दराज इलाकों में ऐसी सहूलियात शुरू करना और जोन में बैंक की जानिब से 9वां EBU शुरू करना हमारे इरादों की अमली तस्वीर पेश करता है। उन्होंने अवामी हलकों से गुजारिश की कि इन सहूलियात से फायदा उठाकर इलाके की तरक्की में अपना योगदान दें। मकामी लोगों ने इस EBU के कायम के लिए बैंक इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों, हुकूमत हिंद की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मातहत काम कर रहे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने गुज़श्ता महीने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम राइज की। इस हवाले से JK बैंक ने भी अब डिटेल्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस इशू की हैं। क्या है ये ECLGS 5.0? इससे किन को फायदे हैं, क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं JK बैंक के डेप्यूटी जनरल मैनेजर क्रेडिट शमीम अहमद से। शमीम साहब, JK बैंक डायरी में आपका इस्तकबाल है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: शमीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 क्या है और इसे राइज करने के पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे?
1: जावेद साहब, ये स्कीम जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये हुकूमत हिंद की तरफ से एक स्पेशल स्कीम लॉन्च की गई है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज से,
0: DFS से।
1: इसका जो मकसद था वो जो अभी हमारा ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है, जो भी हालात आलमी सतह पे जो बने हुए हैं उनकी वजह से जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारा कारोबार है, वो मुल्की सतह पर भी और रियासती सतह पर भी मुतासिर हुए हैं। तो उन बिजनेसों को सपोर्ट करने के लिए हुकूमत हिंद ने एक स्पेशल स्कीम राइज की है
0: जिसे हम
1: इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 के नाम से जानते हैं।
0: अच्छा, अगर आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस स्कीम से कौन फायदा उठा सकते हैं और क्या क्या फायदे उठा सकते हैं, तो उसके बारे हवाले से आप क्या कहेंगे?
1: देखिए, ये स्कीम ऐसी है कि इससे जो भी बिजनेसमैन हैं जिनके हमारे पास वर्किंग कैपिटल लिमिट, जिसको हम CC कहते हैं, उन सारे बिजनेसमैन को ये स्कीम हम दे सकते हैं।
0: अच्छा, क्या फायदा दे सकते हैं?
1: फायदा ये है कि जो भी उनका लिमिट है, CC का एक लिमिट होता है
0: बिल्कुल,
1: जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का,
0: माने पहली जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 के बीच में
1: जो भी उनकी पीक यूटिलाइजेशन रही है। अच्छा, जितना भी उन्होंने यूटिलाइज किया
0: है, जो यूटिलाइज किया है
1: उसका 20% हम फरहम करेंगे उनको विदाउट एनी कोलैटरल सिक्योरिटी
0: एज एडिशनल क्रेडिट लाइन
1: हम देंगे।
0: इस स्कीम के तहत जो पैसा आप देंगे ये किस सूरत में दिया जाएगा और ये कितनी देर में फिर वाजिब अदा होगा?
1: ये वर्किंग कैपिटल टर्म लोन की
0: WCTL
1: जिसको हम बोलते हैं, उसके उसमें क्या है कि पहले साल में खाली उनको इसका इंटरेस्ट पे करना है और उसके बाद 4 साल में इसको वापस करना पड़ेगा।
0: माने अगर कोई आज लेगा जून में या जुलाई में लेगा तो उसको ये वापस करना है फिर जुलाई 2031 तक।
1: हाँ,
0: पहले साल सिर्फ इंटरेस्ट भरना है, उसके 4 साल में जो इसकी इंस्टॉलमेंट्स होंगी वो भरना होगी।
1: जी, जी।
0: अच्छा, और ये स्कीम कब तक राइज रहेगी?
1: ये तो जब तक ये गारंटी फी जो हुकूमत हिंद ने दिया है ये 2,55,000 करोड़, जब तक ये खत्म हो जाएगा या 31 मार्च 2027 तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
0: तो इसका मतलब ये है कि जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको जल्द अज जल्द इसका फायदा उठाना चाहिए।
1: सही फरमा रहे हैं जी। आप, जो ख्वाहिशमंद होंगे उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द ये हमारी ब्रांच के

0: रब्ता करे और इस स्कीम का फायदा उठाए।
1: अच्छा, एक बात आपसे जानना चाहेंगे, वो ये कि गुज़श्ता कई दफ़े ऐसा हुआ है कि कोई ऐसी गारंटी स्कीम लाई है बैंक ने या हुकूमत ने, तो उसके बाद उसमें बैंक की तरफ से ब्रांचेस को एक बाज़ाबता एक लिस्ट जाता था एलिजिबल बोरोवर्स का। क्या इसमें भी वही तरीक़ेकार होगा या हर कोई एलिजिबल है इसके लिए?
0: मैं थोड़ी सी इसमें वजाहत करना
1: जी
0: चाहता
1: जी
0: हूँ कि ये स्कीम उनको मिलेगी जिनका अकाउंट SMA 2 में नहीं रहा है। SMA 0 और 1 वो
1: एलिजिबल है।
0: एलिजिबल हैं, लेकिन जो SMA 2 में रहा है वो इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप सही फरमा रहे हैं, इस बार भी हमने ब्रांचों को ये जो
1: एलिजिबल
0: इसमें जो
1: बॉरोवर्स
0: एलिजिबल
1: हैं।
0: बोरोवर्स हैं उनका लिस्ट उनके पास है और उनको पता है, ये एक्सरसाइज पहले से हुई है कि कौन इसमें एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है।
1: अच्छा, अब क्या आपकी तरफ से अहकामात सादर किए गए हैं कि ब्रांच रीच आउट करेगा कस्टमर्स को, या कस्टमर्स भी आकर के ब्रांच से अपनी तफसीलात हासिल कर सकते हैं और इसमें अप्लाई कर सकते
0: कि हमारे बैंक ने बहुत से जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं उनको मैसेज ऑलरेडी गई हुई
1: हैं?
0: है
1: ओके
0: हमारे ब्रांच की तरफ से। वो जो ख्वाहिशमंद बिजनेसमैन हैं वो भी ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं कि वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं।
1: नहीं है।
0: तो जो एलिजिबल हैं उनको मैसेज भी गई है, काफ़ी सारी बोरोज़ को मैसेज ब्रांच से चली गई है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कीम के। मैं थोड़ी सी और इसमें वजाहत करना चाहता
1: जी
0: हूँ कि इसमें जो अप्लाई करना है बोरोज़ को वो जन समर्थ पोर्टल पे, ये सारा उनको ब्रांच में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, वो
1: अच्छा,
0: घर
1: ऑनलाइन
0: से
1: प्रोसेस।
0: ऑनलाइन प्रोसेस में जन समर्थ पोर्टल पे, और वहाँ भी जो प्रोसेस है वो बिल्कुल बहुत
1: इजी है।
0: सिंपल है, सादा है, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकता है अपनी डिटेल दे के। ऑटोमेटिकली ये एप्लीकेशन हमारी जो ब्रांच है उन तक पहुंच जाती है,
1: पहुंचाए,
0: तो इसमें उनको मैनुअल एप्लीकेशन देने की ज़रूरत
1: कोई
0: भी नहीं
1: जरूरत नहीं
0: है,
1: है, ब्रांच विजिट्स भी नहीं है।
0: ब्रांच विजिट्स भी नहीं है, वो घर में बैठ के इस जनसमर्थ पोर्टल पर लॉग इन करके ये अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये जो उनकी ये दरख्वास्त है वो हमारी ब्रांच या हमारे
1: को
0: बैंक
1: रूट
0: तक
1: होगी।
0: रूट हो सकती हैं। और जो हमारे बैंक ने इसमें इंटरेस्ट रेट रखी हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट हैं, और जो भी ख्वाहिशमंद अफराद हैं उनको चाहिए कि जल्द अज जल्द इसमें अप्लाई करके इस स्कीम से फ़ायदा उठाए।
1: शमीम साहब, ECLGS 5.0 के हवाले से ये कारामत गुफ्तगू के लिए आप हमारे स्टूडियो तशरीफ लाइए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो
0: शुक्रिया
1: मच।
0: शुक्रिया, थैंक यू।
1: और अब इनामी सवाल की बारी।
2: दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि पुंछ जोन में जेएंडके बैंक के एटीएम्स की कुल तादाद कितनी है।
1: इस सवाल का सही जवाब है 87, यानी 87।
2: दोस्तों, इस हवाले से हमें कई सारे जवाब ईमेल के जरिए मौसूल हुए जिनमें दिए गए बेशतर जवाब सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं
1: कश्मीर डिवीजन से आंचार श्रीनगर के सजाद अहमद डार, जम्मू डिवीजन से उधमपुर जम्मू के रमन कुमार, और लद्दाख से लेह के सिवांग रिगजिन।
2: इनाम जीतने वाले तीनों दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक।
1: और अब नोट करें आज का इनामी सवाल।
2: दोस्तों, आपको बताना होगा कि गुज़श्ता दिनों जेएंडके बैंक ने अपना 100वां EBU यानी इजी बैंकिंग यूनिट किस मकाम पर कायम किया।
1: आपके जवाबात हमें 27 जून शनिवार शाम 5 बजे तक हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी jkbankdiary@jkbmail.com पर पहुंच जाने चाहिए। याद रहे कि अपने जवाबात के साथ अपना नाम, पता, 16 डिजिट का जीके बैंक अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें।
2: तो लेते हैं आपसे रुख्सत अगली इतवार तक, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारी 24/7 बैंकिंग सर्विसेज के जरिए। और किसी भी मजीद जानकारी के लिए डायल कीजिए हमारा टोल फ्री नंबर
1: 1800-890-2122
2: या विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट
1: www.jkb.bank.in।
3: अभी आप सुन रहे थे जेके बैंक डायरी, पेशकश कॉरपोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जेएंडके बैंक।
4: सबने आपने स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुना जेके बैंक डायरी। एक और स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम सुनते हैं रेडियो साथी।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक।

0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो साथी
0: सुना करें हर एतवार
1: सुबह 10 बजे से 10:30 बजे तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को बेमिसाल हुस्न, जरखैज जमीनों, सकाफती तनव और इंसानी सलाहियतों की दौलत से नवाजा है। अगर यही जज्बा, तावुन, मेहनत और मजबूत सोच बरकरार रहे तो यकीनन ये खिता तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलें तय करता रहेगा।
0: हमें उम्मीद है कि अमन, भाईचारे और बाहमी एहतराम की फिजा मजीद मुस्तहकम होगी और तरक्की के सम्राट माशरे के हर तबके तक पहुंचेंगे।
1: इसी उम्मीद और नेक तमन्नाओं के साथ आज के प्रोग्राम रेडियो साथी से अपने मेजबान रशीद निजामी और रिफत आरा को दीजिए इजाजत।
0: अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए,
1: मस्बत सोच अपनाइए
0: और तरक्की व खुशहाली के इस सफर में अपना किरदार अदा कीजिए।
1: और हर इतवार सुनना न भूलें
2: रेडियो साथी, दिल से दिल तक।
0: रेडियो साथी,
2: दिल से दिल तक।
0: रेडियो साथी,
1: दिल से दिल तक, रोशनी और सच्चाई के सफर में
0: आपका हम सफर।
1: रेडियो

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर।
1: मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत, पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग।
2: घर का AC हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।

0: आदाब, कैसे हैं आप
1: जी? क्या आप कैसी है?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि मुहर्रमुल हराम का मुकद्दस महीना जो है वो शुरू हो गया है और हमें ज़रूर अपनी तारीख पे नज़र दौड़ानी चाहिए। अब देखना चाहिए कि किस तरह से इमाम जादू ने शहादत दी और एक तारीख रकम की। ये बहुत ज़रूरी है, इस्लामी तारीख को सभी बच्चों को पढ़ना चाहिए। आइए आज के इस दिन के हवाले से शफकत बाजी से सुनते हैं कि वो क्या कहेंगी।
2: अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जो यहाँ पे बैठे हैं मेरे सामने और जो अपने घरों में हैं, वो सभी खैरियत से होंगे और आइंदा भी खैरियत से रहेंगे। बेटा, आप लोगों को सबको पता होगा, हम सभी को पता है कि मुहर्रम का महीना जो होता है वो इस्लामी कैलेंडर के लिहाज से पहला महीना होता है और इस महीने की इफादियत

इसकी अजमत इतनी ऊंची है कि हम सबको जानकारी तो इसकी होनी ही चाहिए, है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत इसमें से बताती हूँ। वो बात ये है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, उन्होंने इस महीने के रुतबे को इतना बुलंद कर दिखाया, इतना बुलंद कर दिखाया कि आप मतलब हम अपने ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकते कि उन्होंने कितनी दीदा दिलेरी से, कितनी अजमत से, कितने यकीन से और अल्लाह पर भरोसा करके उन्होंने हमारे लिए हमारे दीन को कायम रखा, माशाल्लाह। अब लेकिन ये बताएं, आपसे ये कहूं कि ये सिर्फ एक ऐसी बात नहीं है कि जितनी मैंने आपसे कही, इससे बढ़ के बहुत बातें हैं इसमें जो आपको समझनी भी पड़ेंगी, सुननी भी पड़ेंगी, और फिर उन चीजों को याद करके, उन आमाल को याद करके आप आगे बढ़ेंगे जिंदगी में। तो भाई आप बताएं, जो बच्चे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दोनों ही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान मुबारकों पर बैठा करते थे, वो उनको लेके उस पर घुमा करते थे, उनके बिल्कुल चिपक के रहा करते थे, समझिए हर बात उनसे वो किया करते थे, और फिर कई गिले शिकवे भी, कभी कोई चीज कम है घर में या कोई चीज अभी बनी नहीं है, वो भी बताया करते थे, जैसे आम बच्चे अपने नानू से कहा करते हैं। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चीजें सुना भी करते थे और अल्लाह से कुछ चीजों के लिए दरख्वास्त भी करते थे कि इन पर वो चीज बेहतर कर दें, और फिर कहीं जहां समझाना होता तो वो भी समझाते, भाई छोटे छोटे बच्चे थे आखिर ये। तो दोनों ही बच्चों को अपने नाना अब्बा से बहुत प्यारा था, प्यार था, और इनकी वालदा मोहतरमा खातून जन्नत, वो तो अजमत और शान से भरपूर अल्लाह ताला ने एक हस्ती बनाई, जिसकी मतलब मैं तो मेरे रोंगटे खड़े हैं इस वक्त भी, मैं उनका नाम लिए जा रही हूँ। तो उनकी अजमत को मैं किस तरह से बयान करूं, तो अब आप खुद ही समझिए कि उनकी औलाद कितनी प्यारी होती, और जलाल वाले उनके वालिद हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहू। अब देखिए आप बच्चों, जहाँ पे नाना ऐसे हैं, माँ ऐसी है, अब्बू ऐसे हैं, तो बच्चे कितने ही अच्छे होंगे, हर तरफ से उनको, हर लिहाज से उनको सिर्फ अच्छाई अच्छाई और अच्छाई बताई जाती थी। लेकिन एक यजीद था जो चाहता था कि वो हमारे दीन को पलट दे और इनसे छीन ले सब कुछ और खुद शहंशाह बना घूमे। उसने चालबाजी से इनको बुलवाया और वहां पे इनका पानी, इनका खाना पीना, इनके लिए जो सवारी थी वो सब कुछ इनकी उन्होंने रोक ली, और इनके मासूम बच्चे भी साथ थे, जवान बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे और हमकद भी थे, वो भी साथ थे, ये बहुत ही मोहतरम औरतें भी साथ थी, क्योंकि एक खानदान जा रहा था कहीं। तो जब ये वहां पहुंचे तो इनके खेमे लगे, पहले तो यजीद ने अपनी वो जो लश्कर थी तो उसको कहा कि नहीं, इनको पानी वानी के नजदीक अपने खेमे ना बांधने देना, इन पे पानी नहीं रहेगा वहां पे, इनको नहीं चाहिए पानी, ये दूर से पानी ला सकते हैं कहीं से। तो कुछ दिन बीत गए, कुछ अपने मशकों में इनके पानी था तो वो चल गया। तो मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका था, मुहर्रम के 5-6 दिन बीत चुके थे, तो लेकिन लड़ाई का आगाज उन्होंने थोड़ा थोड़ा छेड़छाड़ से करना शुरू कर लिया था यजीद के की कौम। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि बच्चों इन्होंने क्या किया, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने पानी बंद कर दिया। भाई पानी एक इतनी मतलब बड़ी अहमियत वाली चीज है कि आप पानी के बगैर जी नहीं सकते, पानी के बगैर आप कर नहीं सकते कुछ, तो कैसे जिए बच्चे भी, औरतें भी, मर्द भी, कैसे जिए। तो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हमारे पास जितना है हम उससे गुजारा करने की पहले कोशिश करेंगे, देखते हैं आगे क्या हो। तो सब लोग, और फिर ये भी कब फरमाया उन्होंने कि फिर अंधेरा कर दिया, शाम का वक्त था, अंधेरा कर दिया कमरे में कि सब लोग बैठे हैं, वो उनसे खिताब कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर आप में से किसी एक को जाने

की ख्वाहिश हो आप में से कि वो हमारे साथ इनके साथ जंग ना लड़ सकें, उनका दिल नहीं मानता या उनको औलाद की दर्द सता रही है, वो घर जाना चाहते हैं, वो जा सकते हैं, हम किसी पे जबरदस्ती नहीं करेंगे और उनको जाने की इजाजत है। वो इस खामोशी से, इस अंधेरे कमरे से, कमरे क्या, इस खेमे से जा सकते हैं और हमें उनसे कोई गिला नहीं होगा। लेकिन कोई भी नहीं उठा और सब वहीं बैठे रहे कि हम आपके साथ हैं, हम हक के साथ हैं, हम आपके साथ हैं और हम आप ही के साथ हैं। चलते गए आगे, खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, वजू के लिए भी पानी नहीं है, तो तयमुम का तो अंदाज है ही इस्लाम में, तो पानी पीने की बहुत आजजी रह गई कि वो भी नहीं। लेकिन यजीद इस कदर, मतलब उसको किसी भी नाम से पुकारा जाए तो वो कम है, जुल्म और जबर का नाम कोई भी, कोई अल्फाज इस्तेमाल करने पड़े तो किए जा सकते हैं, जिसने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और उनके अहले खाना पर इंसाफ नहीं किया उस वक्त के मासूम बच्चे फाके कैसे रहेंगे, ये पानी के बगैर कैसे रहेंगे, इस तपती धूप में कैसे रहेंगे, रेगिस्तान वाली जगह में ये कैसे रहेंगे, कुछ नहीं सोचा। लेकिन लड़ाई छिड़ गई, यानी जंग छिड़ गई, और जंग में बारी बारी हमारे बहुत ही अजीज, हमारे नस्ल को आगे बढ़ाने वाले सब आगे आगे जाते गए, आगे आगे जाते गए और शहीद होते। और उस शहादत पे आप क्या कहिए, मतलब पूरी जान निसार है उस शहादत पर, जिस तरह से उन्होंने शहादत दी। फिर फाइनली जब बात आई तो वो हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अब जाना था, उनकी बहन हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत आजजी से कहा, मैं आपको घोड़े पे बिठाती हूँ, आपके इस पे जैसे आपकी सवारी, आपके लिए मैं पैर पकड़ूंगी आपके, तो आप रकाब में डालिएगा, तो आप फिर बैठिए और फिर जाइए। तो उन्होंने वो भी देख लिया, लेकिन बहन को कहा आप देखती रहो, कोई बात नहीं, अस्सलाम अलैकुम, मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो चले गए आगे, और उसमें उनको बीच में नमाज का वक्त आया तो उन्होंने इन यजीदों को कहा कि मुझे नमाज का मौका दे दीजिए। नमाज पढ़ने के लिए जो सजदे में उतरे तो अल्लाह ताला बेखबर रखे, वैसा मंजर सुनाते हुए भी आपको मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन ये कहूंगी कि शुमर ने आया और उसने बर्छी उनके सजदे वाले सिर में ही गर्दन पे जो मारी, और फिर तेग पे उनका सर मुबारक, हमारे प्यारे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक तेग पे खड़ा कर दिया और कहा देखो हम जीत गए। लेकिन वो जीता नहीं, वो सब कुछ हार गया, यजीद सब कुछ हार गया, शुमर सब कुछ हार गया, क्योंकि हमारे प्यारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंह से, कटे हुए गले से भी ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर निकला। तो आप खुद बताइए कि उनकी जात, उनका रुतबा और इस्लाम को किस तरह से उन्होंने जिंदा रखा। और फिर उसके बाद क्या हुआ भाई, अब औरतें ही औरतें रह गई थी और सिर्फ एक इमाम रह गए थे, क्योंकि जो जंग के लिए नहीं जा सकते थे हजरत ज़ैनुल आबदीन, तो वो रह गए थे क्योंकि वो बीमार, तो उनको जंजीरों से बांध के शाम के बाजारों में से हजरत ज़ैनब अलैहिस्सलाम को, हजरत सकीना अलैहिस्सलाम को बच्चों को लेते हुए चले गए।

0: खाली पड़ा है झूला असगर मेरा कहाँ है, पानी मिलेगा मुझको तो अब पीऊंगी कैसे, सूखी जुबान वाला असगर मेरा कहाँ है। जाऊंगी जब मदीने मैं क्या जवाब दूंगी, पूछेगी जब ये सुगरा असगर मेरा कहाँ है। तो अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका?
1: अनुषा
0: जी। अनुषा, क्या सुनाएंगी आप
1: आज? मैं आपको अलामी इदाराए सेहत यानी WHO के बारे में चंद बातें बताऊंगी। WHO एक बैन अलाक्वामी इदारा है जो पूरी दुनिया में सेहत के बेहतर मायार को फरोग देने के लिए काम करता है। इस इदारे का कियाम 1984 में हुआ था और इसका मरकजी दफ्तर जनीवा में वाक़ है। WHO का बुनियादी मकसद ये है कि हर इंसान को बेहतर सेहत की सहूलियत दस्तियाब हो। ये इदारा मुख्तलिफ बीमारियों की रोकथाम, इलाज और अवामी आगाही के लिए रहनुमाई फरहम करता है। जब किसी मुल्क में वबा या बीमारी फैलती है तो WHO उस मुल्क की मदद करता है, माहिरीन भेजता है और ज़रूरी मशवरे देता है। बच्चों की सेहत, साफ पानी की फरहमी और गजाइत के हवाले से भी WHO अहम किरदार अदा करता है। दौरे जदीद में सेहत से मुतलिक चैलेंज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में WHO मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान तावन को फरोग देता है ताकि लोगों को बेहतर और महफूज जिंदगी मैसर आ सके। आखिर में ये कहना दुरुस्त होगा कि WHO सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों की सेहत और खुशहाली के लिए काम करने वाला एक अहम जरिया है। हम सबको सेहत के उसूलों पर अमल करना चाहिए और अपनी और अपने दोस्तों की सेहत का ख्याल रखना चाहिए। शुक्रिया।
0: आपका क्या नाम है?
2: आयशा
0: जी। आयशा, क्या सुनाएंगी?
2: नज़्म
0: जी।
2: तो बच्चों हुआ सवेरा, सूरज निकला बागान, ठंडी ठंडी आए हवा, महक रही है खूब फिसाए, तारे अपने घर को आगे पीछे पीछे आए, चिड़िया ने अपना मुंह खोला, छत पर चढ़कर मुर्गा बोला, आओ सब हम उठ जाए बाग में जाकर दौड़ लगाए।
0: आपका?

0: अरूफा
1: अरूफा क्या सुनाएंगी आप?
0: आलू का चलो। आलू का चलो बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में सो रहे थे, बैंगन ने लात मारी रहे थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।
1: तो अभी भी हंस रही हैं। क्या नाम है आपका?
2: मुर्सलीन मुश्ताक
1: जी। मुर्सलीन क्या

0: अरूफा
1: अरूफा क्या सुनाएंगी आप?
0: आलू का चालो। आलू का चालो बेटा कहाँ गए थे, बैंगन की टोकरी में रहे थे, बैंगन ने लात मारी थे, मम्मी ने प्यार किया हंस रहे थे।
1: तो अभी भी हंस रही हैं। क्या नाम है आपका?
2: मुर्सलीन मुश्ताक
1: जी। मुर्सलीन क्या सुनाएंगे आप?
2: हमारी तारीख। कोई भी घर हो दिवाली के दिए जलते थे, ईद भर देती थी सीनों में उजाले, क्या क्या रंग होली का हर एक दिल में बिखरा जाता, चेहरे चेहरे पे दमक उठते थे लाले, क्या क्या ए वतन हम तेरी तारीख लिखेंगे फिर से, तेरी तारीख है दिल जोही व दिलदारी की, तेरी तारीख मोहब्बत की वफा की, एक है अपना वतन एक ज़मीन एक है हम, एक है फिक्र व अमल एक यकी, एक है हम कौन कह एक एक है हम कौन कहता है कि हम एक नहीं एक है हम। शुक्रिया।
1: क्या नाम है आपका?
3: मेरा नाम रजिया बिलाल है
1: जी। रजिया क्या सुनाएंगी आप?
3: मैं आज अपने घर बैठे दोस्तों को एक लड़की के बारे में बोलूंगी। जहाँ चिड़िया घनी झाड़ियों में चहचहाती हो, जहाँ शाखों पे कलियां नित नई खुशबू लुटाती हो और उन पर कोयले कुकू के मीठे गीत गाती हो, वहाँ मैं हूँ मेरी हमजोलिया हो और जोला हो। जहाँ बरसात के मौसम में सब्जा लहलहाता हो, हवा की छेड़ से एक एक पत्ता थरथराता हो, जहाँ चश्मों का पानी नरम ले मैं गुनगुनाता हो, वहाँ मैं हूँ मेरी हमजोलिया हो और झूला हो। जहाँ नहरों में बहता पानी मोती सजा लगता हो, जहाँ चारों तरफ गुलजार में सब्जा लहकता हो, जहाँ फूलों की खुशबू से बन के बन महकता हो, वहाँ मैं हूँ मेरी हमजोलिया हो और झूला हो।
1: अच्छा, कुछ नन्हे मुन्ने दोस्त आए हैं, आप आ जाएं। आप
4: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों
1: जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका?
4: सैयद हुज्जत अली।
1: सैयद
4: हुज्जत अली।
1: हुज्जत अली जी, क्या सुनाएंगी आप?
4: अपने बारे में कुछ जुमले।
1: अपने बारे में कुछ जुमले सुनाइए, हमें भी तो पता चले आपकी शख्सियत के बारे में।
4: मेरा नाम सैयद हुज्जत अली है, मेरी माँ का कौसर अली है, मेरे बाप का नाम सैयद तो मोहम्मद रजा रजवी है, मेरी 8 साल का हूँ। बाकी शुक्रिया।
1: अच्छा, बस इतना ही आपके बारे में। अच्छा मुझे बताएं आपके क्या शौक हैं?
4: मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ।
1: प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं? प्रेसिडेंट किसके बनना चाहते हैं?
4: इंडिया।
1: इंडिया के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, आप पढ़ेंगे लिखेंगे उस काबिल होंगे और इंडिया के प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात होगी। हमें भूल तो नहीं जाएंगे तब, ठीक है? तब भी हमारे प्रोग्राम में आइएगा ज़रूर। देखिए बच्चों, अभी सैयद हुज्जत अली ने कहा कि मैं प्रेसिडेंट बनना चाहता हूँ। सोच हमेशा बड़ी रखनी चाहिए, ठीक है, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और लाइफ में छोटे छोटे गोल सेट करने चाहिए। अभी अगर आप फर्स्ट में हैं तो आप ये सोचें कि मैं सेकंड में कितने नंबरात हासिल करूँगा, मैं कौन कौन सी अच्छी किताब पढ़ूंगा। फिर आप फिफ्थ में होंगे तो आप उसके बारे में सोचें। हाँ, जब आप अपने लाइफ के छोटे छोटे गोल्स को अचीव करेंगे तब आप अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचेंगे। लेकिन हमेशा जब भी सोचो तो बड़ा सोचो। क्या नाम है आपका?
5: मुशरा मोहम्मद।
1: क्या सुनाएंगे?
5: चिड़िया बोली चू चू चू।
1: सुनाइए।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिड़िया बोली चू चू चू, मुर्गा बोला कुडू कू, रेल का इंजन बोला शू शू शू, मन्ना जब शरारत है तो अम्मी कहती है हूँ हूँ हूँ। बाकी वसलम।
1: बस हूँ कहती है, मुन्ना जब शरारत करता है तो किस किस को पड़ती है बताइए? अम्मी से किस किस को पड़ती है मार? पड़ती है। अच्छा देखें, वक्ती तौर तो हमें लगता है कि माँ बाप ने बहुत बुरा किया हमें मार के, लेकिन जो सियाने लोग हैं ना वो कहते हैं कि माँ बाप की मार बच्चे के लिए इस तरह है जिस तरह की जमीन में खाद। माँ बाप की डांट, माँ बाप का समझाना, बच्चों को लगता है ना कि हमें सब कुछ पता है लेकिन हमेशा अपने माँ बाप की बात पे ध्यान रखा करो, ठीक है? अगली बार मैं आपसे पूछूंगी कि किस किस ने अपने मामा पापा की बात मानी। देखिए, जब आप अपने माँ बाप की बात पे ध्यान रखेंगे तो हमेशा तरक्की करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में, इस कायनात में सिर्फ माँ बाप की जात ऐसी जात है जो कि आपको अपने से बेहतर देखना चाहती है, अपने से

आगे देखना चाहते, तो अपने माँ बाप का दिल जो है वो कभी नहीं दुखाना चाहिए, उनका हर काम मानना चाहिए और माँ बाप की तरफ देख के जो हंसे वो भी सदका है। ठीक है, तो अब देखें कितना जरूरी है आप अपने माँ बाप की बात माने। तो चलें बच्चों, नमाज से करते।

0: इस दुआ के साथ कि अल्लाह तबरक तआला आपको उम्र नूर और शान ज़ुल्कर्नैन अता फरमाए, हमारे आज के इस प्रोग्राम का वक्त मुकम्मल हुआ जाता है। आज बस इतना ही, अगला प्रोग्राम लेकर होंगे फिर आपकी खिदमत में हाजिर। जब तक के लिए
1: खुदा हाफिज़।
2: नन्ही मुन्ही बच्चे अपना मनपसंद प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे। होनहार पेशकश समीना शाह। हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव पर। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव स्पेट समीन पेश सैयद याकूब दिलकश सुन युखमुद को शुड्रामा ब्रेस करो।

एटम बम, हाइड्रोजन बम, तिने पाम बम बने तिहुंद नाव छे जिंद तिवन छे लुक यजत करन थजरस जाय क्रावान तब बुचस यत कुटिस मन दफन कुर दफन चोस कुरूत बुचस ना बॉयज गुड।

एक उमा रैना, आशा कोल, अशरफ रजगरी, ओपीदर रवितिकुत, मखनलाल साधु। ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेवस्पेट सेनिस दैमे सैलानस प्रेरव।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव कीलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। 12 बजने वाले हैं अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के तीन पोत आईएनएस दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण और मरम्मत को राष्ट्रीय मिशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि समुद्री क्षेत्र आने वाले समय में लाखों रोजगार सृजित कर सकता है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन और निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। नौसेना के अनुसार इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है।
2: ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
1: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्यभर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू हो गया है और ये दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें।
2: नीट आज पुनः परीक्षा होने जा रहा है। मेरा पूरा भरोसा है एनटीए के ऊपर, भारत की सभी राज्य सरकारों के ऊपर, जिला प्रशासन के ऊपर, भारत की शिक्षा जगत के ऊपर, विशेष करके भारत की विद्यार्थियों के ऊपर। आज लगभग 22 लाख विद्यार्थी नीट में बैठने वाले हैं। निर्भय होके बैठे, चिंता मुक्त होके बैठे, आप निश्चित रूप में अच्छा करोगे। विद्यार्थियों को मेरा ये अनेक अनेक शुभेच्छा है।
0: अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। श्रीलंका के डांबुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 27 ओवर में 2 विकेट पर 215 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi today commissioned 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodak and INS Agraya in Kolkata. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said that today, India is strengthening its entire maritime ecosystem and initiatives like Sagarmala are part of this broader vision.
1: भारत आज अपने पूरे maritime ecosystem को सशक्त बना रहा है। इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
3: Mr. Modi further said that there was a time when India was recognized as one of the world's largest defense importers, but today India's defense production has grown rapidly and our defense exports are also growing at an unprecedented pace.
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग

माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूँ मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतज़ार देख।

फिल्मी गजलें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। अब पेश है आखिर में जा निसार अख्तर के अशार, लता मंगेशकर की आवाज में।

करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला, करने गए थे उससे तगाफुल का हम गिला कि एक ही निगाह के बस खाक हो गए।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 12:30 होने वाले हैं। अब पेश है यहाँ से खबरें, पहले उर्दू में, उसके फौरन बाद कश्मीरी में।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर है, खबरों का बुलेटिन लेकर मैं बिलाल वानी। मुल्क के साथ साथ आज दुनिया भर में योगा का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के तारीखी रेड रोड पर योगा के 12वें दिन की कौमी तकरीबात की क़यादत की और योगा प्रोटोकॉल को अंजाम देने के लिए हज़ारों लोगों के साथ शिरकत की। इस तकरीब में मगरबी बंगाल के गवर्नर आर.एन. रवि, वज़ीर आला सविंदु अधिकारी, आयुष के मरकजी वज़ीर मुमलिकत प्रताप राव जाधव और सरकर्दा शहरी मौजूद थे। इजतमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने दुनिया भर के लोगों को योगा तकरीबात में खुले जहन के साथ शिरकत करने पर मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि योगा में लोगों, माशरों और कौमों को जोड़ने की मुनफरद ताकत है। वज़ीर आज़म ने कहा,
2: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही है। पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है।
1: मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी योगा का आलमी दिन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है। श्रीनगर के SKICC में एक बड़ी तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी क्यादत LG मनोज सिन्हा ने की, जबकि तालीम, तिबी तालीम और सेहत की वजीर सकीना येतु, चीफ सेक्रेटरी अटल डुलू और जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह नलिन प्रभात समेत इंतजामिया के सीनियर अहदेदारों समेत 7,000 से ज्यादा अफराद इस तकरीब में शरीक हुए, जिनमें स्कूली बच्चे भी शामिल थे।

0: जी ने योगा की अहमियत पर रोशनी डाली और कहा कि ये दिन हमें जिंदगी में सेहत की अहमियत और मन की शांति याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि योगा दुनियानी जिस्मानी और जहनी सेहत के लिए फायदेमंद है और ये हमें सेहतमंद और खुशहाल जिंदगी की जानिब रहनुमाई करता है।
1: हम जीवन के प्रत्येक चरण में ऊर्जा, उत्साह, आत्मविश्वास और गतिशीलता बनाए रख पाए अगर योगा करते हैं तो। आज पूरी दुनिया स्वास्थ्य को केवल बीमारी के अभाव के रूप में नहीं देखती बल्कि शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन के रूप में समझती है और यही कारण है हजारों वर्ष पुरानी भारतीय योग परंपरा आज एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है।
0: तालीम और सेहत की वजीर सकी नायतू ने योगा को सेहत के लिए एक कारगर नुस्खा करार देते हुए कहा कि जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ जहनी दबाव कम करने के लिए भी अहम है। वादी के दूसरे अजला में भी योगा की तकरीबात के इनेकाद से मुतालिक खबरें मौसूल हुई हैं जिनमें इंतजामिया के आला अफसरान, स्कूली बच्चों और आम शहरियों ने बढ़ चढ़ कर शिरकत की। श्रीनगर में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी गोविंद मोहन की सदारत में एक अहम मीटिंग के दौरान 3 जुलाई से शुरू होने वाली सालाना श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। मीटिंग में जम्मू कश्मीर इंतजामिया के सीनियर अफसरान के अलावा पुलिस, फौज, इंटेलिजेंस और दीगर मुतलका इदारों के अहदेदारान ने भी शिरकत की। देही तरक्की और पंचायती राज के सेक्रेटरी मोहम्मद एजाज असद ने श्री अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में बालतर और इसके मुल्हिका इलाकों का दौरा किया और पवित्र गुफा और इसके इर्द गिर्द में यात्रियों के लिए दस्तियाब सफाई सुथराई के इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने महकमे के अफसरान से इंतजाम के बारे में जानकारी हासिल की और हिदायत दी कि तमाम लाजमी सहूलियात की पेशगी सूरत में दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। इस दौरान अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल महीद्दीन भट्ट ने पहलगाम में नुनवन के बुनियादी कैंप का दौरा किया और यात्रा से मुतालिक की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो बेहतर तालमेल अपनाकर यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाएं। मुल्क भर में आज नीट 2024 के अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज के लिए इम्तिहान का इनेकाद हो रहा है। यह इम्तिहान दिन के 11 बजे से शुरू हुआ और इसके लिए मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 551 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं जबकि मुल्क से बाहर भी 14 शहरों में यह इम्तिहान लिया जा रहा है। 22,79,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शिरकत कर रहे हैं। तालीम के मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा से अपील की है कि वो डर और खौफ के बगैर इम्तिहान में शामिल होकर अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। पिछली बार इम्तिहानी पर्चा फाश होने की वजह से किया गया था। श्रीनगर और वादी के कुछ दूसरे इलाकों में भी इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं जहां बच्चों की सहूलत के लिए माकूल इंतजाम किए गए हैं। इम्तिहान को शिफाफ बनाने के लिए CCTV, बायोमेट्रिक और सिक्योरिटी का खातिरख्वाह बंदोबस्त है। खेलकूद और नौजवान के अमूर के वजीर सतीश शर्मा ने बड़गाम में फाउस टाइकांडो कप का इफ्तिताह किया जिसमें यूटी के मुख्तलिफ अजला से आए उभरते मार्शल आर्ट खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर शबनम तिलगेम बोजने की खबर। मुल्क सीधे आज दुरुस्त आलमस मंज योगुक आलमी दोह मनाने वजीर अजम नरेंद्र मोदी कर कोलकाता किस तारीखी रेड रोडस पे योगा चे बहिम सालाना आलमी दोह तकरीबी क्यादत तो योगा प्रोटोकॉल अंजाम दिन बापत कर सासबाद लुकन सीध शिरकत अ तकरीब मज मगरबी बंगाल गवर्नर आर एन रवि, वजीर अला सविंदु अधिकारी, आयुष मरकजी वजीर ममलिकत प्रताप राव जादव तो सरकर्द शहरी तौजूद। इजतमास खिताब करान कोर वजीर आजमन दुरुस्त दुनिया के लुकन योगा तकरीबातन मंज खुल जहन सान शिरकत करनस पे मुबारक। तमो वोन जे योगास मंज छु लूख माशर तो कौम जोड़नुक मुनफरिद ताकत। वजीर आजमन वोन
3: पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।
2: मुल्क सीधे जम्मू कश्मीर मज योगुक आलमी दोह वसी द्रस सान मनाना श्रीनगर किस एस के आई सी सी यस मपज अड तकरीब मुनद ये एल जी मनोज सिन्हान क्यादत कर जन तलीम तबी तलीम तो सेहत महकमन हज वजीर सकीना इतू, चीफ सेक्रेटरी अटल डलो तो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबरा नलीन प्रभात सान इंतजामिया के सीनियर अहदेदारो सान 7,000 पेठी नफरों अत तकरीब मज शिरकत कर इन स्कूल शुर् शामिल। एल जी यन त्रव योगा किस अहमियत पे रोशनी तो वोनुक जो दोह अंदगी

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव केलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। दिन का एक बजने वाला है अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन रिले होगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोलकाता में स्वदेश निर्मित भारतीय नौसेना के तीन पोत दुनागिरी, संशोधक और अग्रय को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में कई नीतिगत सुधार किए हैं और घरेलू निर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन के साथ साथ रक्षा निर्यात में भी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। नौसेना के अनुसार इन तीनों पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। इनके निर्माण में 200 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का योगदान रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज देश और विदेश में मनाया जा रहा है। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। मुख्य आयोजन आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में रेड रोड पर हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में योगाभ्यास का नेतृत्व किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग पूरे विश्व को साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। प्रधानमंत्री मोदी ने योग को शारीरिक और मानसिक शांति प्राप्त करने का उत्कृष्ट साधन बताया।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है, और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक

0: मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में योग किया। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उपस्थित रहे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भी विभिन्न योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, विदेश मंत्री एस जयशंकर, खेल मंत्री मनसुख मांडविया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने योग सत्र में भाग लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद परिसर में सामूहिक योग अभ्यास में भाग लिया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा योग समारोह में राज्य भर के स्वर्ण ग्राम और स्वर्ण वार्ड कार्यालय में स्थायी योग केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। समारोह का नेतृत्व योग गुरु बाबा रामदेव ने किया। पुदुचेरी में उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने अपनी पत्नी के साथ बीच रोड पर एक कार्यक्रम में योग किया। उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय की योग 365 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एन रंगासामी भी मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी पुनर्परीक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश और विदेश के विभिन्न शहरों में 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश सुबह 11 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:30 बजे तक चलेगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं और अभ्यर्थी बिना किसी भय के परीक्षा दें। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं, जहां अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता होने की संभावना है। वहीं ईरान के प्रतिनिधिमंडल ने कहा है कि लेबनान में जारी संघर्ष का समाधान किए बिना वार्ता का आगे बढ़ना मुश्किल होगा। ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कालीबाफ करेंगे। श्रीलंका के दाम्बुला में त्रिकोणीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में आज भारत ए का मुकाबला श्रीलंका ए से जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ए ने 41 ओवर में 5 विकेट पर 288 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नरेश मागो। Prime Minister Narendra Modi says India has begun to move forward with a new vision for the shipbuilding sector. Mr. Modi said this after commissioning 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dunagiri, INS Sanshodhak and INS Agrae in Kolkata, West Bengal today. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. Addressing the tri-commissioning ceremony, Prime Minister Modi said, India is strengthening its entire maritime ecosystem.
0: Bharat aaj apne pure maritime ecosystem ko sasakta bana raha hai. इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
2: The Prime Minister emphasized that the commissioning of these warships is a sign of India's future. In his address, Mr. Modi also said that in the coming years, India's maritime sector has the potential to create lakhs of new jobs. The Navy said the vessels have more than 75% indigenous content and involved over 200 micro, small and medium enterprises, highlighting the growth of India's domestic shipbuilding industry. The 12th International Yoga Day is being celebrated across India and around the world with the theme Yoga for Healthy Aging. The theme highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. Prime Minister Modi led the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue. Speaking on the occasion, Mr. Modi said, yoga is not just physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit. President Draupadi Murmu also performed yoga.

आप समाप्त कर रहे थे मगरिबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: 1:50 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी में बारी बारी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़हनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीरे आज़म ने आज योग के 12वें बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क के दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज़ और बैरून मुल्क 14 मराकज़ में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। ईरान की जानिब से आबनाए हुरमुज़ को फिर से बंद किए जाने के तनाजुर में अमेरिका के नायब सदर JD वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर MB कालिबाफ अमन बातचीत के लिए स्विट्ज़रलैंड पहुँच गए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में दम्बुला में 3 मुल्कों की ए सीरीज़ के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। अब खबरें तफसील से। आज भारत और दुनिया भर में योग का 12वां बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है सेहतमंद बढ़ती उम्र के लिए योग। इससे सेहतमंद सरगर्म और बावकार अंदाज से बढ़ती उम्र के लिए ज़िंदगी भर योग को अपनाने की अहमियत उजागर होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के रेड रोड से योग का बैन अल-अक़वामी दिन मनाने में मुल्क की क़यादत की। मुश्तरका योग प्रोटोकॉल योग अभ्यास में हिस्सा लेते हुए जनाब मोदी ने इस तारीखी मुकाम पर हजारों लोगों के साथ योग आसन किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि योग महज जिस्मानी कसरत नहीं और न ही ये किसी मखसूस उम्र तक महदूद है, बल्कि ये इंसानी जज्बे का इजहार है।
2: योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डूज और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने भी आज मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड पर योगासन किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में अवामी नुमाइंदे, ओहदेदार और शहरी मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का एक जश्न है। उन्होंने कहा कि योग ने लोगों को एक सेहतमंद, मुतवाजिन और बामकसद जिंदगी

0: रास्ता दिखाया है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। ये थीम समाज के वरिष्ठ सदस्यों के स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर एवं गरिमापूर्ण जीवन के लिए योग की उपयोगिता को रेखांकित करती है। आज हम जो जीवन शैली अपनाते हैं वही हमारे आने वाले समय के स्वास्थ्य एवं सुख का आधार बनती है।
0: बांग्लादेश में योग का असल प्रोग्राम ढाका के वसुंधरा स्पोर्ट्स सिटी में मुनक़िद हुआ, जहां सैकड़ों योग शायकीन कॉमन योग प्रोटोकॉल सेशन में शिरकत के लिए जमा हुए। इस तकरीब की क़यादत IGCC के योग असातिज़ा और तलबा ने की। आर्ट ऑफ लिविंग बांग्लादेश और एवरग्रीन योग समेत 8 सरकर्दा योग तंजीमें इस तकरीब में शामिल हुईं, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती हुई मकबूलियत की अक्कासी होती है। सऊदी अरब की राजधानी रियाज में कल योग के आलमी दिन के मौके पर मुनक़िदा एक तकरीब में 500 से ज्यादा अफराद ने शिरकत की, जिससे मुल्क में योग की बढ़ती मकबूलियत और लोगों की जिंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती को फरोग देने में इसके रोल की अक्कासी होती है। रियाज में भारतीय सिफारत खाने ने कल सऊदी योग कमेटी और मुकामी इदारों के साथ मिलकर प्रिंस फैसल बिन फहद ओलंपिक कॉम्प्लेक्स में योग से मुतालिक तकरीब मुनक़िद की थी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने शिप बिल्डिंग शोबे के लिए एक नए नज़रिए के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। जनाब मोदी ने आज मगरबी बंगाल में कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को पानी में उतारने की रस्म अंजाम देने के बाद इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। बहरिया के जंगी जहाज़ों के डिज़ाइन से मुतालिक ब्यूरो ने इनका डिज़ाइन तैयार किया है और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स ने इन्हें बनाया है। इन जंगी बहरी जहाज़ों का मकसद मुकाबला करने की सलाहियत, हाइड्रोग्राफिक सर्वे और आबदोज शिकन निज़ाम को मुस्तहकम बनाना है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हालिया बरसों में मरकजी सरकार ने कई पॉलिसी इस्लाहात की हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि अंदरून मुल्क तामीर करने की सलाहियत को बढ़ाने की खातिर खुसूसी इकदामात किए गए हैं।
2: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इन जंगी बहरी जहाज़ों को बहरिया में शामिल किया जाना भारत के मुस्तकबिल का एक इशारा है। अपने खिताब में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क में न सिर्फ दिफाई सामान की तैयारी में तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है, बल्कि दिफाई सामान की बरामदात भी तेज़ी के साथ बढ़ गई हैं, जिसकी माजी में कोई नज़ीर नहीं मिलती।
2: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि INS संशोधक, INS दूनागिरी और INS आगरे को बहरिया में शामिल किया जाना भारत की बहरी सलाहियत के फरोग में एक अहम लम्हा है। आज मुल्क भर में 5,000 से ज्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट UG का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। भारत में 551 शहरों और बैरून मुल्क 14 शहरों में 22,79,000 से ज्यादा उम्मीदवार ये इम्तिहान दे रहे हैं। इम्तिहान के इनेकाद से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG का दोबारा इम्तिहान देने वाले तलबा के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। इधर मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने तलबा पर जोर दिया है कि वो खौफ होकर इम्तिहान दें। अमरीका के नायब सदर JD Vance स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था कि अमरीका ईरान के साथ मुजाकरात का ढांचा तैयार करेगा और इसके साथ ही न्यूक्लियाई मामलात पर पेशरफ्त होने का इम्कान है। ईरान से भी एक वफद स्विट्जरलैंड पहुंच गया है और उसने खबरदार किया है कि लेबनान में जंगबंदी से पहले बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसके कुछ घंटे पहले ईरान ने कहा था कि लेबनान में इसराइली हमलों की वजह से अबनाए हुरमुज को बंद कर दिया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे

0: ने शुमाली बंगाल और सिक्किम में आज इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात महकमे के मुताबिक आसाम और मेघालय में कहीं कहीं तेज से लेकर बहुत तेज बारिश होने का इम्कान है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, साहिली कर्नाटक, केरला, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में भी शदीद बारिश होने की पेशगोई की गई है। क्रिकेट में दाम्बुला में तीन मुल्कों की ए सीरीज के फाइनल मैच में भारत ने श्रीलंका के सामने 378 रन का निशाना रखा है। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 11 गेंदों पर सबसे तेज रफ्तार हाफ सेंचुरी बनाई। सूर्यवंशी ने सिर्फ 29 गेंदों पर धुआंधार 94 रन स्कोर किए। उन्होंने 10 चौके और 8 छक्के लगाए। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जहनी तंदरुस्ती से लेकर जिस्मानी तंदरुस्ती तक रहनुमाई में योग के रोल पर जोर दिया है। वज़ीर आज़म ने आज योग के 12वें बैनुल अक़वामी दिन के मौके पर कोलकाता में कौमी तकरीब की क़यादत की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में मुल्क में ही बनाए गए भारतीय बहरिया के 3 जंगी जहाज़ों को शामिल किए जाने की रस्म अंजाम दी और कहा कि अंदरून मुल्क दिफाई सामान की तैयारी की सलाहियत बढ़ाने के लिए खसूसी इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क भर के 5,000 से ज़्यादा मराकज और बैरून मुल्क 14 मराकज में नीट यूजी का दोबारा इम्तिहान सख्त सिक्योरिटी में कराया जा रहा है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: गुड आफ्टरनून, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम नरेश मागो विद द मिडडे न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi emphasizes yoga's role in providing pathway from mental to physical wellness. Leads the national observance of 12th International Day of Yoga in Kolkata. Prime Minister Modi commissions 3 indigenously built Indian Navy platforms in Kolkata, says special steps being taken to enhance domestic defense production capacity. NEET UG re-examination underway at over 5,000 centers across the country and 14 centers abroad amid tight security. U.S. Vice President J.D. Vance and Iranian Parliament Speaker M.B. Ghalibaf arrived in Switzerland to hold peace talks as Tehran closes Strait of Hormuz again. IMD forecast extremely heavy rainfall over North Bengal and Sikkim today. And in cricket, India have set a target of 378 runs for Sri Lanka in final match of Tri-Nation A series in Dambulla, where Vaibhav Suryavanshi smashes fastest half century of List A format in just 11 balls. Prime Minister Narendra Modi today emphasized yoga's role in providing pathway from mental wellness to physical wellness. The Prime Minister said this while leading the nation in observing the International Day of Yoga from Kolkata's Red Road. Participating in the Common Yoga Protocol session this morning, Mr. Modi performed yoga alongside thousands of practitioners at the iconic venue.
2: Yoga केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: Highlighting the International Yoga Day theme for the year, Yoga for Healthy Aging, Mr. Modi said that yoga is not just a physical exercise and is not restricted to any age group, but it is an expression of human spirit.
2: When we speak of yoga for healthy aging, it means that we can work to ensure that age does not reduce human potential. Yoga can help human life to aspire for constant growth. Our target must be to be more flexible at 40 than we were at 20. Our target must be to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more

हमारी आवाज आप तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है। मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 MHz पर।

0: स्पॉन्सर स्कीम्स हैं, जहां कहीं भी उनकी कमी रही है उन सारे स्कीम्स को सैचुरेट करना, जैसे कि पीएम किसान, केसीसी, और जो भी हमारे ये जमींदार भाई हैं इनको हम हर जगह यही समझाते हैं कि वो कम से कम इनपुट्स का इस्तेमाल करें और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की कोशिश करें।
1: सर आपने बताया डीएपी एमओपी, थोड़ा सा हमारे सामीन सुनना चाहते हैं क्या है।
0: मेन खादें हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स में तीन हैं, एक यूरिया जिसमें 46% नाइट्रोजन होता है, दूसरी खाद हमारी है डीएपी डाई अमोनियम फॉस्फेट, इसमें 46% P2O5 होता है और 18% नाइट्रोजन होता है, तीसरी खाद है एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटैश, केमिकली ये पोटेशियम क्लोराइड होता है, उसमें 60% K2O होता है। ये खादें इनका हम इसलिए ज्यादा चर्चा करते हैं क्योंकि ऑल द थ्री फर्टिलाइजर्स आर हैविली सब्सिडाइज्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन तीनों खादों पे काफी सब्सिडी जमींदार भाइयों को फराहम करती।
1: सर अगर बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल किया जाए तो क्या इससे बेहतर है या इससे ज्यादा वो ऑर्गेनिक नहीं बनेगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए अगर हम करें?
0: ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हम ज्यादातर ऑर्गेनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं और एज एन एडप बायो फर्टिलाइजर्स भी देते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स में FIM, वर्मी कंपोस्ट, फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्यूअर आता है और बोन मील, रॉक फॉस्फेट, ये सारी चीजें उसी हिसाब से देते हैं जो सबसे सस्ता हमें पड़े ताकि जमींदार के ऊपर कोई बोझ ना पड़े।
1: ऑब्जेक्टिव जब हम इसका देखेंगे, जो सेव द फार्म कैंपेन ये चल रहा है खेत बचाओ अभियान का, इसका एक ऑब्जेक्टिव हमें देखने को मिल रहा है यूज ऑफ सॉइल हेल्थ कार्ड्स, जानना चाहेंगे सर?
0: जैसे मैंने पहले ही जिक्र किया है कि सॉइल हेल्थ कार्ड का मतलब है कि हम पहले उस जमींदार के खेत से सैंपल उठाते हैं, यानी नमूना उठाते हैं मिट्टी का, फिर इसका साइनसी तौर जांच किया जाता है हमारी लेबोरेटरीज में। ये हर जिलाई सतह पे मौजूद है, वेल सोफिस्टिकेटेड एंड वेल इक्विप्ड, जिसमें ना सिर्फ इन तीन जुजों का जो मैंने अभी जिक्र किया नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटैश, बल्कि जितने भी मेजर एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका भी उनकी एनालिसिस की जाती है और उस एनालिसिस की बुनियाद पे हमें पता चलता है कि इसमें किस चीज की कमी है और उसी के हिसाब से फिर अप्लाई होता है फर्टिलाइजर उस खेत का। ये रिकॉर्ड रहता है एक कार्ड पे, उस कार्ड को हम सॉइल हेल्थ कार्ड कहते हैं। एक पोर्टल ऑपरेट होता है, उसमें वो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है।
1: जैसे आपने बोला कि साइंटिफिक गाइडेंस टू फार्मर्स हम देते हैं, कैसे देते हैं सर?
0: साइंटिफिक गाइडेंस में पहले फार्मर को हम यही सॉइल हेल्थ कार्ड इशू करते हैं, उसको ये बताया जाता है कि वो कितनी मिकदार में कौन सी खाद इस्तेमाल करे, इसके अलावा मयारी बीज, हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ द सीड्स वो दिया जाता है, और फिर उसको बकेजा प्रैक्टिसेस समझाया जाता है, इरिगेशन कब देनी है और किस तरीके से देनी है, इन सभी चीज़ों को की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है, वो पास ऑन की जाती है जमींदार भाइयों।
1: क्या जो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स है या KVKs है या स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, जैसा हमारा ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, क्या इनको इस कैंपेन के अंडर क्या इनको विलेजेस में विजिट करना है और उनको सिखाना है, उनको अवेयर करना है किसानों को?
0: इस बार हमने कोशिश की कि हर पंचायत पे कम से कम एक अवेयरनेस प्रोग्राम हो जाए, और हम हर गाँव में इतने छोटे अरसे में नहीं पहुंच सकते थे, इसलिए हमने पंचायत को एज यूनिट चुना। हर पंचायत में हमारे एक्सटेंशन फंक्शनरीज गए, KVK, यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड द अलाइड डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, शीफ हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री, ये सारे जितने भी अलाइड डिपार्टमेंट है ये सब मिलजुल कर काम करते हैं। और इसके बाद हमने बड़े बड़े इवेंट्स भी किए, ब्लॉक लेवल पे किए, जहां हमने ऑनरेबल MLAs को बुलाया, इसके और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट लेवल इवेंट्स भी किए गए, जहाँ पे ऑनरेबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर, सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी,

0: डिप्टी कमिश्नर्स हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दीज इवेंट्स।
1: ये इवेंट सभी चल रहे हैं?
0: बिल्कुल, ये चलेगा 30 जून तक। और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जैसे कि मैंने पहले ही अर्ज किया कि ये हर पंचायत में चलेंगे। और इसके अलावा इस बार हमने सेमिनार्स का भी एहतमाम किया है स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज एंड कॉलेजेस में। और जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड आएंगे उनको हम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्राइजेस से नवाजेंगे। तो फिर जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये टॉपर्स आएंगे इनकी हम अलग से एक सेमिनार कराएंगे डिविजनल लेवल पे। तो फिर एक और सेमिनार होगा और इस सेमिनार में भी प्राइजेस रखे गए हैं फॉर द टॉपर्स।
1: इस अभियान का टारगेट है हमारा किसान या हमारी सॉइल भी जुड़ी है किसान से। क्या बेनिफिट, डायरेक्ट बेनिफिट मिलेंगे किसान को?
0: सबसे बड़ी बात है आगाही। अगर मेरा जमींदार आगाह हो जाए कि उसके खेत की जो कैपेसिटी है ये कितनी है और ये किस क्रॉप को सपोर्ट करेगी, बेहतर इसमें कौन सा फसल है, तो वो मेरा जमींदार भाई कोशिश करेगा वही फसल उगाने का और उसमें वो ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पाएगा। दूसरी बात, उसको हम अवेयर कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास कैपेक्स में, HADP में, JKCIP में और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में कितनी छोटी छोटी स्कीम्स है, एक्टिविटीज है जिनका वो फायदा उठा सकता है। और अप्लाई करने के बाद कोशिश यही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे फार्मर्स को फायदा पहुंचाया जाएगा।
1: तो सर, खेत बचाओ अभियान हम समझ सकते हैं कि इससे ये फार्मर्स के लिए एक्सेस टू स्कीम्स है।
0: इट इज एक्सेस टू स्कीम्स एंड इट इज एक्सेस टू द नॉलेज।
1: हमारा डिपार्टमेंट क्या कर रहा है सर इस बारे में? अभी
0: जो मैंने अभी तक जिक्र किया है कि अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स एट पंचायत लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और डेमोन्स्ट्रेशंस, छोटी छोटी ये मिनी किट्स हैं इनकी और ट्रेनिंग्स, ये सब चीजें मेरे एक्सटेंशन फंक्शनरीज इस वक्त कर रहे हैं फील्ड में। और आज तक हमने 500 के करीब इवेंट्स ऑलरेडी किए हैं कश्मीर डिवीजन में सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर।
1: तो हसूलियाबियों की बात करें या जो हमने टारगेट्स अभी तक अचीव किए हैं वो तो हमने अचीव किए हैं। जैसे आपने कहा कि मोर देन 500 प्रोग्राम्स हैव बीन कंडक्टेड बाय दिस डिपार्टमेंट और मोर, ये जो आधा महीना भी बच रहा है, क्या प्रोग्राम है हमारा, इस डिपार्टमेंट का क्या प्रोग्राम है?
0: अगर आप देख लेंगे कि ये लाल मंडी कैंपस में हमने प्लांटेशन ड्राइव का भी इनकार किया, इसी तरह हर सतह पे हर जिले में हम प्लांटेशन ड्राइव कर रहे हैं। हमारा लेवेंडर फेस्टिवल है इसी खेत बचाव अभियान के तहत और लोगों को ये समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं कि जो उनकी जमीन है अगर ये बंजर भी हो, अगर ये अनइरिगेटेड हो, तब भी ये किसी न किसी क्रॉप के लिए माजून है। जैसे कि हमारा लेवेंडर है और बहुत बड़ा फार्म हमारा लगा है सिरहामा में और नुनर में।
1: क्या मैसेज देना चाहते हैं आप फार्मर्स को?
0: फार्मर्स को मेरी मैसेज यही है कि अपने हाथों से काम करो और इस जमीन से वो हर फसल निकलने की सलाहियत है जो हम चाहते हैं, वेदर इट इज सीरियल, इट इज पल्स, इट्स वेजिटेबल, इट इज एग्जॉटिक वेजिटेबल। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा हॉलैंड की, नेदरलैंड की, छोटा सा मुल्क है हमारे साइज का, J&K UT के साइज का, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर of agricultural products to the rest of the world. So koi limit nahi hai, sky is the limit in agriculture. And every farmer should work very hard, they should get consultation from experts, whether they are from the department of agriculture and university, but should avoid taking consultation from neem hakims. Neem hakim khatre jaan. Little knowledge is a dangerous thing. सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए। सोशल मीडिया पे जितने भी लोग आते हैं उनका एक ही मोटिव होता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करते हैं। वो प्रोडक्ट ठीक हो या गलत हो उनका उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वो मुनाफा चाहते हैं। तो उसमें मेरी यही सजेशन है सब जमींदार भाइयों से कि बिना पूछे माहिरों से वो किसी दवाई की छिड़काव ना करें, किसी नए प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना करें।

0: कहीं ऐसा ना हो कि उनको नुकसान उठाना पड़े।
1: सरदार अहमद शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
2: सामीन, दौर जदीद में इंजीनियरिंग और इंजीनियर्स को काफ़ी अहमियत हासिल है। इंजीनियरिंग की बदौलत हम जिंदगी के हर एक शोबे में नुमाया तरक्की हासिल कर रहे हैं और तरक्की का ये सिलसिला रोज अफजू बढ़ रहा है। समाज के मुख्तलिफ शोबों में काबिल और मेहनतकश इंजीनियरों के रोल और उनके काम के बारे में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साबिक सरबराह तारिक राथर ने वादी के एक मारूफ इंजीनियर इंजीनियर फिरदौस अहद भट्ट के साथ बातचीत रिकॉर्ड करके रखी है। आइए समाप्त करें इसके इक्तिबासात।
3: डिजास्टर मैनेजमेंट, उसमें इंजीनियर्स का रोल जो है, जैसे फ्लड मिटिगेशन की बात इससे पहले भी आपने की, तो किस तरह से होता है और लैंडस्लाइड प्रिवेंशन का मतलब क्या है?
4: देखिए, बेसिकली फ्लड मिटिगेशन मैंने बोला कि 2014 ने भी दिखाया और यहाँ की जो हाइड्रोलॉजिस्ट साइंटिस्ट से उन्होंने भी ये प्रेडिक्ट किया है कि इज अ फ्लड प्रोन एरिया। यहाँ जम्मू कश्मीर में चाहे जहलिम हो, बड़े बड़े ट्रिब्यूटरीज या रिवर्स गुजर रहे हैं, तो जब भी रेनज होते हैं, आजकल जो रेनज होते हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, दे आर नॉट रेनज ऐसे पड़ते हैं कि जो 22 mm के भी एक्सपेक्ट करते हैं वो 60 तक भी जाता, 45-55 mm भी जाता है, तो उसकी वजह से एट अ टाइम, जिसको अर्बन फ्लडिंग भी कहते हैं और रूरल में भी आते हैं, तो इनको मिटिगेट करने के लिए इंजीनियरिंग जो इरीगेशन फ्लड कंट्रोल वो ऑलरेडी काम कर रहा है। चाहे आप इधर जहलिम पे ही देखिए कि कितनी इंप्रूवमेंट्स हो गई, ड्रेजिंग कंटिन्यू हो रही है, कोशिश कर रहे हैं कि लोग ना गलत इस्तेमाल करें और इनको वहाँ पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर ना बनाए जो कल हमारे लिए
3: इंक्रोचमेंट्स
4: ना हो, उस पर भी काम कर रहे हैं। चाहे सब डिविजन लेवल पे AEE एग्जन वो भी साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कंसर्न है इसके बारे में, तो इस पर भी काम हो रहा है। दूसरा है लैंडस्लाइड प्रिवेंशन। जम्मू कश्मीर की टोपोग्राफी ऐसी है, हम कभी कभार सुनते हैं जनाब रामबन में पसी गिरी आई, कभी राजौरी में सुनते हैं, तो पिछले में क्या हो रहा था बिफोर दिस, जब इतना इंटरवेंशन नहीं था, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, तो इट वाज जस्ट लाइक रिमेनिंग फॉर 7 days 10 days लाइक दिस सिचुएशन। लेकिन आज रिस्पॉन्स भी क्विक आ रहा है, तो मशीनरी भी गवर्नमेंट के पास है, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है उस वक्त, तो वो उसी वक्त मौके पर जाके लोगों की खदमत के लिए हाजिर होते हैं, तो रिस्पॉन्स टाइम जो है बहुत कम किया गया है, रिड्यूस किया गया है, डेट इज़ लाइक लैंडस्लाइड प्रिवेंशन में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई।
3: तो सर, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जो रहते हैं जब भी ज़रूरत पड़ती है, या इसी तरह सीस्मिक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शंस, ये क्या है?
4: बेसिकली स्नो क्लियरेंस जो डिजास्टर मैनेजमेंट में आती है ऑपरेशन, ये है कि यहाँ पे तो स्नोबोर्ड एरियाज है जम्मू कश्मीर में, बर्फ से ही हमें तो इसी से वी आर ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ स्नो, लेकिन
3: हमारा
4: सर्वाइवल भी इसी से है, लिंकड है, लेकिन जब ये बर्फ पड़ती है कभी कभार हमें इसका अच्छा भी नहीं लगता है कि
3: अनयूजुअल
4: इसने रोड ब्लॉक किया, तो उस वक्त यहाँ पे जो मंडेट है वो R&B का एक विंग है जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, उसको आज बोलते हैं मैकेनिकल हॉस्पिटल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, उनका पूरा कंट्रोल रूम हर जगह होता है, हर तहसील लेवल पर उनकी मशीनरी R&D होती है, वो प्रिपेयर्ड होते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखने पड़ी रिसेंट पास्ट में जिसकी वजह से हम कहें कि स्नो की वजह से लोगों को इतनी पब्लिक इनकन्वीनियंस हुई। लेकिन अब लोगों को भी साइमल्टेनियसली ये याद रखना है कि यूरोपियन कंट्री में भी जब स्नो पड़ती है, इट टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्स,
3: एक्जेक्टली,
4: बिकॉज अल्टीमेटली मशीन्स आर रन बाय इंजीनियर्स, ह्यूमंस रादर,
3: ह्यूमन इंटरवेंशन इज ऑलवेज,
4: ऑपरेटर जो हमारे ह्यूमंस हैं, तो लेकिन माशाल्लाह गवर्नमेंट की डिजास्टर मैनेजमेंट की पैसे की वजह से वहाँ पे बहुत एडवांस्ड मशीनरी लाई गई है।
3: अच्छा,
4: हाँ, जर्मन टेक्नोलॉजी लाई है, यूरोप की मशीनरी जो यूरोप में चलती है, स्नो कटर्स,
3: बिल्कुल
4: बड़े बड़े स्नो ब्लावर्स लाए गए हैं, चाहे वो मगरोड हो, मारवन हो, आज वो कनेक्ट कर रहे हैं, इसमें भी बड़ी इंप्रूवमेंट है। ये भी
3: तो फिरदौस साहब, हमें आपकी बातों से जो हमें इन्फॉर्म हो रहे हैं हम, तो इसका मतलब बहुत सारी चीजें सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी हो रही हैं, दोज आर बींग यू नो पुट इन प्लेस, कि जिससे आम लोग, जाहिर है उतने इन्फॉर्मेशन नहीं है, उतना इल्म नहीं है, लेकिन आपकी जो बात हम अभी सुन रहे हैं इससे यही है कि सरकार बहुत कुछ इनपुट दे रही है।
4: एग्जैक्टली, लोगों को जैसे सर तारिक साहब, जैसे जब पुराने जमाने में बर्फ पड़ रही थी तो 2-3 दिन के बाद हम घर से निकल रहे थे, जो हम सुन रहे हैं अपने एंसेस्टर से, जो हम
3: एग्जैक्टली हमारे बड़े बुजुर्ग जो बताया करते थे,
4: 4-5 दिन,
3: 5-5, 6-6 फुट होता था।
4: आज बंदा चाहता है कि स्नो हो और मैं हूँ टूरिस्ट स्पॉट पे होना चाहे, जैसे गुलमर्ग की मैं बात कर रहा हूँ, गुलमर्ग इंटरनेशनल टूरिस्ट,
3: सोनमर्ग है, पहलगाम,
4: गुलमर्ग में यही डिपार्टमेंट, यही इंजीनियर, यही मशीनर्स कंटिन्यू रखते हैं 24/7 ड्यूरिंग स्नो रोड को ओपन,
3: ओके,
4: और मैंडेटरी रखना है क्योंकि टूरिस्ट का रश उसी वक्त होता है और उसी वक्त ज्यादा सिकड़िंग के चांसेस होते हैं, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं,
3: एग्जैक्टली,
4: और रोड जैमिंग के चांसेस होते हैं, लेकिन इट इज ऑनली बिकॉज ऑफ द वर्क ऑफ द इंजीनियर्स, उनका मैंडेट, उनको सैलरी भी मिल रही है, लेकिन सल्यूट भी करते हैं कि दे आर डूइंग दिस वर्क।
3: मुझे लगता है लोगों को ये समझनी चाहिए बात कि ये जो आपने कहा कि वो रिस्पॉन्स टाइम जो
4: बहुत
3: कम आ गया है, बहुत रिड्यूस हो गया है, और बहुत कुछ काम हो रहा है ग्राउंड पे जो बज़ाहिर अगर हमें घर में बैठ के नहीं पता चलता, लेकिन वट एवर इज यू नो, जैसे आपने कहा रोड्स खुलते हैं जल्दी, हम ये इससे फटाफट कहीं वाटर लॉगिंग हो, कहीं और चीज़ें हों।

0: तो इसमें मशीनरी लगा, मैन एंड मशीनरी और इन्वॉल्वमेंट, सो उसमें उसी वक्त देखा जाता है कि भाई लोगों को किस तरह की सहूलत जो है, राहत जो है वो मिलनी चाहिए। सर सीस्मिक रेजिस्टेंट कंस्ट्रक्शन की मैंने बात की,
1: इसका आज पर यहाँ पे ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट का है, यही जो अभी आप कह रहे थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे ये कि सीस्मिक जोन 6 में जम्मू कश्मीर को डाला गया।
0: ओके, इसका थोड़ा सा बताएंगे हमारे लिसनर्स को क्या मतलब है इसका?
1: वेरी हाई रिस्की अर्थक्वेक के चांसेस यहाँ पे वेरी हाई। तो इस मामले में इंजीनियरों ने रोल अदा किया कि जनाब बिल्डिंग जब बनाते हो अब आप ऐसा बनाओ जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो।
0: अच्छा,
1: इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं सिविल के बाकी, वो आजकल लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं, उनमें हमें प्रोग्राम, हमने इंस्टीट्यूशन इंजीनियर्स में बहुत प्रोग्राम किए कि हम कैसे सेफ डिजाइन, बाय सेफ एंड स्मार्टर, सेफ एंड स्मार्टर। हम मकान

0: तो इस मामले में इंजीनियरों ने रोल अदा किया कि जनाब बिल्डिंग जब बनाते हो अब आप ऐसा बनाओ जो अर्थक्विक रेजिस्टेंट हो।
1: अच्छा,
0: इसमें जो हमारे स्ट्रक्चर इंजीनियर्स हैं सिविल के बाकी, वो आजकल लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। उनमें हमें प्रोग्राम इंस्टीट्यूशनल इंजीनियर्स में बहुत प्रोग्राम किए कि हम कैसे सेफ डिज़ाइन बाय सेफ एंड स्मार्ट। सेफ एंड स्मार्ट हम मकान डालते थे ऐसे ही बिना पूछे कंसल्टेंट की, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। अर्थक्विक कल यही मकान, इंसान भूचाल से नहीं मरता है, इंसान मरता है द मटेरियल जो उसके ऊपर गिरता है बिकॉज ऑफ भूचाल। तो उसमें बिल्डिंग का सबसे ज़्यादा रोल है। तो इस बिल्डिंग को हम सेफ बनाने की कोशिश करते हैं और उस डिज़ाइन में उसको उसको सिस्मिक रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जहाँ पे हम यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग के हम कैसे इसको रेजिस्ट बनाए, अर्थक्विक रेजिस्ट बनाए।
1: तो सर अर्थक्विक रेजिस्टेंस में जैसे हम अपने रिहायशी मकान है, रेजिडेंशियल हाउसेज हैं, तो इसके अलावा जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें हमें स्कूल है, कॉलेज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे हर जगह हमें निकलना है, इधर रोड्स हैं, तो इनकी तरफ किस तरह का फोकस किया जा रहा है? ये जो सिस्मिक रेजिस्टेंट आपने कंस्ट्रक्शन की बात की,
0: हमारे इंजीनियरिंग में होता है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। उस फैक्टर ऑफ सेफ्टी पे आप जो इफेक्ट करता है वो उसमें एक मेजर फैक्टर ही भी है इन द कंस्ट्रक्शन वर्क्स कि हम कैसे बनाए इसको अर्थक्विक रेजिस्ट, ताकि ये कल भूचाल से हमारी जानलेवा एक हथियार ना बन जाए। अगर ये आज हमें शेल्टर दे रहा है कल हमें मरने का बहाने,
1: तो हमारी कोशिश रहती है।
0: इंजीनियर सर वर्किंग इन गवर्नमेंट बिल्डिंग इन कंस्ट्रक्शन, प्राइवेट पीपल दे आर बीइंग आस्क्ड अबाउट दिस कि आप ये अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, आरएनबी कर रहा है लोगों को, अगर कहीं पे किसी को चाहे वो जा सकता है अपने कंसर्न एडब्ल्यू को, उनको शायद ये पता है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए है। जैसे डॉक्टर का कहीं क्लिनिक चल रहा है, हमारे एडब्ल्यू जहाँ हैं वो उनसे टेक्नोलॉजिकली टेक्निकली क्या फीजिबल है रिगार्डिंग कनाल, रिगार्डिंग रोड कंस्ट्रक्शन, रिगार्डिंग हाउस कंस्ट्रक्शन रादर, दे कैन आस्क देम, दे कैन दे विल कंसल्ट, दे विल गिव देम द राइट टेक्नोलॉजी।
1: सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आई, जो प्रोफेशनल बॉडीज हैं, इंजीनियरिंग फोरम है जम्मू एंड कश्मीर में भी, प्रमोशन जो हो रहा है गवर्नमेंट का फोकस है कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज। ग्रीन टेक्नोलॉजीज का मतलब क्या है?
0: ये बेसिकली यूएनए के स्लोगन है कि आप डेवलपमेंट को पीछे नहीं छोड़, डेवलपमेंट तो करनी है, लेकिन जब हमने पिछला दौर देखा कि हमने डेवलपमेंट की एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट, हमने रोड्स बनाए हमने लेकिन फॉरेस्टर्स को रेलवे ट्रैक्स बनाए तो हमने नेचर को डिस्टर्ब किया, हमने हाईवेज बनाई तो हमने बड़े बड़े पहाड़ों को जो बड़ी अच्छी तरह पर हाइड्रोलॉजिस्ट जम लगे थे, कंक्रीटिंग हुई थी उनकी, तो हमने उनको डिस्टर्ब किया, उनकी अनस्टेबिलिटी की वजह इंस्टेबिलिटी की वजह से उन्होंने वापस हमें बैकफायर किया और जिसकी वजह से हम बहुत तंग आ गए। तो अल्टीमेटली यूएनओ ने ही गोल बनाया कि जनाब सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे जोर दीजिए, आप डेवलपमेंट भी करो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द एनवायरमेंट।
1: ओके,
0: क्योंकि हमारी हालात बहुत खराब हो रहे हैं
1: जी।
0: हम गाड़ियां बना रहे हैं, हम ऐसे तेल इस्तेमाल करें, ये ऑटोमोबाइल मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ही काम है कि जिससे एनवायरमेंट ना पोल्यूशन हो, जिससे कल हमारे लंग्स ना कोलैप्स हो जाए। जैसे दिल्ली का आपने हाल देखा, सीएनजी यूज करने से हम बहुत इंप्रूवमेंट आए,
1: क्वालिटी
0: खराब हो रही है। इसी तरह से हर मामले में इन्होंने ये एक गोल ही बनाया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, हम एनवायरमेंट को डिस्टर्ब मिनिमम करेंगे।
1: तो वही सर आपसे पूछ रहा हूं कि ग्रीन टेक्नोलॉजीज का लोगों आम लोगों के लिए क्या कहेंगे?
0: ग्रीन टेक्नोलॉजीज का सपोज हम इलेक्ट्रिसिटी कर रहे थे प्रोड्यूस
1: जी,
0: तो घर पे कोल शोल बाकी तेल जला के है, लेकिन आज हमारे पास जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है हमारे पास सोलर पैनल्स हैं। हम किसी वाटर पंप को चलाने के लिए बागों में इस्तेमाल करते थे फ्यूल का, पेट्रोल का, डीजल का, वो तो पोल्यूशन छोड़ता था। आज हमारे पास सोलर पैनल्स हैं, सोलर पंप्स हैं रादर इन मैकेनिकल, जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो
1: जी।
0: बिल्डिंग्स में हम इतना मटेरियल इस्तेमाल कर रहे थे कि हम लकड़ियों को जंगलों को काट काट के, आज आपके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इतने अच्छे मटेरियल हैं जो लाइट इन वेट भी हैं, एस्थेटिक भी हैं और जो नहीं एनवायरमेंट को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो इन ऑल सेक्टर्स वी थिंक ऑफ ग्रीन मीन्स वी say no to pollution.
1: Okay.
0: We say to no to the origin of the pollution.
1: Okay.
0: We say no to the degrading the environmental factors. तो उनको हम ग्रीन टेक्नोलॉजीज कहते हैं, यूज करते हैं।
1: क्या इसका मतलब यह है कि लोगों को ये बात समझनी चाहिए, हम सबको समझनी चाहिए कि जो भी हमें काम करने हैं अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जैसे आपने बात की, हमें रोजमर्रा की जिंदगी गुजारनी है, हमें तरक्की भी करनी है, हमें सारी सहूलियात चाहिए, फैसिलिटीज चाहिए, तो क्या हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी या ग्रीन इनपुट जो हमें आप जैसे आपने एक कंसेप्ट बताया, ये एक कंसेप्ट है ग्रीन, तो इसके बारे में लोग किस तरह से अवेयर किए जाने चाहिए या लोग किस तरह से समझने चाहिए, कहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन मिले, कहाँ पे अवेयरनेस आ जाए?
0: Exactly. जो भी चाहे आपके थ्रू मीडिया थ्रू प्रोग्राम्स हो रहे हैं, चाहे लिटरेचर आ रहा है, चाहे डिपार्टमेंट्स हैं रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट रूरल एरियाज में है जहाँ पे BDO साहब होते हैं, इनके पास ये स्कीमें पहुँचती हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी के बारे में। द पीपल शुड गो देयर, कंसल्ट देम।
2: سامعین، موجودہ حکومت لوگوں کو ان کی دہلیز پر اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات بہم پہنچانے میں کوئی بھی دقیقہ فروگزاشت نہیں کر رہی ہے۔ اس تعلق

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव के अलावा एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर पेश है फौजी भाइयों के लिए फिल्मी संगीत का प्रोग्राम।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों, आगाज में पेश है फिल्म सलमा मीत मेरे मन की। ये आवाज़ है सलमा आगा और मनहर उदास की।

मीत मेरे मन के। फौजी भाई, आपने इस फिल्म से नगमा सुना? फिरोज खान और सलमा आगा पर फिल्माया गया ये खूबसूरत नगमा था। नगमा लिखा था रविंदर जैन ने और मौसीकार थे बाबुल बोस। फौजी भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं।

जी फौजी भाइयों, ये करिश्मा और आमिर खान पर फिल्माया गया नगमा है, फिल्म राजा हिंदुस्तानी से, और आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की।

फौजी भाई, ये नगमा हमने फिल्म सनम से लिया है। आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। नगमा लिखा है समीर ने और संगीत दिया है आनंद मिलन ने।

0: फौज भाई, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। मीडियम वेव के अलावा हमारी आवाज आप तक FM 2 103.5 मेगाहर्ट्ज पर भी पहुंच रही है।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

0: अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाजों में शाहरुख खान और माधुरी पर फिल्माया गया नगमा था हम तुम्हारे हैं सनम फिल्म से। फौजी भाइयों, आप फिल्मी नगमे आकाशवाणी श्रीनगर से संवाद कर रहे हैं।
1: दुनिया की तरह, रस्मों की तरह।
0: ये नगमा हमने फिल्म जानवर से लिया है। आवाजें हैं अलका याग्निक और मनहर उदास की।

हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है, मीडियम वेव के अलावा FM 2 103.5 MHz पर। तीन बजकर 50 मिनट होने वाले हैं। अब पेश है यहां से उर्दू में खबरें।

अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज को गोजरी प्रोग्राम लेके आए हम थारी खिदमत माजिना। उम्मीद करां कि तुम बिल्कुल खैर हो आफियत नाल होवेगा। सामीन, बैन अलावामी योगा दिवस हर साल 21 जून न दुनिया भर में मनाया जाए। इस दिन को मकसद योगा की अहमियत, जिस्मानी व जहनी सेहत पर इसका मुसबत असरात और सेहतमंद तर्ज जिंदगी का फरोग का बारे में आगाही पैदा करना है। योगा एक कदीम जिस्मानी जहनी और रूहानी मश्क है जिसकी जड़ बरसगीर की कदीम तहजीब में पाई जाए। योगा के जरिए जिस्मानी लचक, जहनी यकसोई, तनाव में कमी और मजमू सेहत में बेहतरी आए। आज का मसरूफ और डिजिटल दौर में जब जहनी दबाव और जिस्मानी गैर फालियत बद रही है, योगा एक मौसर और कुदरती हल का तौर पर उभर के सामने आ रही है। सन 2014 में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली ने 21 जून न बैन अलावामी योगा दिवस का तौर पर मनाने की मंजूरी दी थी और 2015 में पहली मरतबा यह दिन आलमी सतह पर मनाया गया। 21 जून न मुंतखब करण की एक वजह यह भी है कि शुमाली निसफ कुरा में साल को सबसे तवील दिन व जिसना कई सकाफतों में खास अहमियत हासिल है। बैन अलावामी योगा दिवस का मौका पर मुख्तलिफ ममालिक में इज्तिमाई योगा सेशनस, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स और आगाही प्रोग्राम मुनक़द किया जाए। ये दिन इस गल को पैगाम दे कि सेहतमंद जिस्म, पुरसकून जहन और मतवाजन जिंदगी के वास्ते योगा एक मौसर जरियो है। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि जिस्म, जहन और रूह के दरमियान हम आहंगी पैदा करण को की एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। सामीन, प्रोग्राम का शुरू में पेश है यू नगमा।

ये समीन तम नगमो सुन रहा था ते गल हो रही थी योग की। समीन योग एक कदीम जिस्मानी जहनी और रूहानी मशक है जी इंसान की मजमुई सेहत और तंदुरुस्ती ना बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करे। मौजूदा दौर में जब मसरूफ तर्ज जिंदगी जहनी दबाव और जिस्मानी गैरफालियत आम हो चुकी है योग की अहमियत पहले से मुझ ज़्यादा बढ़ गई है। योग जिस्म ना मजबूत लचकदार और मतवाजन बनाए मुख्तलिफ बीमारी जिस तरह की मोटापा हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ वगैरह का खतरात ना घट करने में मदद दे। जिस्मानी कुव्वत मुदाफ़त ना बेहतर बनाए और तवानाई में बाधो करे। समीन योग जहनी दबाव बेचैनी और तनाव ना घट करे। जहनी सुकून यकसोई और मुस्बत सोच पैदा करे। यादाश और तवज्जा की सलाहियत में बाधो करे। योग इंसान में खुदशनासी और खुद एतमादी पैदा करे। जज्बाती तवाजुन बरकरार रखने में मदद दे। सब्र बर्दाश्त और अंदरूनी सुकून ना फरोग दे। योग पढ़ाई में तवज्जा और यकसुई बधाए। जिस्मानी फिटनेस और जहनी चुस्ती बरकरार रखे। मुस्बत तर्ज जिंदगी इख्तियार करने में मदद दे। योग के जरिए सेहतमंद अफराद एक सेहतमंद माशरा ना तश्कील दें। योग हमन हम आहंगी और बाहिमी एहतराम को पैगाम दे।

जिस हम तब नगमो सुन रहा था तो गल हो रही थी वर्जिश की। रोजाना वर्जिश करने जिस मजबूत और तवाना रहे, खून की गर्दिश ना बेहतर बनाए, दिल और फेफड़ा की कारकर्दगी में बाधो करे और जिसम का मुख्तलिफ अज़ा ना फाल रखे। वर्जिश मोटापा ना घाट करन और वजन ना मतवाजन रखन में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा वर्जिश डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कार्डिक डिजीज़ और दीगर तर्ज जिंदगी के मुतालिक बीमारियों का खतरात ना काट करें। बाकायदा वर्जिश करने वाला अफराद अमूमन ज़्यादा सेहतमंद, चाको चौबंद और बीमारी के खिलाफ ज़्यादा मुजाहमत रखने वाला हो। वर्जिश सिर्फ जिस्मी नहीं बल्कि जहन के वास्ते भी मुफीद है। रोज़ाना वर्जिश करना जहनी दबाव और बेचैनी में कमी आ जाए। वर्जिश के दौरान जिस्म ऐसा हारमोन्स खारिज करे जो कि खुशी, इत्मीनान और सुकून का एहसास पैदा करे। बाकायदा वर्जिश ना यादाश्त, तवज्जो और जहनी कारकर्दगी बेहतर है। तलबा वास्ते वर्जिश खास तौर पर फ़ायदेमंद है क्योंकि यह इनकी तालीमी कारकर्दगी और यकसोई में बाधो करे। शामीन आगे पेश है यू नगमो।

जी सामिन, तुमने अभी सुन रहा था वर्जिश इंसान में नज्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी और खुद एतमादी पैदा करे। जब लोग रोज़ाना वर्जिश ना अपनी आदत बना लें, वे अमूमन ज़्यादा मुनज़्ज़म, मुतहरिक और पुरअज़्म हुएं। वर्जिश इंसान ना सुस्ती, काहली और मनफी आदत से दूर रखे और मुस्बत तर्ज ज़िंदगी अपनाने में मदद दे। आज की नौजवान नस्ल मोबाइल फ़ोन, वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया पर ज़्यादा वक्त गुजार रही है, जिसके बायस जिस्मानी सरगर्मियों में कमी वाक़ा हो रही है। इस सूरत हाल में वर्जिश नौजवानों के वास्ते नहायत ज़रूरी है। वर्जिश इनका जिस्मानी नशोनुमा, जहनी सेहत और शख्सियत साजी में अहम किरदार अदा करे। इसके अलावा वर्जिश नौजवानों ना मनशियात, जराइम और दीगर मनफी सरगर्मियों से दूर रखने में भी मददगार साबित हुए। जी सामीन, आगे नगमो सुन लिया तो फिर गल अगे और होगी।

समीन तुमने नगमा सुने। समीन एक सेहतमंद फर्द ही एक सेहतमंद खानदान और माशरा की बुनियाद बने। अगर माशरा का अफराद जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त हुए तो सेहत का अखराज में कमी आए, काम करने की सलाहियत बढ़े और कौमी तरक्की की रफ्तार तेज हुए। इस करके तरक्की याफ्ता ममालिक वर्जिश और जिस्मानी सरगर्मियों का फरोग पर खसूसी तवज्जो दें। मुख्तसरन, रोजाना वर्जिश सेहतमंद जिंदगी की कुंजी है। यह जिस्मानी कुव्वत, ज़हनी सुकून, जज्बाती तवाज़ुन और बेहतर मियारी जिंदगी फराहम करे। मौजूदा दौर का चैलेंज को मुकाबला करने के वास्ते जरूरी है कि हर फर्द रोजाना कुछ वक्त वर्जिश के वास्ते खर्च करे, मुख्तस रखे। अगर हम सेहतमंद, खुशहाल और कामयाब जिंदगी गुजारना चाहें तो वर्जिश ना अपनी रोजमर्रा जिंदगी को लाजमी हिस्सो अमना बनाना वैगो। रोजाना वर्जिश न सिर्फ जिंदगी में साल बदावे बल्कि साल में जिंदगी भी भर दे। जिस आमीन आगे पेश है यू नगमो।

छमीन तम नगमो सुन लिया था। इस नगमा के नाले आज का प्रोग्राम को वक्त मुकरना आयो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी, अपना मेज़बान शबीर अहमद पसवालना। दियो इजाज़त। अच्छा जी, रब राखो।

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे हैं।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, बैन अल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौम की क़यादत की, जम्मू कश्मीर में योगा डे के मौके पर मुतादी तकारीब का एहतमाम, किश्तवाड़ में उर्से शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, और बाजारों में गैर मियारी खादें और जरासीम कुश अद्वियात काश्तकारी के लिए सिम में कातिल। मौजूदात की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही

0: ही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
1: सुनो ना, हा? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूं।
2: तो रोका किसने है? हा?
1: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे?
1: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
1: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
1: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
3: 9018074333।
4: 9018074333।
5: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैटबॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
6: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
7: होली का ना अलग ही मजा है। लोरी ना मिठाई खाओ, वाह इसका स्वाद तो बड़ा ही अच्छा है। मैं जो मिठाई लेके आई उसमें ऐसा स्वाद क्यों नहीं आ रहा?
8: सावधान रहना रीना, त्योहारों के समय मिठाइयों में मिलावट की संभावना बहुत अधिक होती है, इससे हमारी और हमारी फैमिली की सेहत खराब हो सकती है।
7: अच्छा भाभी,
8: और हाँ मिठाई खरीदने से पहले ये जरूर जांच लें कि दुकानदार के पास फूड लाइसेंस हो। अगर किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलावट की शंका हो तो राज्य खाद्य संरक्षा आयुक्त के कार्यालय में शिकायत कर सकती हो और अधिक जानकारी के लिए www.fssai.gov.in पे लॉगिन कर सकती हो। और हाँ अगर आप चाहती हो तो वेबसाइट पर खाद्य मिलावट की जांच के आसान से तरीकों की जानकारी भी ले सकती हो।
7: थैंक यू भाभी, आपने तो मेरी आँखें खोल दी।
9: याद रहे, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: सेहत जो हर एक इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तुम सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात हिज कमी, यम चीज रुकावट बनान तो जरूरी इलाज इथी रोजान, मगर वन अत हाल JK सेहत ऐप। यह तुह डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुन तो जरूरत ख्याल थावान। यह ऐप एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल झांडन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हावन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवा हिज अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिज जानकारी, बेचे अत सत प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल। चाहे तुम मरीज, डॉक्टर, स्टूडेंट या अक साध शहरी छो, JK सेहत छो सारनी सूत, सिंपल, सेफ तो सिर्फ तोहे खतर।
11: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
12: शर्मीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। आज योगा का बैन अलाकवामी दिन मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज दुनिया भर में योगा से जुड़ी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें शरीक होने वाले लोगों ने मुख्तलिफ योगा आसन करके योगा से मिलने वाले सेहत बख्श फवायद को उजागर किया। भारत में बैन अलाकवामी योगा डे की तकारीब की क्यादत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने की। मौसूफ ने आज कोलकाता के रेड रोड पर मुनक़द 12वें आलमी योगा दिन की कौमी तकरीब में शिरकत की, जबकि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में रियासती सतह की तकरीब में शिरकत की। योगा डे के मौके पर कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21 जून जमीन का तवील तरीन दिन होता है और अब योगा की बदौलत ये दुनिया भर में इज्तमाही जश्न के सबसे बड़े दिन के तौर पर मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि योगा लोगों को जोड़ने का काम करता है और यह सिर्फ जिस्मानी वर्जिश नहीं बल्कि रूहानी इजहार का एक मौसर जरिया है। याद रहे कि इस साल आलमी योगा डे का थीम है सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योगा, और इसका

0: 12वें आर्मी योम योगा के मौके पर बड़गाम, पुलवामा, श्रीनगर, कुलगाम और शुपियां समेत जम्मू कश्मीर के दीगर जिलों में भी खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया। बड़गाम में जिला इंतजामिया की जानिब से स्पोर्ट्स स्टेडियम में मरकजी तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अथर आमिर खान और SSP हरिप्रसाद समेत बड़ी तादाद में तलबा, नौजवानों और आवाम ने शिरकत की। जबकि पुलवामा में हॉकी टर्फ ग्राउंड पर मुनाकिद तकरीब में डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉ. बशारत कयूम ने योगा को जिस्मानी जहनी सेहत के लिए मुफीद करार देते हुए इसे रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। ये तो बात हुई उन तकारीब के ताल्लुक से जो आज आलमी योगा डे के मौके पर मुनाकिद हुई। इधर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मेला खीर भवानी के मुकद्दस मौके पर अवाम, बिलखसूस कश्मीरी पंडित बिरादरी को मुबारकबाद पेश की है। वाज़ेह रहे कि मेला खीर भवानी कल 22 जून को मनाया जा रहा है। अपने पैगाम में उमर अब्दुल्ला ने अकीदतमंदों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेला खीर भवानी रूहानी अहमियत का हामिल त्यौहार है, जो जम्मू कश्मीर की मुश्तरका सकाफत, हम आहंगी और बाहमी एहतराम की रिवायात की अक्कासी करता है। उधर आज किश्तवाड़ में हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक निहायत अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है। वाज़ेह है कि उर्स के सिलसिले में उनके आस्ताने आलिया पर 10 रोज से खतमात मौजमात की मजालिस जारी रहीं। आज उर्स पाक में शिरकत करने के लिए हजारों मकामी और गैर मकामी अकीदतमंद किश्तवाड़ में उनके आस्ताने आलिया पर चले आए और उर्स की तकरीब कल सुबह इख्तिताम को पहुंचेगी। एक रिपोर्ट के साथ किश्तवाड़ से मुश्ताक देव।
1: हर साल की तरह इंसाल भी मुबल्लिग दीन वहादत हजरत सईद शाह मोहम्मद फरीदुद्दीन बगदादी सुमा किश्तवाड़ी रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स किश्तवाड़ में रिवायती अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मुसलसल 10 दिनों तक इनेकाद मजालिस खतमात और दुरूद अज़कार के बाद उर्स की तकरीब पर आज सुबह से ही मजालिस की शुरुआत हो गई है। हजारों गैर मुकामी व मुकामी जायरीन दरबार फरीदिया और दरबारी असरारिया पे हाजिरी देकर फातह खानी करके फयूज और बरकत से फैजाब हो रहे हैं। इहादे दरबार फरीदिया में किश्तवाड़ में मोहम्मद इस्तराहत अलिया इजाम के सैकड़ों साल कबल इस्तेमाल में लाए गए पारचजात और दीगर तवरुकात की निशानदेही की जा रही है, जिन्हें देखने के लिए जायरीन पंजाब, हिमाचल प्रदेश के अलावा वादी कश्मीर और पूंछ, राजौरी, सांबा, जम्मू, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रामबन, अजला से वारिद हुए हैं। साथ में डोडा, बदरा, बलेसा, ठाठरी, बौंजवा, सरफल, सुरूर, वार्ड वन, मड़वा, दच्छन, नागसनी, छिछा, पाडर, मुगल मैदान, छात्रू, चुनगाम, सिद्धि, केशवान, डूल, चंद्रवनी वगैरह से आए कसीर तादाद में मर्द और खवातीन जायरीन मजालिस खत्मात में शरीक हो रहे हैं। आज नमाज इशा की अदायगी के बाद से शबखानी का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें नऊद खानी, मनकबत खानी, दुरूद खानी और वाज़ और तबलीग भी होगा। कल सुबह नमाज फजर के बाद ये तकरीबात इख्तिताम पजीर होंगी और बैरूनी किश्तवाड़ से आए जायरीन अपने घरों की तरफ रखते सफर बांध कर वापस रवाना होंगे। जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में गाड़ियों का माकूल बंदोबस्त कर रखा है और उसको मरवज नजर रखते हुए महकमा बिजली और महकमा पानी ने माकूल इंतजाम कर रखा था। जायरीन की सेहत पर नजर रखने के लिए महकमा आयुष की तरफ से बैतु जायरीन में टिबी कैंप भी कायम किया गया था, जहां तशखीस के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फराहम की जाती रही। आज किश्तवाड़ के मारूफ सियासी मैदान चौगान में रियासी व गैर रियासी ताजरों ने खूब चटाल सजा रखे थे और खूब कारोबार भी करते पाए गए। वक्फ बोर्ड किश्तवाड़ की जानिब से जायरीन के लिए क़याम व तआम का आला इंतजाम किया गया है। फराहमी ये तआम का यह सिलसिला कल सुबह तक जारी रहेगा। हजारों जायरीन को चार वक्त खाना फराहम किया जा रहा है। किश्तवाड़ में वक्फ बोर्ड ने एक मेहमान खाना यानी आला पैमाना व वसी तर्ज का गेस्ट हाउस तामिर करने का ऐलान किया था, जिसकी यहाँ जरूरत महसूस की जा रही है, लेकिन अभी तक इस मेहमान खाने की तामिर की शुरुआत भी नहीं की जा चुकी है, क्योंकि यहाँ उर्से फरीदिया व उर्से असरारिया के अलावा हर रोज जायरीन की तादाद में इजाफा होता देखा जा रहा है। इसलिए यहाँ एक सराय की तामीर की जरूरत भी महसूस की जा रही है, जिसकी तरफ वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर को देना चाहिए। अगर कि ज़ियारत फरीदिया और ज़ियारत असरारिया के मजीद हिस्सों में कुछ तामीरी काम किए जा रहे हैं और जो तकमील के करीब भी है। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने परसों रात को ज़ियारत असरारिया से लेकर ज़ियारत फरीदिया तक कुछ पैचेस भर तो दिए हैं। चाहिए तो था कि इस पूरी सड़क पर तारकोल बिछाया जाता, लेकिन वैसा न करने पर जिला इंतजामिया की नुक्तचीनी की जा रही है। उधर डोडा में भी आज मोहल्ला आस्थान में उर्स के सिलसिले में मजलिस खत्मात मुनाकिद की जा रही है। उर्स मुबारक के सिलसिले में मेंबर पार्लियामेंट सजाद अहमद किजलू, साबिक MLC

0: मोहम्मद इकबाल बाग गणेशी, साबिक वजीर गुलाम मोहम्मद सरूरी ने लोगों को मुबारकबाद पेश की है। इधर आलमी योगा दिन के मौके पर आज सुबह चौगान में एक पुरस्कार तकरीब मुनक़द हुई, जिसमें कसीर तादाद में लोगों ने बशमूल मेंबर असेंबली किश्तवाड़ व जिला तरक्याती कमिश्नर किश्तवाड़ ने शिरकत की।
1: किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर हजरत सैयद सोले खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात आज खान साहब बड़गाम में अकीदत एहतराम से मुनाकिद हो रही है, जिनमें वादी के मुख्तलिफ इलाकों से आए अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। उर्स के दौरान दुरूद अज़कार और खतमात मौज़मात की मजालिस का अहतमाम हो रहा है, जबकि नमाज जोहर के बाद मुकदस तबरुकात की ज्यारत भी कराई गई। साबिक वजीर और पीडीएफ के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने भी उर्स तकरीबात में शिरकत की और इस मौके पर जम्मू कश्मीर में अमन, खुशहाली और भाईचारे के लिए दुआ की। वहीं पीडीपी के लीडर मंजूर अहमद वानी ने हजरत सैयद सोले खान साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स पाक पर लोगों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए औलियाउल्लाह की तालीमात पर अमल पैरा रहने की तलकीन की है। इधर गांधी किंग फाउंडेशन के सदर बराए जम्मू कश्मीर डॉ मोहम्मद अयूब मत्तू ने मेला खीर भवानी के सिलसिले में कश्मीरी पंडित बिरादरी को दिली मुबारकबाद पेश की है। त्राल से शब्बीर भट्ट की इतला है कि आज सैयद हसन मंतकी रिसर्च अकेडमी अवंतीपुरा की जानिब से एक रोजा कौमी सेमिनार बउनवान कश्मीर में फिरका वारणा और समाजी हमाहंगी के फरोग में खानकाहों का किरदार मुनक्किद हुआ। इस सेमिनार की सदारत साबिक ब्यूरोक्रेट और मारूफ आलिम एजाज अहमद ककरू ने की, जबकि इस मौके पर रुकन असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक, रुकन असेंबली पापुर हसनैन मसूदी, मीरवाइज मुनीर फिरदौसी, मौलाना मंजूर अहमद मिसबाही और दीगर कई शख्सियात मौजूद थी। शेरबीन जारी है, हमारे साथ रहिएगा।
2: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर, हर गली, हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
3: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
4: सेहत तक हर इंसान की पहुंच एक बुनियादी हक है, लेकिन आज भी कई लोगों के लिए ये एक मुश्किल सफर है। दूर दराज इलाकों में हॉस्पिटल, लंबी कतारें और सही जानकारी की कमी, ये सब रुकावटें बनती हैं। इन छोटी छोटी रुकावटों की वजह से जरूरी इलाज भी रह जाता है, लेकिन अब इसका हल है जेके सेहत ऐप। ये है आपका डिजिटल साथी जो आपकी सेहत से जुड़ी हर जरूरत का ख्याल रखता है। अपने फोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर खोलिए, सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए जेके सेहत ऐप और इंस्टॉल करके रजिस्टर हो जाइए। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों पे अवेलेबल है। इस ऐप से डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, नजदीकी हॉस्पिटल ढूंढ सकते हैं, ऑनलाइन सलाह और मेडिकल रिपोर्ट्स देख सकते हैं, एम्बुलेंस बुक कर सकते हैं, दवाइयों की अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, ब्लड बैंक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं और सरकारी हेल्थ स्कीम्स के बारे में भी जान सकते हैं। और साथ ही साथ आप प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस भी बुक करवा सकते हैं। इस ऐप में AI सिम्टम चेकर चैट बॉट भी अवेलेबल है। चाहे आप मरीज हो, डॉक्टर, स्टूडेंट या एक आम शहरी, जेके सेहत ऐप सबके लिए है। इट्स सिंपल, सेफ और आपके लिए।
5: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन J&K।
1: जम्मू कश्मीर के हर घर की आवाज शहरबीन आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और FM के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समीन, अवामी इत्तेहाद पार्टी के सीनियर लीडर और रुकने पार्लियामान इंजीनियर रशीद ने कुछ वक्त पहले ऐलान किया था कि वो MP की हैसियत से अपने ओहदे को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। अलबत्ता इसके बारे में वो अवामी ख्यालात और अवामी रुझानात की का इंतजार करेंगे। इस सिलसिले में आज अवामी इत्तेहाद पार्टी के एक तर्जमान ने बताया कि इस ताल्लुक से पार्टी ने फैसला लिया है कि हर हल्का इंतखाब से लोगों की राय जानी जाए।

0: आएगी, रोगों की राय मालूम की जाएगी और उसके बाद ही इस सिलसिले में कोई हतमी फैसला लिया जा सकता है। दरियासना पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर और साबिक वजीर अब्दुल गनी वकील ने आज अपने एक बयान में कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली के लिए संजीदा मालूम नहीं होती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उन्होंने इस सिलसिले में एक कुल जमाती मीटिंग तलब की होती। अब्दुल गनी वकील के बकौल नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप फकत इस ताल्लुक से बयानबाजी से काम ले रही है। समन वादी कश्मीर में कई हफ्तों से हर अगले दिन किसी न किसी इलाके में ज्वालाबारी होती है और आंधियां चलती हैं, बादल फटते हैं और भारी बारिशें होती हैं। इस सूरत हाल का बेशतर खमियाजा मेवा बागात, सब्जी की फसल और धान की पनीरी को भुगतना पड़ता है, जिसका बयान सबूत यह है कि आज वादी के मुतअद्दिद इलाकों में काश्तकार अफसोस और तशवीश के आलम में पाए जाते हैं। काश्तकार हुकूमत से नुकसान की भरपाई, एंटी हेल जालियों और सबसे बढ़कर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम का मुतालबा कर रहे हैं, पर फिलहाल इनमें से एक भी कदम नहीं उठाया गया है। इसी दौरान वादी के मुख्तलिफ जिलों से शिकायत आ रही है कि बाजारों में फरोख्त की जाने वाली जरासीम कुछ अद्वियात और खादें अमूमन गैर मियारी पाई जा रही हैं और यूं काश्तकारी के शोबे को एक और गहरी मार झेलना पड़ रही है। काश्तकार महकमे ज़िराअत से नाला है और पूछते हैं कि महकमे की एनफोर्समेंट विंग क्या हुई जिसके जिम्मे खादों और अद्वियात का मेयार जांचने और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का काम था। एक रिपोर्ट के साथ फैयाज वानी।
1: जम्मू कश्मीर की बैठक में फ्रूट इंडस्ट्री को रीड के हेडिक की हैसियत हासिल है और लाखों अफराद का रोजगार इस तरह से वाबस्ता है। अगर जो हुकूमत और मुतलिका इदारे हड़ताल, बागवानी के फरोग, किसानों की आमदनी में इजाफे और इस सदत को मजीद मुनाफा पक्ष बनाने के लिए बलदबा दावे करते आ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकायक बिल्कुल इसके बरक देखने को मिल रहे हैं। रवा सीजन में एक जानब मौसमी बेअतदाली, बेवक्त बारिशों और तबाहकुन जालाबारी ने बागबानों की मुश्किल में इजाफा किया है, तो वही दूसरी जानब मार्केट में मुबैनतों दस्तियाब गैर मियारी जारी अद्वियात ने सूरतहाल को मजीद संगीन बना दिया है। ग्राम शोपियां के कई इलाकों में गैर मियारी जरी अद्वियात के इस्तेमाल के बाद मेवा वक्त से पहले ही गिरने लगा है, जिसे किसानों की साल भर की मेहनत और कमाई खाक पे मिल गई है और बाग मालिकान शदीद माली बुरान से दोचार हो गए हैं। अगर कि गैर मियारी अद्वियात की वजह से मेवा को पहुंचने वाले नुकसान का जायजा लेने के लिए हाल ही में डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, डिप्टी कमिश्नर शोपियान, स्वास्थ्य के माहरीन और एमएलए शोपियान ने मुतासर इलाकों का दौरा करके जमीनी सूरतहाल का जायजा लिया। तमाम किसानों ने शहरबीन को बताया कि महज दौरों और जायजा मीटिंगों से उनके नुकसान का अंदाजा मुमकिन नहीं है। तमाम बाग मालिकान ने गैर मियारी अद्वियात की फरोख्त में बलवस पेस्टिसाइडों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाने और मुतासर किसानों को पूरी माली इमदाद फराहम करने का मुतालबा किया है। कई किसानों और व्यापारियों शहरबीन को बताया कि माजी में भी गैर मियारी जरी अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक खसूसी मुहिम शुरू की गई, लेकिन कुछ ही उर्सा गुजरने के बाद ही ये मुहिम हैरानकुन तौर पर सरद खाने की नजर हो गई। रोड इंडस्ट्री से वाबस्ता प्राप्त शहरबीन को बताया कि एक तरफ वो गैर प्यारी अद्वियात की वजह से परेशान है, वही दूसरी जानब मौसमी तब्दीली और कैरंगेज जलाबारी से किसानों को करोड़ों रुपए के नुकसान से दो चार होना पड़ा है और जिला शोपियान में रवा सीजन में कई बार शदीद तरीन जलाबारी से एरा क्वालिटी का बेवा सी ग्रेड में तब्दील हो गया है। उन्होंने मजीद कहा कि शोपियान वादी कश्मीर का दूसरा बड़ा फ्रूट बेल्ट माना जाता है और यहाँ हजारों खानदानों का रोजगार सेब की सनत से वाबस्ता है। तमाम मौसमी तबाहकारियों से पैदा होने वाली माली बोरा ने किसानों की कमर तोड़ कर रख दी है। मुतजिद बाग मालिका ने शहरबीन को बताया कि उन्होंने बागात में बीमारियों पर काबू पाने के लिए अभी तक एक दर्जन से जायद सुपरे की, लेकिन बीमारियां काबू नहीं हो पा रही है क्योंकि मार्केट में मुबैनत और गैर मियारी जरी अद्वियात दस्तियाब है, जिनके इस्तेमाल से बीमारियां कंट्रोल नहीं हो पा रही है और उल्टा इन अद्वियात से मेवा वक्त से पहले ही गिरने लगा और इस पूरी अमल ने जरी अद्वियात की निगरानी के लिए एनफोर्समेंट विंग और दीगर मुंसलिक इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान खड़ा कर दिए। उन्हें इल्जाम लगाया कि गैर मियारी अद्वियात से होने वाले नुकसान की तहकीकात के दौरान मुतलिका इदारों के अफसरान उन्हीं पेस्टिसाइड डीलरों और पेस्टिसाइड उंजमनों के नुमाइंदों से हैरतअंगेज तौर पर मालूम हासिल कर रहे हैं, जिनके एतबारे पर पहले ही सवाल उठाए जा रहे हैं।
0: शुभ्रा से फैयाज वानी की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर आज मुल्क भर में नीट का इम्तहान आज सर नौ मुनाकिद किया गया। वाजह है कि मुल्क भर में इस इम्तहान में लगभग 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। जम्मू कश्मीर पेंशनर्स सीनियर सिटीजन एंड सिविल सोसाइटी वेलफेयर फेडरेशन जिला अनंतनाग की एक मीटिंग अच्छाबल के टाउन हॉल में मुनाकिद हुई, जिस کی صدارت ضلعی صدر عبدالمجید ڈار نے کی۔

0: इस कॉन्फ्रेंस में फेडरेशन के रियासती सदर लेनिन संपत ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जबकि इस कॉन्फ्रेंस में वादी कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों से ताल्लुक रखने वाले सुदूर भी शामिल हुए। अभी अभी हमें खबर मिली है कि महकमे सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने शादाब करवा इलाके शोपियां के मारूफ समाजी कारकुन और वहां की एक मारूफ शख्सियत अब्दुल गफार भट्ट के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। इसके साथ ही शहरबीन का वक्त अब खत्म हो जाता है। प्रोग्राम के मेजबान और एडिटर अशफाक लोन और प्रोग्राम की निगरान समीना शाह को इजाजत दें। खुदा हाफिज।
1: शहरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताबुन कर रहे थे खैबर सीमेंट, मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
2: आप बिजनेस की तरक्की को लेकर है फिक्रमंद? अरे रेडियो पे दे इश्तेहार और बढ़ाएं अपना कारोबार। अब फिक्र की क्या बात जब है कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का साथ। जी हाँ, अपने कारोबार की उड़ान को दीजिए एक नई पहचान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, फोन नंबर 9419000255।
3: मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। जी हाँ, मून वाटर टंकियां बनाने वाले अब लाए हैं मजबूत पायेदार और आला तरीन क्वालिटी के मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग्स। बस नाम ही काफी है, मून SWR पीवीसी पाइप्स एंड फिटिंग।
4: घर का एसी हो या गीजर, वोल्टेज का हीरो सिर्फ एक BS वॉइस स्टेबलाइजर्स। पावर फ्लक्चुएशन सॉर्टेड, लॉन्ग लाइफ फॉर योर अप्लायंसेस गारंटीड। BS वॉइस, दैट्स बेस्ट सर्विस। कॉल नाउ 9419001960।
5: अरे ये सेवराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खानपान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
8: याद रखें, सुरक्षित आहार स्वास्थ्य का आधार। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें www.fssai.gov.in पर।
9: इशू इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
10: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का सर्रा सर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
11: सेहत जो हर एकिस इंसान सुन बुनियादी हक, मगर आज तो चुए सफर वारियन लुकन खतर मुश्किल। दूर दराज इलाकन मज हॉस्पिटल तो सही मालूमात निस कमी, यम चीज छ रुकावट बनान तो जरूरी इलाज छ इत्ती रोजान। मगर वन छ अत हाल JK सेहत ऐप, ये छ तुहुंद डिजिटल साथी जो सेहतस मुताबिक कुनि तो जरूरत ख्याल छ थावान। ये ऐप छ एंड्रॉइड तो आईफोन दोशवनी मज दस्तियाब। यथ ऐप मज छ डॉक्टर सिंस अपॉइंटमेंट बुकिंग, नजदीकी हॉस्पिटल छांडुन, ऑनलाइन सलाह तो मेडिकल रिपोर्ट्स हाविन, AI सिम्टम चेकर चैटबॉट, एम्बुलेंस बुक करें, दवाहन इस अवेलेबिलिटी चेक करें, वैक्सीनेशन रिकॉर्ड्स चेक करें, ब्लड बैंक कुछ मालूमात तो सरकारी हेल्थ स्कीमन हिस जानकारी। बेचे आसित प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोफेशनल होम सर्विस तो अवेलेबल, चाहे तुम मरीज डॉक्टर स्टूडेंट या अक साध शहरी छो। JK सेहत चु सारनी सिंपल सेफ तो सिर्फ तुहे खतर।
12: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय नेशनल हेल्थ मिशन JNK।

लेते हुए कहा है कि सरकारी नौकरियों को शिफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरीक़ेकार ने तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए नौकरी के मौक़ों को काफ़ी हद तक कम किया है, जो मुकाबला जाति इम्तहानात और भर्ती एजेंसियों के जरिए नौकरी पाने के मुंतजर होते हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज पुंछ में पार्टी कारकुनों के साथ एक मीटिंग के दौरान पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। धनियासना डोडा में बीजेपी के एहतमाम से विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मुनक्कद हुआ। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायमकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव कुमार की वालदा के फौत होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दफ्तर

0: तुरंत पार्टी सरगर्मियों का जायजा लिया। धनियास्ता डोडा में बीजेपी के अहतमाम से विकसित भारत संकल्प सम्मेलन मुनक्कद हुआ। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के कायमकाम चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव कुमार की वालदा के फौत होने पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। श्रीनगर में आज जम्मू कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दफ्तर पर एक ताजियती इजलास मुनक्कद हुआ, जिस दौरान कायमकाम चीफ जस्टिस के साथ ताजियत और हमदर्दी का इजहार किया गया। बनवास त्यौहार को के कामयाब इनेकाद के बाद मटन तीर्थ ट्रस्ट ने इंतजामिया और मुतल्लिकीन का शुक्रिया अदा किया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रस्ट के प्रधान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला और जिला इंतजामिया अनंतनाग के अफसरान का इस त्यौहार के दौरान मुकम्मल ताउन देने पर शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि सालाना मजहबी त्यौहार में 50,000 से जायद हिंदू श्रद्धालुओं ने शिरकत की। उन्होंने मेले की वसी तशहीर के लिए मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। जम्मू कश्मीर को मनुष्यत की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दोमत से जारी हैं। मनुष्यत के खिलाफ एलजी का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: इस बिदत पर काबू पाने के लिए दरकार इकदामात और लोगों की जिम्मेदारियों के तालुक से महकमे माल में नायब तहसीलदार के ओहदे पर तैनात फारूक अहमद वानी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
2: ड्रग एडिक्शन एक बड़ा नासूर सोशल लेवल हमारे मुआशरे में बन चुका है। बहुत सारे जवान बच्चे बच्चियां टीनेजर्स इसकी जद में आ चुके हैं। मंशियात की लत एक दायमी बीमारी है जो इंसान की दिमाग और रवैया को मुतासिर करती है। पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल बनता है कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें, उनके दोस्त बने, उनको अलग ना छोड़े, उनको बचपन से ही एक अलग स्पेस ना दें, उनके एक्टिविटीज और उनके फ्रेंड सर्कल को क्लोजली मॉनिटर करें और जरूरत से ज्यादा अपने बच्चों का पैसे ना दें।
0: खबरों के इकदाम से पहले मौसम पर एक नज़र। महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मुकामात पर हल्के से दरमियाना दर्जे की बारिश और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 27.4 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुरई आफ्ताब सुबह 5:20 पर, गुरूब आफ्ताब शाम 7:46 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
3: जल्दी टिफिन पैक करो राजू, मोबाइल छोड़ो।
4: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
3: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
4: तो फिर सही नंबर
3: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
4: आपने तो बचा लिया दीदी।
3: काम से नहीं।
5: RBI कहता है
6: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
7: आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। तंदुरुस्ती हजार नियमत है। तंदुरुस्ती है तो आप कुदरत की हर एक नियमत का लुत्फ उठा सकते हैं। तंदुरुस्ती है तो आप जगह जगह जा सकते हैं। तंदुरुस्ती है तो आप बाकुवत हैं और कुवत और तवानाई आपकी सलामती और बहबूदी को बयान करती है। मगर ये तंदुरुस्ती तब ही मुमकिन है जब हम अपनी सेहत जिस्मानी और दिमागी तौर पर दोनों का ख्याल रखेंगे। मगर अफसोस हम न तो सेहत और ना ही जिस्म का ख्याल रखते हैं बल्कि सिगरेट नोशी, शराब नोशी और नशाखोरी में फंस जाते हैं। बनी नवा इंसान ने अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए जमाने कदीम से कई तरीके कार दरियाफ्त किए, वजह किए और इनका इस्तेमाल भी किया। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में कई ऐसे तरीके वजूद में आए जिनमें से कुछ वक्त के साथ उरूज पा गए और कुछ वक्त के साथ जवाल पजीर हुए। मगर भारत में कई सदियों से राइज योगा आज दुनिया के कोने कोने में मकबूल हो रहा है। 27 सितंबर 2014 को वजीर अजम नरेंद्र मोदी की तरफ से पेश की गई तजवीज के पेश नजर 177 ममालिक ने इस तजवीज के हक में वोट करने के साथ ही 21 जून को हर साल बैन अल-अक़वामी योगा दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया। इस दिन का फैसला इसलिए भी किया गया क्योंकि ये दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है। पहला योगा दिन 2015 में मनाया गया اور آج یعنی 21 جون کو یہ دن دنیا بھر کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ہر ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منایا گیا۔ یوگا کے عالمی دن کے موقع پر صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوگا انسانیت کے لیے بھارت کا سب سے بڑا تحفہ ہے۔ ان نے کہا کہ جسمانی صحت، ذہنی تندرستی، جذباتی توازن اور سماجی ہم آہنگی کے فروغ میں یوگا ایک خاص

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से इस वक्त वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। समीन पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर में कलदम करार दी गई तंजीम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कारकुनों और पुलिस के दरमियान होने वाली झड़पों में हलाकतों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तादाद कहीं ज्यादा है। समीन हुकूमत मुखालिफ ये तहरीक माशी मसाइल के हल और हुकूमती निज़ाम में इसलाहत का मुतालबा कर रही है। गुज़श्ता हफ्ते ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कलदम करार दिए जाने के बावजूद इसके हामी एहतजाज जारी रखे हुए हैं। समीन एदाद शुमार के मुताबिक इब्तदाई तौर झड़पों में 7 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें 3 शहरी और 4 पुलिस अहलकार शामिल थे, जबकि दर्जनों अफराद जख्मी हुए थे। ताहम ताज़ा एदाद शुमार के मुताबिक हलाकतों की मजमू तादाद बढ़कर 20 तक जा पहुंची है। समीन मुजफ्फराबाद में इस हफ्ते मुतअद्दिद दुकानें अवामी एक्शन कमेटी की हड़ताल की अपील के हक में बंद रहीं, जबकि इलाके में मोबाइल नेटवर्क सर्विस भी शदीद मुतासिर रही। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं ने तंजीम को दहशतगर्द करार दिए जाने के हुकूमती फैसले को जुल्म करार देते हुए कहा कि उनकी जद्दोजहद जायज माशी और सियासी हकों के हसूल के लिए है। वाज़ह रहे कि गुज़श्ते बरस सितंबर में भी इस तंजीम की क़यादत में होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान कई रोज तक पुरतशद्दुद झड़पें जारी रहीं, जिनमें तस्दीकशुदा इत्तला'आत के मुताबिक 9 अफराद हलाक हुए थे। समीन रावलाकोट की तरफ जाने वाले रास्तों की बंदिश की वजह से शहर में आटे का बहरान पैदा हो गया है और लोग पैदल और दूसरे रास्तों से खाने पीने की आशा लाने पर मजबूर हैं। दूसरी जानी वहां जिला इंतजामिया ने एक नोटिफिकेशन जारी, जिसमें दुकानदारों और ताजरों से कहा गया है

आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से वादी की आवाज पेश किया जा रहा है। गुर्बत इंसानी वसाइल की सरमाया अंदोजी के अमल में रुकावट डालती है, क्योंकि गुर्बत की वजह से आम लोगों को तालीम और अच्छी खजा तक रसाई हासिल नहीं होती, जो कि उनके महारतों को चमकाने के लिए नहायत जरूरी है। नतीजतन गुर्बा के लिए मैशियत के बारे में जरूरी मालूमात का हसूल और अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। मुबसरीन के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत में मुब्तला अफराद की तादाद हुकूमती आदाद शुमार से कहीं ज्यादा है। मिसाल के तौर पर हुकूमती आदाद शुमार के मुताबिक 2025 में गुर्बत की शरह 22.3% थी और 2007-2008 में कम होकर 17.5% रह गई थी, जबकि 2008-09 में 73% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी बसर कर रहे थे। इसी तरह पिछले सालों में भी गुर्बत की शरह घटाकर पेश की जाती रही। आलमी बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 51% है। महदूद वसाइल, आबादी में तेज रफ्तार इजाफा, जहलत व नाखानदगी और इंसानी वसाइल में टेक्नोलॉजी और इंतजामी सलाहियतों के फुकदान और नाअहली ऐसे अवामिल हैं जिनकी वजह से गुर्बत में वहां मुसलसल इजाफा हो रहा है। एनर्जी के बहरान, सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी की वजह से टेक्सटाइल मिलों और दीगर अहम सन्नतों की बंदी से वहां बेरोजगारी बुलंद शरह से बढ़ रही है, जिससे गुर्बत में मजीद इजाफा हो रहा है। यूटिलिटी बिलों में बड़े इजाफे और गैर मुनसिफाना और जाबराना टैक्स निजाम की वजह से गरीब और अमीर के दरमियान वहाँ काफी खलीज पाया जाता है और आम आदमी के लिए कई एक माशी और समाजी मसाइल वहाँ पैदा हो रहे हैं। शहरी इलाकों की नस्बत दही इलाकों में गुर्बत की शरह बहुत ज्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 75% गुर्बा देहात में रहते हैं, जिन्हें जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी मैसर नहीं है। दही मैशत का ज़राअत पर भारी इनसार है और तकरीबन 66% अफराद का जरिए माश ज़राअत है। चूंकि ज़राअत दही आवाम की आमदनी का बड़ा जरिया है, ज़राअत की तरक्की गुर्बत कम करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। एक इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त 10 मिलियन से ज्यादा अफराद गुर्बत की दलदल में फंस चुके हैं। इस इदारे ने गुर्बत की मुख्तलिफ जहतों का एक इंडेक्स तैयार किया है, जिसमें तालीम, सेहत, बिजली, खाना पकाने के ईंधन वगैरह को शामिल किया है। इस इंडेक्स में गुर्बा की तादाद के अलावा गुर्बत की शिद्दत का भी अंदाजा लगाया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तालीम से महरूम लोगों की तादाद 20% से ज्यादा है, जो कभी स्कूल नहीं गए, गजाइत के बारे में सही आदाद शुमार दस्तियाब नहीं। बच्चों की शरामवाद 30% है। जहां तक मयारी जिंदगी का ताल्लुक है, 10% लोग बिजली की सहूलत के बगैर जिंदगी बसर कर रहे हैं। 33.3% को सेहत की सहूलतें मैसर नहीं। 8% को पीने का खालिस पानी दस्तियाब नहीं। 41% खाना पकाने के ईंधन के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते और 26% के पास किसी किस्म का कोई असासा नहीं है। समीन, इस रिपोर्ट में गुर्बा की मोहताजी की सतह का भी जायजा लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 34.3% आबादी की मोहताजी की सतह 40% है। समीन, पाकिस्तान में गुर्बत के फैलाव का सही अंदाजा लगाने के लिए जरूरी है कि महज आमदनी और सर्फ की कमी के अलावा इंसानी मोहताजी के दीगर अहम पहलुओं का भी जायजा लिया जाए, जिनका आवाम को हर रोज सामना करना पड़ता है। समीन, ये थी चंद बातें पाकिस्तान में गुर्बत के हवाले से। अब प्रोग्राम के आखिर पर ये नगमा सुनिए।

इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का जो वक्त है अपने अख्ताम को पहुंचता है। मेज़बान को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। आप खुश रहिए, सलामत रहिए। खुदा हाफिज़।

वादी की आवाज। पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश्र होता है।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता और भारत ए ने मेजबान श्रीलंका ए को 66 रन से हराकर त्रिकोणीय राष्ट्र ए श्रृंखला अपने नाम की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने ये बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टील्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और

0: और अग्रिय शामिल हैं।
1: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जल मार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
1: INS विक्रांत से लेकर आज तक की यात्रा केवल नए युद्ध पोतों की यात्रा नहीं है, यह भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता की यात्रा भी है। इनका निर्माण भारत में हुआ है, इनकी डिजाइन भारत में तैयार हुई है, इनके निर्माण में भारतीय उद्योगों की प्रतिभा लगी है और यही नए भारत की सबसे बड़ी ताकत है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में रोजगार सृजन की अपार संभावनाएं हैं और भारत जहाज निर्माण क्षेत्र में नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा है।
1: 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था, आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रमुख कार्यक्रम का नेतृत्व किया। कोलकाता के रेड रोड पर आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ योग अभ्यास किया। इस वर्ष का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग प्रशस्त करता है।
1: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका बोध।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस समारोह में योगाभ्यास किया। राष्ट्रपति ने लोगों से योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया।
2: मेरा मानना है कि योग से जुड़े संस्थाओं के निष्ठापूर्ण प्रयासों के बल पर योग जन जन तक पहुंचना। मैं सभी देशवासियों से ये संकल्प लेने का आग्रह करती हूँ, ये योग को अपने दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बनाएंगे। ऐसा करके ये स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र और स्वस्थ विश्व के निर्माण के महान लक्ष्य में अपना योगदान देंगे।
0: विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। हमारे संवाददाता ने बताया कि ये परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई।
2: परीक्षा में शामिल 10,000 से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर और राज्य पुलिस की मदद से दो स्तरीय तलाशी व्यवस्था लागू की गई थी। सीसीटीवी निगरानी के लिए कंट्रोल और कमांड सेंटर, एनटीए मुख्यालय, शिक्षा मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 34 केंद्रीय संस्थानों, सभी राज्यों तथा जिलाधिकारी कार्यालयों में स्थापित किए गए थे। एनटीए ने बताया

0: परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
1: तमिलनाडु के पेरियापालियम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।

0: ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट देने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के खातीपुरा रेलवे स्टेशन से जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने खातीपुरा में मेगा कोचिंग टर्मिनल का उद्घाटन भी किया और कई रेलवे स्टेशनों पर उन्नत यात्री सुविधाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर रेल मंत्री ने कहा कि देश भर में रेल अवसंरचना और सेवाओं में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में 76,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है।
1: मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि पूरे बॉर्डर एरिया को रेलवे से कवर करने का प्रकल्प पूरा हाथ में लिया है। ये प्रोजेक्ट हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, तो इसमें पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। थोड़ा समय निश्चित तौर पे लगेगा क्योंकि डीपीआर बनाना, फौज के साथ मिलकर काम करना, के साथ चर्चा करके इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच बहुप्रतीक्षित मुक्त व्यापार समझौते पर इस वर्ष दिसंबर तक हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये समझौता अगले वर्ष फरवरी या मार्च तक लागू हो सकता है। आज मुंबई में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से भारतीय कारोबारियों को यूरोप के लगभग पूरे बाजार तक बेहद कम या शून्य सीमा शुल्क पर पहुंच मिलेगी और इससे भारत के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने गोवा में बड़े पैमाने पर अवैध लौह अयस्क खनन से जुड़े मामले में सलगांवकर समूह और उससे जुड़े एवीएस समूह की लगभग 1,000 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्तियां कुर्क की हैं। ये कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत की गई। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने मुंबई स्थित एक फर्म के साझेदारों से जुड़े कई परिसरों और अन्य स्थानों पर 62,42,00,000 रुपए की कथित बैंक धोखाधड़ी के संबंध में तलाश अभियान चलाया है। सीबीआई ने कहा कि मुंबई में इंडियन बैंक की एसएएम शाखा की शिकायत पर इस महीने की 18 तारीख को मामला दर्ज होने के बाद तलाश अभियान चलाया गया। एजेंसी ने फर्म और उसके साझेदारों, अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और अज्ञात निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। ये वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। अमेरिका और ईरान के बीच पहले ही 14 सूत्री समझौते में लेबनान सहित सभी मोर्चों पर संघर्ष विराम की बात कही गई है, लेकिन इसराइल इस सीधे समझौते का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसने लेबनान में ईरान समर्थित गुट हिजबुल्ला पर हमले जारी रखे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने स्पष्ट किया है कि यदि बातचीत सफल होती है और प्रारंभिक समझौता लागू होता है तो कतर के पास ईरान की फ्रीज की गई $6 अरब की धनराशि ईरान को वापस दिए जाएंगे। समाचार कक्ष से जया भारती।
0: भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट INS तरकश कल मॉरिशस के पोर्ट लुइस पहुंचा। ये जहाज दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपने परिचालन अभियान के तहत तैनात है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस तैनाती का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और भारत तथा मॉरिशस के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अपर केंद्रीय आयुक्त पूर्णेंदु भूषण वर्मा इस परिचर्चा में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल और तेलंगाना।

0: में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान, बिहार, झारखंड और ओडिशा में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। और अब बात खेलों की। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह पक्की कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रन से हरा दिया है। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर ही सिमट गई। वैभव सूर्यवंशी को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 7 विकेट पर 158 रन बनाए। शेफाली वर्मा ने सर्वाधिक 31 रन की पारी खेली। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मजबूत समुद्री क्षमताओं को देश के आर्थिक और सामरिक प्रभाव के लिए निर्णायक बताया। कोलकाता में स्वदेश निर्मित 3 नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को समर्पित किए। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET UG पुनर्परीक्षा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न। तमिलनाडु के पेरिया पालियम में सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव से 7 लोगों की मौत, 70 से अधिक लोग प्रभावित। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने और अंतरिम समझौते को सुदृढ़ करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप खिताब जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। शामिन सबके 9 बज चुके हैं। हमारा अगला ऐलान सुनिए। आकाशवाणी हूँ तो श्रीनगर स्टेशन समीन रोज 9 बजे पेश प्रोग्राम शश रंग।

0: INS अग्रय, INS दुनागिरी और INS संशोधक उसी यात्रा को नई गति दे रहे हैं। ये तीनों पोत भारत के तीन महत्वपूर्ण संकल्पों के भी प्रतीक हैं।
1: अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए अहलियत और दाखिले से मुतालिक कौमी इम्तिहान नीट यूजी 2026 आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान दोबारा मुनाकिद किया गया। इम्तिहानात का इनेकाद करने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने कहा है कि मुल्क भर के 5,440 इम्तिहानी मराकज और बैरूनी मुल्क के 14 मराकज पर होने वाले दोबारा इम्तिहान में 20 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। अंग्रेजी और हिंदी समेत 13 जबानों में मजकूरा इम्तिहान का इनेकाद किया गया। एनटीए ने कहा कि 10,000 से ज्यादा माजूर अफराद समेत तमाम उम्मीदवारों के लिए वसी इंतजाम किए गए थे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: इम्तिहानात के तमाम मराकिस पर आधार पर मबनी बायोमेट्रिक और चेहरे की शिनाख्त, सीसीटीवी निगरानी, सिग्नल जैमर्स और रियासती पुलिस की मदद से दो सतही जांच जैसे सिक्योरिटी के बंदोबस्त किए गए। सीसीटीवी निगरानी के लिए एनटीए हेडक्वार्टरों, वजारत तालीम, महकमे आला तालीम के तहत मरकज की मुआवनत से चलने वाले 34 इदारों के साथ साथ तमाम रियासतों और जिला कलेक्ट्रेट में कमान और कंट्रोल सेंटर कायम किए गए थे। इम्तिहानात का इनेकाद मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्स, उमूर खारजा की वजारत, महकमा डाक, भारतीय फिजाइया और वजारत दाखिला समेत दीगर इदारों की मदद से किया गया। मुख्तलिफ रियासती हुकूमतों ने भी तलबा और वालदेन के लिए इंतजाम किए। इनमें इम्तिहान के मराकज पर धूप से बचने के लिए इंतजाम, पीने का पानी, खाना, एम्बुलेंस और जरूरी तिब्बी सहूलियात शामिल थी। आकाशवाणी से सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
1: सीबीएसई ने 12वीं जमात की तस्दीक और दोबारा जांच के नतीज मरहलावार जारी करना शुरू कर दिए हैं। आज मौसूल होने वाली दरखास्त में से 87% से जायद नतीज का ऐलान कर दिया। बोर्ड ने कहा कि बाकी नतीज भी जल्द अज जल्द जारी दिए जाएंगे और तलबा से अपील की है कि ताज़ा मालूम के लिए सिर्फ सीबीएसई के सरकारी जराये और डिजी लॉकर से ही रब्ता करें। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में आज समुद्री खुराक बरामद करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 कम से कम 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा वर्कर्स जख्मी हो गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक हलाकतों की तादाद में इजाफा हो सकता है क्योंकि इमदादी और तिब्बी कार्रवाइयां जारी हैं। आफात की सूरत में काम करने वाली कौमी फोर्स एनडीआरएफ और केमिकल हयातियाती और न्यूक्लियाई खतरात से निमटने वाली खसूसी टीमों ने फौरी तौर पर बचाव की कार्रवाई शुरू की और सख्त हिफाजती जवाबित के तहत गैस के अखराज पर काबू पाने की कोशिश की। वजीर आला सी जोसेफ विजय ने हादसे की आला सतही तहकीकात का हुक्म दिया है और 3 रुकनी कमेटी को 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि मजकूरा वाकये की जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वजीर आला ने महलुकीन के अहले खाना के लिए 2-2 लाख रुपए की इमदादी रकम का ऐलान किया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुवल्लूर में समुद्री खुराक की बरामदाती इकाई में अमोनिया गैस लीक होने के वाकये में जानी नुकसान पर ताजियत का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब राधा कृष्णन और जनाब मोदी ने मुतासरा खानदानों के तई अपनी ताजियत का इजहार किया और जेर इलाज जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ की। योग का बैन अक्वामी दिन आज दुनिया भर में मनाया गया। इसकी मरकजी तकरीब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में कोलकाता के रेड रोड में मुनाकिद हुई। वजीर आजम ने इस तारीखी तकरीब गाह पर हजारों शुरका के साथ योग किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आजम ने जोर दिया कि योग जहन को तंदुरुस्त रखने से लेकर जिस्म को सेहतमंद बनाने तक की राहें हमवार करता है।
3: योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता, योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है, यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है, इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है।
1: इस साल के योग के बैन अक्वामी दिन के मौजू सेहतमंद बुढ़ापे के लिए योग पर रोशनी डालते हुए वजीर आजम ने कहा कि योग महज जिस्मानी वर्जिश नहीं है और न ही ये उम्र के किसी तबके तक महदूद है, बल्कि ये एक इंसानी जज्बे का इजहार है। صدر جمہوریہ

द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में गैरिसन ग्राउंड में योग किया। उन्होंने कहा कि योग भारत की अजीम रिवायत का जश्न है और इसने इंसानियत को सेहतमंद, मुतवाजिन और बाबानी जिंदगी का रास्ता दिखाया है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत 2026 की ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत इस महीने की 25 और 26 तारीख को हरियाणा के गुरुग्राम में ब्रिक्स मुल्कों के तवानाई के वजीरों की 11वीं मीटिंग की मेजबानी करेगा। मीटिंग में तीन अहम तरजीहात तवानाई की यकीनी फराहमी और पायदारी, तवानाई तक मसावी रसाई, नीज टेक्नोलॉजी और इख्तरा पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ब्रिक्स के तमाम 11 रुकन मुल्कों के तवानाई के वजरा और सीनियर हुकाम इस मीटिंग में शिरकत करेंगे ताकि तवानाई की यकीनी फराहमी, पायदारी और जिद्दत तराजी के शोबों में बाहमी तआवुन को मजीद मुस्तहकम किया जा सके। ये मीटिंग भारत को आलमी खित्ते जनूब की तरजीहात को आगे बढ़ाने और एक जामे आलमी तवानाई मुस्तकबिल की तश्कील में अहम रोल अदा करने का मौका फराहम करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आजाद तिजारती मुआहदा इस साल के दिसंबर तक होने की तवक्को है। उन्होंने कहा कि मुआहदे के अगले बरस फरवरी और मार्च के दरमियान नाफिज होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि इस मुआहदे से भारतीय कारोबारियों को यूरोपीय बाजार तक तकरीबन सिफर दरामदी ड्यूटी के साथ रसाई हासिल होगी। मगरबी एशिया तनाजे को खत्म करने की कोशिशों को आगे बढ़ाने और अबूरी मुआहदे को मजबूत बनाने की खातिर आज स्विट्जरलैंड के बर्गिन स्टॉक में अमरीका और ईरान के दरमियान मुजाकरात शुरू हो गए। अमरीकी वफद की क्यादत अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरानी वफद की क्यादत स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ और वजीर खारजा अब्बास इराकची कर रहे हैं। इस मुजाकरात में कतर और पाकिस्तान सालसी का रोल अदा कर रहे हैं। यह बातचीत ऐसे वक्त हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइली हमलों के जारी रहने के बायस दोबारा आबनए हुरमुज को बंद करने का ऐलान किया था। ताहम अमरीकी फौज के मुताबिक ये अहम आबी गुजरगाह अब भी तमाम बहरी जहाजों के लिए खुली हुई है। ईरानी हुकूमत के मुताबिक अमरीका, कतर और पाकिस्तान के साथ मुजवजा 4 फरीकी मुश्तरका मुजाकरात से कबल बातचीत करने वाली टीम ने बर्गिन स्टॉक में कतर के सालसों के साथ बातचीत की। 4 फरीकी मुजाकरात से पहले अमरीकी वफद ने भी पाकिस्तान की सालसी टीम से मुलाकात की। गुज़श्ता हफ्ते जारी किए गए 14 निकाती समझौते की पहली शिक तमाम महाजों पर जंगबंदी का मुतालबा करती है, जिसमें लेबनान भी शामिल है, जहां इसराइल और हिजबुल्ला के दरमियान लड़ाई में हालिया दिनों में शिद्दत आ गई है। रेलवे के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के वजीर आला भजन लाल शर्मा ने आज जयपुर दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस को जयपुर से झंडी दिखाकर रवाना किया और खाटीपुरा में अहम कोचिंग टर्मिनल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नया टर्मिनल रेलवे के बुनियादी ढांचे को मजीद मजबूत बनाएगा और मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम करेगा। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने इस महीने की 27 तारीख को आसाम और मेघालय में शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमे ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल के हिमालयी इलाकों और सिक्किम में भी इसी तरह की सूरत हाल रहेगी। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरला, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में भी अगले 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। IMD ने दिल्ली और दीगर रियासतों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की भी पेशगोई की है, जबकि मध्य प्रदेश, शुमाली उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के अलग अलग इलाकों में इस महीने की 25 तारीख तक शदीद गर्मी पड़ने का इम्कान जाहिर किया है। हॉकी में भारत ने FIH खवातीन के नेशंस कप में न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर खिताब जीत लिया और खवातीन की प्रो लीग में अपनी जगह यकीनी बना ली। नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने भारत की तरफ से गोल किया। पूरे टूर्नामेंट में भारत नाकाबिले शिकस्त रहा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये जीत नौजवान खिलाड़ियों को हॉकी को अपनाने की तरगीब देगी। क्रिकेट में श्रीलंका के दामबोला में 3 मुल्कों की सीरीज में आज भारत ए ने मेजबान श्रीलंका को 66 रन से शिकस्त दी। भारत ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्रा 50 ओवर्स में 9 विकेट पर 377 रन बनाए। भारत ए ने पहली विकेट की शराकतदारी में शानदार 130 रन बनाए। वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 11 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और सिर्फ 29 गेंदों में 94 रन बनाए। श्रीलंका ए के लिए कोगा थास मेथुलन रवि

0: फर्नांडो और वनुजा सहान ने दो दो विकेट हासिल किए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 47 ओवर्स एक गेंद में 311 रन बनाकर आउट हो गई। दौलते मुश्तरका खेलों के लिए मुंतखब भारतीय मुक्केबाजों ने चेक जमहूरिया के उस्ती नाद लाबेम शहर में मुनक़िदा 56वें ग्रां प्री में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 12 तमगे हासिल किए, जिनमें सोने के 8 तमगे शामिल हैं। 5 रुकनी खवातीन टीम ने सोने के 4 और चांदी का 1 तमगा जीता है। इसमें लवलीना बोरगोहेन, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी और प्रिया घनघास ने सोने का तमगा हासिल किया, जबकि परवीन हुड्डा ने चांदी का तमगा अपने नाम किया। एशियन रिले चैंपियनशिप में चीन के शाओक्सिंग शहर में मुनाकिदा टूर्नामेंट के दूसरे एडिशन के आखिरी दिन भारत ने खवातीन की 4x100 मीटर दौड़ में सोने का तमगा हासिल किया। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मजबूत बहरी सलाहियतें मुल्क की इक्तिसादी और स्ट्रेटजिक असर रसूख के लिए नहायत अहम हैं। उन्होंने कोलकाता में मुल्क में ही तैयार किए गए 3 बहरी जंगी जहाजों को पानी में उतारा। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट का दोबारा इम्तिहान आज सख्त हिफाजती इंतजाम के दरमियान मुनक़िद किया गया। तमिलनाडु के पेरिया पलायम में समुद्री खुराक फराहम करने वाली एक कंपनी में अमोनिया गैस के अखराज के 22 7 अफराद हलाक और 70 से ज्यादा जख्मी हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान स्विट्जरलैंड में मुजाकरात जारी हैं, जिसका मकसद अबूरी माहदे को मजबूत बनाना और मगरबी एशिया के तराजे के खात्मे की कोशिशों को मुस्तहकम करना है। भारतीय महकमे मौसमियात ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, सिक्किम और मगरबी बंगाल के जेली हिमालयी खित्ते में हफ्ते तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। भारतीय खवातीन हॉकी टीम ने फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 0 के मुकाबले 2 गोल से हराकर FIH नेशंस कप जीत लिया है। इसके साथ ही खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हमारी आवाज़ अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन रात के 9:30 हो चुके हैं। स्वात करें मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में प्रोग्राम हुसैनियत एक लाहिये हयात, एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: डिस्कशन टाइम। अस्सलामु अलैकुम सामईन मोहतरम। ये अयाम हैं मुहर्रम हराम के और तारीख इस्लाम में इस हवाले से वजाहतों की कोई ज़रूरत नहीं है कि इस एक महीने को कितनी अहमियत इस्लामी तारीख में इब्तिदा से आज तक हासिल रही है। बिलखुसूस जब हम आशूर की बात करते हैं, शहदाए करबला से जुड़े उस वाक़े की बात करते हैं, तो फिर तो वजाहत करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं रहती। अब इस मुहर्रम में रेडियो की एक कोशिश रही कि हम उलमा को, असातिजा को अपने स्टूडियो में बुलाकर मुख्तलिफ मौजूआत पर बात करके उनसे कुछ फैज़ हासिल करने की कोशिश करेंगे या हकायक को समझने की कोशिश करेंगे। ये हमारी एक कोशिश, और मैं मशहूर हूँ कि हमारी दावत पर जनाब शबीब रिजवी साहब, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा साहब, सैयद शमसुर रहमान साहब तशरीफ़ लाए हैं, और मौजू जो हमने आज इस मुबाहसे के लिए रखा हुआ है वो है हुसैनियत एक लाहिये हयात। तो पहले सब मेहमानों का मैं इस्तकबाल करता हूँ हमारे स्टूडियोज में, और शुक्रिया भी कि आप तशरीफ लाए। और रिजवी साहब, संसार से आगे यहाँ तक हर साल मुहर्रम में मुहिब्बान और आशकान अपनी तरफ से मोहब्बतों का इजहार करते हैं, आज़ादार अशकबार रहते हैं, और इसमें एक इस्तलाह हम सुनते आए हैं हुसैनियत। मेरा आपसे सवाल, मुझे समझाइएगा कि ये हुसैनियत से मुराद क्या है, क्या होती है हुसैनियत?
4: तला साहब, हुसैनियत मज़हब से कोई अलग चीज़ नहीं है, ठोस या जामिद एक हकीकत बनकर جو

0: उभरी है वो कर्बला के बाद उभरी है
1: जी।
0: उससे पहले जो कुछ था यानी 50 साल तक वो वही लाए है अमल था जो रसूल मकबूल
1: सल्लल्लाहु अलैहि
0: वसल्लम ने पेश किया था और जिसको उनके बाद वालों ने अपने अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश की थी। दरअसल हुसैनियत जो है वो कर्बला के बाद से शुरू हुई है कि 50 साल तक जो कुछ हुआ था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो कुछ हुआ था उसमें दीन और हक की सूरतें जो थीं वो किसी हद तक वो नहीं रही थीं जो उनके दौर में थीं। और अगर ये बात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम महसूस न करते और बल्कि मेरा तो ये ख्याल ही है कि ये अहकाम खुदावंदी मंशाए खुदावंदी था कि ये वाकया हो ताकि
1: दीन को बका मिले,
0: ताकि दीन को पनाह मिल जाए दोबारा और असर नो उसका एहया हो सके। चुनांचे उनका जो लाह अमल था यानी मदीने से लेकर के मक्के तक और मक्के से लेकर करबला तक जो कुछ भी लाह अमल था कदम कदम के ऊपर वो एक अखलाकी दर्स था, वही मजहबी दर्स था जो उनके नाना के वक्त में मौजूद था, जो बाबा के वक्त में मौजूद था या और अहले बैत अथार के ज़माने में जो कुछ था वही लाह अमल जो था। तो करबला तक ये जो कुछ लाह अमल पेश किया गया है दरअसल ये हुसैनियत की इब्तिदा थी।
1: अच्छा।
0: जो इंतहा आशूर ही को नहीं हुई बल्कि आशूर के बाद उनकी बहन जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने उसकी तकमील की। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक हुसैनियत का तसलसल था जो इमाम हुसैन सलाम के नाम से मंसूब होकर के दुनिया में आज तक पेश हो रहा है।
1: मैं ये समझा अगर मैं सही हूँ कि दौरे नबुवत के बाद 50 साल और उस बीच अगर कहीं से कुछ इन्हराफ हुआ या कुछ उसको समेट कर शरीयत को अपनी असल सूरत में पेश करने की एक जो मुनज्जम कोशिश इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफाका ने की और जो उसूल वहां वजा हुए उनको हम हुसैनियत कहते हैं। ये दीन की अमली एक सूरत है, ये शरीयत की अमलन एक सूरत बनती है, ये मुराद है इससे।
0: बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए हुसैनियत की जो ये इस्तिलाह जो पड़ी है मैं उसका जिक्र कर रहा था और सब कुछ तो वही था जो दीन था और जो हक था और जो कुछ पेश किया गया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सब कुछ वही था। ये इस्तिलाह इसलिए हुई, इसका मतलब नाम यूँ पड़ा कि इमाम हुसैन सलाम ने यह बेड़ा उठाया था
1: जी।
0: अगर कोई दूसरा शख्स भी मिसाल के तौर पर जैसा कि इमाम हसन ने किया अपने ज़माने में और फिर एक सुलह की उन्होंने, लेकिन यह कि ये ज्यादा नुमाया और उभर करके हुसैनियत आई
1: इसलिए नाम से ये जुड़ा। मकसद वही था कारवां वही था।
0: हुसैनियत कोई अलग चीज नहीं है,
1: शरीयत की
0: उसका निफाज उन्होंने कराया।
1: जमा साहब आपसे जानना चाहूंगा वो कौन से उसूल हम जरा गिने, किस चीज को हम फिर आगे जाकर कहेंगे कि हुसैनियत या यही है लाह अमल, यही मुसलमान की जिंदगी है जो जिंदगी जीली इमाम हुसैन ने और उनके रफकायकार ने करबला में और करबला से पहले। करबला में भी हम नहीं मानते कि उनकी मौत हुई बल्कि हयात ही थी वो भी, वो जिंदगी जो उन्होंने करबला में जी और वो जिंदगी जो उन्होंने करबला से पहले, वो अकायद क्या थे, वो उसूल क्या थे, एक शागिर्द क्या समझे।
2: शुक्रिया तलहा जहांगीर साहब। जो शबीर भाई ने फरमाया कि उस वक्त तक 50 साल तक इस्लाम ने जिस लाह अमल को पेश किया था उसकी हयाई नौ के लिए जहां कहीं कोई तब्दीली लाने की कोशिश की गई थी, जहां कुछ उसूलों को भूल गए थे लोग, जहां रस्मों ने बाज हकायक को दबा दिया था, सप्रेस किया था, उनको असर नव ताज़ा करने के लिए वाकई करबला वजूद में आया। असल में कुरान जो है, अकवाल नबी जो हैं, उनकी हैसियत थेरी की है और वाकई करबला की हैसियत उसके एप्लीकेशन की है। थेरी के साथ एप्लीकेशन जो है ये कहीं भी जो कुछ आप पढ़ाते हैं फिर अमलन उसको समझाना पड़ता है। जैसे हम लेबोरेटरी में साइंस की क्लास में छोटी क्लासों में हम कोई केमिकल बनाना या उसका वो जिक्र करते हैं फिर उनको तजर्बागाह में ले जाते हैं और कहते हैं कि यूं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि यूं ऑक्सीजन बन सकती है, यूं कार्बन डाइऑक्साइड बन सकती है या और चीज़ें। इसी तरह से वाकई करबला जो है वो एप्लीकेशन है इस्लाम की थेरीज का
1: जी।
2: ये एप्लीकेशन जो है इस्लाम की थेरीज का, अब इसमें जो चीज़ें सामने आ गई कि असल इस्लाम ہے۔

0: इसी तरीके से दूसरे लोग भी हमारे करीब आ जाएंगे। देखिए मैं अर्ज करूं आपसे, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब मक्का मुकर्रमा से करबला की तरफ उन्होंने सफ़र इख्तियार किया, मदीने से नहीं मक्का मुकर्रमा से जी, तो हज छोड़ दिया था उन्होंने, इसलिए कि उनको यह इत्तला मिली थी कि कुछ हाजी जो हैं वो आ रहे हैं और हमें कत्ल कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि हुर्मते काबे मुज़ाइल हो जाएगी, आज दिलहिज को वहाँ से वो निकल गए। और उसके बाद फिर वो मंजिलें तय करते हुए सिमते नामालूम
1: चलते रहे,
0: नहीं मालूम था उनको कहाँ जाना है। अपने भाई जो चचेरे भाई उनके थे मुस्लिम इब्ने अकीली को कूफे भेज दिया था अपना सफीर और कासिद बना करके। इस दौरान हज तमाम हुआ और ज़ुहैर इब्ने कैन जो इन इस खानदान के मुखालिफिन में से थे, उन्होंने एक जगह के ऊपर खैमा नस्ब किया था, अपना खैमा नस्ब किया था। जब उनको ये पता चला कि इमाम हुसैन जो हैं वो इनकार करके इन चीज़ों से जो बातिल क़ुव्वतें हैं उसका इनकार करके उसके बाद नामंजूर मालूम तो वो ख़ुद उस खैमे से इमाम हुसैन के खैमे तक पहुँचे। और बाद में फिर जो वाक़ियात हैं मुझे वो नहीं बयान करना है, उसके बाद वो इमाम हुसैन के साथ हो गए, कूफे नहीं गए और करबला में वो शहीद हुए हैं और वो उलुल अज़्म शुहदा में शामिल होते हैं।
2: ज़ुहैर बिन क़ैन
0: कौन? ज़ुहैर बिन क़ैन। अच्छा, इनके काफिले में जो बहुत छोटा सा काफिला था, कम से कम 72 आदमियों की शहादत तो कुतुब मुकातिल में लिखी
1: हुई है।
0: हाँ, हालांकि बहुत से और भी थे, कम से कम इतने ही थे, 72 शहादतें थी। तो उसमें जनाब जोन जो ईसाई खानदान से ताल्लुक रखते थे वो भी उसके अंदर मौजूद थे। कई लोग ऐसे हैं कि जो मुखालिफिन में से थे। तो मकसद यही है कि अगर आपका लाहे अमल बेहतरीन होता है, और जाहिर है कि वो इस्लामी लाहे अमल है, और उसके ऊपर आप चलते हैं तो गैर भी अपने बन सकते हैं, अपने तो खैर अपने हैं ही हैं।
1: शबीब रिजवी साहब, जनाब प्रोफेसर जमा आजुर्दा साहब, सईदुर्रहमान शम्स साहब, हुसैनियत इकलाही हयात इस मौजू पर हमें बात समझा रहे थे। बात वाज़ह है कि कुरान और उसके बाद सुन्नत रसूल शरीयत मोहम्मदी, उसकी अहयाए नौ 60वीं सदी में हज़रत इमाम हुसैन और उनके जियाले लश्कर ने किया, अपने खून का नजराना पेश कर, जिंदगियां पेश करके। और आज अगर हम, जैसा कि सुन्नत है, उस घराने से मोहब्बत अगर दावा करते हैं कि हम मोहब्बत करते हैं, फिर हमें वो उसूल अपनाने होंगे। और वो वसूल वही हैं कि नबी ये आखिरुज़्ज़मा की उम्मत को जो शरीयत दी गई है उस पे अमलन अमल किया जाए। तो फिर खुदा हमारे, मोहम्मद हमारे, हुसैन और आले बैत हमारे। और अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो फिर हम झूठ बोल रहे हैं कि मैं हुसैनी हूँ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़ नासिर।
2: शुक्रिया बहुत।
3: समीन, आप समाप्त कर रहे थे प्रोग्राम डिस्कशन टाइम। आज के प्रोग्राम का मौजू था हुसैनियत एक लायात। शुरका थे शबीब रजवी, प्रोफेसर मोहम्मद जमान आजुर्दा, सईदुर्रहमान शम्स और तलहा जहांगीर रहमानी। आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज़ मीडियम वेव के अलावा FM 103.5 MHz पर 10:45 हो रहे हैं। अब से ठीक रात 11 बजे तक आप समाप्त करेंगे प्रोग्राम। आपकी फरमाइश आपकी खिदमत में पेश करेंगे जावेद अंद्राबी, एक मुख्तसर वक्फे के फौरन बाद।
4: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।

फिल्मी गीतों का फरमाइशी प्रोग्राम आपकी फरमाइश लेकर हम हाजिर खिदमत हैं। मैं हूं आपका मेजबान जावेद अंद्राबी। कहिए दोस्तों, कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं आप बखैर आफियत होंगे, खुश खुर्रम होंगे। दोस्तों, आपकी

उमंगों और चाहतों से भरे खतूत और ईमेल्स जिनमें अलग अलग अंदाज के नगमे सुनवाने की फरमाइश दर्ज है हमारे सामने मौजूद हैं। हम आपकी पसंद के फरमाइशी फिल्मी नगमे आपको सुनवाएंगे जरूर, लेकिन आगाज में ही हम उन नए सामीन के लिए प्रोग्राम का पता बता देते हैं जो अपनी फरमाइश भेजकर इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। प्रोग्राम का पता है, इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मार्फत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 19001। हमारा ईमेल आईडी है akf10pm@gmail.com। तो करते हैं आज के प्रोग्राम का आगाज इस नगमे से जिसे गाया है किशोर कुमार ने फिल्म आराधना के लिए। सुनना चाहते हैं चिट्टी बांडी बांडीपोरा से हमारे मुस्तकिल सामिया इश्तियाक वानी, उनके साथ उनके ये साथी भी हैं, ये हैं अशफाक शफी, समीरुल इस्लाम, जावेद इकबाल डार, आकिब तेली, शौकत अहमद ऋषि, डार जहूर, मुनीब खांडे, हयात अफजल गनाई और हमीद अफजल सोफी। ये पोस्टकार्ड हमें मिला है जयपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नजम बेगम सिद्दीकी, रियाज रफाकत, मोहम्मद रायहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर की जानिब से। नागजुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से ये हैं अब्दुल गफार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। बाटापारा छत्तीसगढ़ से ये हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। आप सब दोस्तों की पसंद पर पेश है फिल्म आराधना से नगमा किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार हैं आनंद बख्शी और संगीतकार आरडी बर्मन। दोस्तों, आराधना सन 1969 ईस्वी में रिलीज हुई थी और एक कामयाब फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने 17वीं फिल्म फेयर में बेहतरीन फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड जीता। इसी फिल्म से सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।

आपने आराधना फिल्म से नगमा सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। अब प्रोग्राम का अगला नगमा, जिसे सुनने के लिए इन दोस्तों ने फरमाइश की है, ये है ग्राम कुष्ठा बुजुर्ग अमरावती महाराष्ट्र से प्रवीण हागू ने, योगिता हागू ने, कुमारी प्रयाली हागू ने, पार्थ हागू ने और हागुनी परिवार के दूसरे मेम्बरान। गाँव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागिनपुरी, राधेश्याम नागिनपुरी, वंदना, भवाना, बिंदु गोलू, कुसुम भाई, बाबू देवयांश और सूरज कुमार ढक से। ये मेल आया है जनकपुरी सारनपुर से, भेजने वाले हैं जान डी कास्ट्रो, रोजी डी कास्ट्रो, परल डी कास्ट्रो और वैस डी कास्ट्रो। ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित पायल, कुमार प्रथमेश देशमुख और उनके दूसरे साथी। ये हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी। आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर पेश है सुरेश वाडिकर और लता मंगेशकर की आवाजों में फिल्म प्यासा सावन का ये प्यारा सा नगमा। गीतकार हैं संतोष आनंद और मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। तो पेश है आप सभी की पसंद का ये नगमा।

आपने सुरेश वाडिकर और लता मंगेशकर की आवाजों में नगमा सुना। फिल्म थी प्यासा सावन। अब जो नगमा आप सुनेंगे उसे हमने लिया है फिल्म ठोकर से। मोहम्मद रफी की आवाज में नगमा है। ये नगमा इन दोस्तों की पसंद है। ये हैं वारागाम बिरवा से नईम मलिक, हीमू जान, ताहिर, रजिया जान, तब्बो रानी, ड्राइवर मोहम्मद शफी, खालिदा जान, बिल्किस जान, अशरफ डार, मंजूर डार, पीर अल्ताफ, तनवीर खान और अब्दुल अहद खान। ये मेल आया है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से। फरमाइश करने वाले दोस्तों के नाम यूं हैं। ये हैं फैसल इमाम, मोहम्मद अफसल, मोहम्मद अकमल और नफीसा परवीन। सरफाव कंगन से ये हैं लतीफ अहमद रैना, खालिदा जान, अफरोजा जान, रऊफ शेख, साहिल तनवीर, बानियारी मोहम्मद अशरफ डार, जान मोहम्मद डार और मंजूर अहमद डार। आप सभी दोस्तों को इंतजार होगा अपना मनपसंद नगमा सुनने का। फिल्म है ठोकर, आवाज मोहम्मद रफी की, संगीतकार हैं श्याम जी घनश्याम जी। लीजिए समाप्त कीजिए।

फिल्मी नगमे आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। प्रोग्राम आपकी फरमाइश के तहत मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। प्रोग्राम का अगला नगमा शब्बीर कुमार और अनुराधा पोडवाल की आवाजों में है। फिल्म है तेरी मेहरबानियां। सुनने की ख्वाहिश रखते हैं खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीतू, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा और पापा जी नानक चंद मल्होत्रा।

पजी कॉलोनी रोहतक से इसी नगमे को सुनना चाहते हैं ये दोस्त भी। ये हैं पीयूष सिक्का, कुकू कोयल और डुगू बाउ कोयल। हरदपंजु बीरवा से फारूक अहमद चौपान, एजाज अहमद चौपान, अफरोजा, रुतबा, जीनत और मुस्कान। नौपोरा श्रीनगर से कौसर जान, हाजरा बानो, निकत जान और ताहिरा जान। इन सभी दोस्तों ने फिल्म तेरी मेहरबानिया से नगमा सुनना चाहा है, शब्बीर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में। ये एसएच बिहारी का लिखा नगमा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में। आइए सुनते हैं।

दोस्तों 1965 ईस्वी में एक फिल्म पर्दे पे छा गई थी, काजल। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस इंडिया पर हिट करार दिया गया था। ये फिल्म गुलशन नंदा की नावल माधुरी से अख्ज की गई है। ये फिल्म 1965 की 10वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और उस साल की टॉप 10 फिल्मों में शामिल थी। इसी फिल्म से एक मकबूल नगमा सुनते हैं मोहम्मद रफी की पुरसोज आवाज में। इस नगमे को सुनना चाहते हैं ये दोस्त। ये हैं चंडीगढ़ से सतीश अनीजा और बिमला अनीजा, पोटिया कलाफोर्ट से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू, आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, नुआन शर्मा, सौरव शर्मा, शाइना शर्मा और मंडी शर्मा, तोसमादान बराज से ये हैं बिलाल अहमद मागरे। उनके साथ ये दोस्त भी इसी नगमे को सुनना चाहते हैं। ये हैं मसरत बानो, अफरोजा, रुबीना और निकीना जान। तो आइए सुनते हैं फिल्म काजल से नगमा मोहम्मद रफी की आवाज में। साहिर लुधियानवी के बोल हैं रवि की मौसीकी में।

आपकी फरमाइश प्रोग्राम का अगला नगमा लता मंगेशकर का गाया हुआ है फिल्म दिल एक मंदिर से। इस नगमे को सुनने के लिए फरमाइशी ईमेल भेजा है इन दोस्तों ने। ये हैं आसार शरीफ जनाब साहब आंचार से, साहिल डार, एजाज अहमद हमदानी, तारिक अहमद, फारूक अहमद और मोहम्मद आसिफ कुंदू, बसपोरा से गुलाम रसूल डार, अब्दुल हमीद डार, रियाज अहमद डार, अशफाक अहमद डार, उस्मान हमीद, दानिया हमीद और फलक हमीद, कृष्णा पार्क नई दिल्ली से इसी गीत को सुनना चाहते हैं ये दोस्त भी। ये हैं सुखविंदर सिंह जोरा और मिसल दीवाना। गाँव दुल्हापुर जिला मुरादाबाद यूपी से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज, काजल बोर्डर, लक्ष सोनी, मोनी प्रतीक और बलवीर सिंह। पेश है लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दिल एक मंदिर से नगमा। हसरत जयपुरी के बोल हैं शंकर जैक्शन की मौसीकी में। तो लीजिए ये रहा आपकी पसंद का नगमा।

प्रोग्राम के आखिर पे पेश है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में दुगाना, फिल्म है अनोखी अदा। ये नगमा इन दोस्तों की पसंद है। ये हैं स्मार्ट चौक शेरपुर जैन से गिरीश देशमुख, सोनाली देशमुख, माधुरी जोशी, अश्वनी मौसमी और जेवई देशमुख। मित्रनगर भील शहर महाराष्ट्र से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, आदित्य बंसोड़े और वैभव शिंदे। हिल स्टेशन खंडाला से आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे। सदर बाजार करावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा और सोनम वर्मा। तेलंगाना भुंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और उनके दूसरे साथी। पेश है आप सब दोस्तों की पसंद पर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में दुगाना, फिल्म है अनोखी अदा। मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा नगमा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी में। तो लीजिए समाप्त कीजिए आज के प्रोग्राम की आखिरी पेशकश।

mpm@gmail.com। तो दोस्तों, दीजिए आज का प्रोग्राम खत्म करने की हमें इजाजत। हमारी दुआ है आप खुश रहें, खुशहाल रहें, सेहतमंद रहें। शब्बा खैर।

आपने प्रोग्राम के आखिर पे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में नगमा सुना, फिल्म थी अनोखी अदा। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का प्रोग्राम? उम्मीद है आप जरूर महजूज हुए होंगे। आपसे विदा लेने से पहले आपको प्रोग्राम का पता एक बार फिर बता देते हैं। पता है इंचार्ज प्रोग्राम आपकी फरमाइश, मारिफत स्टेशन डायरेक्टर, आकाशवाणी श्रीनगर, पिन 1900001। ईमेल के जरिए फरमाइश भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है akf

0: سمین آپ فلمی نغموں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام سماعت کر رہے تھے. آپ کی فرمائش یہ پروگرام اب تک پہنچا رہے تھے جاوید اندرابی. آکاش وانی سری نگر کی آواز.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ, آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
2: نمسکار, آکاش وانی سماچار کے ساتھ میں آشوتوش. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज के दौर में किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है. इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है. पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर आज स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही. इसमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं.
3: भारत आज अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है. इसलिए आज भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है. सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है.
2: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया. सोशल मीडिया पोस्ट में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है. उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा. नीट यूजी पुनर्परीक्षा आज कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए. यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई. एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया. देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे. तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं. मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है. राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया है. उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं. उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है. अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को

मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर मालिक गलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। यह वार्ता ऐसे समय में हो रही है जब ईरान ने लेबनान पर इसराइल के लगातार हमलों के कारण होर्मुज जलडमरू मध्य फिर से बंद कर दिया है। हालांकि अमरीकी सेना ने दावा किया है कि जलमार्ग सभी जहाजों के लिए खुला है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर एफआईएच नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने एफआईएच महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रिम सियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत पर भारतीय महिला हॉकी टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: treatment. The International Day of Yoga is being observed throughout the globe today. Prime Minister Narendra Modi expressed gratitude to people around the world for making the International Day of Yoga 2026 a global celebration. In a social media post, the Prime Minister said it is encouraging to see yoga bringing together people from all walks of life across nations in the shared pursuit of wellness and good health. He expressed hope that the day would inspire more people to make yoga a part of their daily lives in the times to come. Indian women hockey team has lifted the FIH Women's Nations Cup for the second time, defeating hosts New Zealand 2-0 in the final in Auckland today. With this, the Indian team also secured entry to the FIH Women's Pro League. The team produced a stellar defensive display to protect the lead provided by Navneet Kaur and Sunilita Topo. Today's win also marked their return to the Pro League next season. Lalru Simai was awarded the player of the match, while Deepika finished as the joint top scorer with 6 goals to her name. Prime Minister Narendra Modi has congratulated the Indian team on their win and praised for their exceptional performance throughout the tournament. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर
2: है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसपी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं सोनू सूद।
3: इन द लास्ट 12 इयर्स ऑफ द एनडीए गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज ऑलवेज एम्फसाइज्ड that ease of doing business is one of the major priorities of the government. And the government has relentlessly been working towards this goal so that business opportunities can be democratized, more and more people can become a part of the nation building exercise. And of course, the concept which has been reiterated time and again, that instead of job seekers, more and more people become job creators. So to discuss this very important topic of ease of doing business, how it has strengthened India's business framework in the last 12 years, we have two economic experts with us, Mr. Dilip Chinoy and Dr. S.P. Sharma, economic experts. A warm welcome to you on Akashvani.
4: Thank you.
3: So, Dr. Sharma, पहले आपके पास आते हैं और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि पिछले 12 वर्षों में जिस तरह से व्यापार जगत बढ़ा है, जिस तरह से ज्यादा नए व्यापारों को एक तरह से प्रोत्साहन मिला है सरकार की ओर से, जो रिफ्लेक्ट होता है स्टार्टअप्स, अगर हम देखें 350 स्टार्टअप्स थे 2014 में और अब 220,000 स्टार्टअप्स हैं हमारे देश में। सो एक स्टेटिस्टिक जस्ट इट्स रिप्रेजेंटेटिव कि किस तरह से ग्रोथ हुआ है। सो आप कैसे देखते हैं 12 वर्षों को, बिजनेस एनवायरनमेंट जो इम्प्रूव हुआ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्या लगता है आपको सरकार के कौन से एफर्ट्स, अगर आप टॉप 2 हमें बताएं इस दिशा में जो रिफॉर्म्स परिवर्तनकारी रही हैं?
4: जी बिल्कुल, सोनू जी आपने सही बताया कि जो रिफॉर्म्स हुई हैं जो पिछले 12 वर्षों में, जिन्होंने एक बहुत मेजर ब्रेक थ्रू दी है हमारी इकोनॉमी को, हमारे मैन्युफैक्चरिंग को और हमारे ओवरऑल जो देश का जो जीडीपी है उसको आगे बूस्ट अप किया है। तो सरकार का जो पहल था, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ, मेक इन इंडिया से, क्योंकि मेक इन इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बिना कुछ भी नहीं था। तो सरकार ने मेक इन इंडिया को अनाउंस करते ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, बहुत बल दिया, जिससे कि हम बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर पाए। अगर हम देखें कि 2014 में जो हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रैंक था वो 143 था, वर्ल्ड बैंक का एक इंडेक्स आता था उस टाइम पे, तो जिसमें हम 143 थे, बहुत नीचे थे, मतलब लगभग जो जितनी भी इकोनॉमीज हैं, जो भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फिर एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, इवन के डेवलपिंग इकोनॉमीज भी हमारे से काफी ऊपर थी। तो उसके बाद सरकार ने इसके ऊपर पूरा जोर दिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिफॉर्म्स के ऊपर जोर दिया, तो हम धीरे धीरे करके 2020 तक जो थे 63 तक आ गए थे हम अपना रैंकिंग, जो था सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करते हुए 63 पे आए। उसके बाद वर्ल्ड बैंक ने अपना इंडेक्स बंद कर दिया, मे बी बिकॉज ऑफ सम रीजंस। उसके बाद जो स्टेट्स ने, उन्होंने अपना ब्रैप रिफॉर्म्स चालू किए, बिजनेस रिफॉर्म्स असेसमेंट प्लान जो था, उसके बाद उसमें बहुत तेज गति से काम हुआ, स्टेट्स में एक बहुत हेल्दी कंपटीशन हुआ, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक पैशन बन गया, जो लोगों में, बिजनेसेस में, सरकार में, उसमें ज्यादा से ज्यादा रिफॉर्म्स हो, उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो होने शुरू।

0: doing business. We can compete with them in the global market or even in the domestic market. As ease of doing business has created a great level playing field in the economy. So going forward, I believe now we are very much capable to move forward and to become a great player in the global economy, to compete with many countries. Like Shunai mentioned that our PMI is now at the top of the competitive economies.
1: Absolutely.
0: Our PMI is higher than any economy in the top 10 economies, like our services PMI, our manufacturing PMI. Even despite the such kind of headwinds at the global level, our PMI is more and more resilient in the global economic
1: system.
0: Absolutely.
1: So, Mr. Chaloy, जैसा कि अभी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि हम और आपने भी कहा कि इतने हम आपदाओं से गुजरे, इतनी मुश्किल सिचुएशंस जो इंटरनेशनल लेवल पर हुई, चाहे वो पैंडेमिक हो, चाहे ये जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हो, बट फिर भी हमारे आर्थिक मजबूती बनी रही है. मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो सरकार के फ्लैगशिप स्कीम्स रही हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया या पीएम मुद्रा योजना, जिसमें आपको एक बिजनेस शुरू करने के लिए कोलैटरल फ्री बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है, या जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सिस्टम बनाया गया था सरकार द्वारा, इनको आप कितना कहें कि क्रांतिकारी मानते हैं, जिन्होंने सबको, जिनकी भी ड्रीम थी एक व्यापार शुरू करने की, उसे पूरा करने का एक मौका दिया.
2: सुरेश जी, अगर आप देखें तो अगर एक बिजनेस शुरू करने के लिए, और आपने एसपी शर्मा से ये पूछा था कि क्या बदला है, ठीक है, तो पहला जो चीज बदला, जैसे उन्होंने समझाया कि आप घर बैठे बैठे, और आपने पूछा ऑनलाइन का, आप घर बैठे बैठे अपना बिजनेस रजिस्टर कर सकते हैं, आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं, आप पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं और आप टैक्सेस भर सकते हैं. तो आपका जो समय बर्बाद होता था लाइनों में खड़े हुए और ये इंटरेक्ट करने के लिए, वो एक बहुत कम सा हो गया है. अगर आप देखें जो स्कीम्स जिसकी आपने बात की थी, तो ये स्कीम्स जो आपने इस तीन स्कीम्स की बात की थी ना, ये एक पर्टिकुलर वर्ग के लिए है. जो आप देखें तो जो मुद्रा स्कीम है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और उनके लिए जो छोटे छोटे अमाउंट्स जो बैंक्स में एक बहुत अविश्वसनीय होती थी, क्योंकि बैंक के लेंडिंग पोर्टफोलियो में जिसकी उनको कॉस्ट पड़ती थी उस लोन को देने के लिए, वो उनका इंटरेस्ट कवर नहीं करता था. तो गवर्नमेंट ने जब ये स्कीम एक तरीके से लागू किया, और इनमें ना मुद्रा स्कीम तो एक ही उस वर्ग के लिए, ठीक है, अलग अलग स्कीम जो है, स्ट्रीट वेंडर्स के लोन स्कीम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए स्कीम है. तो इस रिफॉर्म की एक खासियत है कि उन्होंने, और किसान क्रेडिट कार्ड उसको मत भूलिएगा,
1: जी जी,
2: उन्होंने पूरे जो इकोनॉमी में जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटा है, लोएस्ट लेवल से लेके हाईएस्ट बिजनेसमैन एंड एफडीआई के लिए, हर कदम पे उनको क्या दिक्कत आ रही है, उनकी क्या जरूरत है, उसके लिए एक स्कीम लॉन्च किया, पीएम विश्वकर्मा स्कीम, जिसको कारीगर को टूल्स को करने के लिए और एक उनको स्किलिंग करते हैं. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. और जनधन योजना और जो आधार और मोबाइल का जो ट्रिनिटी है, उन्होंने ग्रास रूट लेवल में लोगों की जिंदगी बदल दी है. और साथ में, क्योंकि वो छोटे छोटे अमाउंट्स जो जनधन योजना में आए थे और जो करोड़ों अकाउंट्स खोले गए थे, अगर उसकी आप पूंजी जोड़िए, तो वो सारा जो पूंजी है इंडियन इकोनॉमी को बढ़ाने के काम आई है. वो पहले तो एक अपने घर में रखी रहती थी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी सपोर्ट नहीं करती थी. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आज के जमाने में 2012-13 में आप पूछे कि आप अपने बेटे को क्या बनाएंगे, तो लोग कहते थे इंजीनियर, डॉक्टर या चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप का नाम ही नहीं आता था.
1: जी.
2: और अगर किसी को कहते कि आप बिजनेस शुरू करें, तो माँ बाप कहते कि नहीं बेटा, बेटी आप मत जाओ इसमें, आप एक नौकरी करो.
1: हाँ.
2: एक माइंडसेट चेंज हो गया है देश भर में, गांव गांव में. और अब एक एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ही इज्जत है और देश के लिए बहुत जरूरी है. और दूसरी जो उसके साथ में आया है, और आपको ये आंकड़ों से नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप देखें तो अगर आप बिजनेस में फेल करते हो कि आपकी बिजनेस चले नहीं, तो पहले ही एक बहुत ही बुरी नजरिए से देखा जाता था. अब कहते हैं नहीं बेटा, आप इस फेलियर से सीखो और दूसरा बिजनेस शुरू करो.
1: बिल्कुल.
2: और ये एक खास, पहले ये रिफॉर्म्स होने से पहले ये एक बहुत खास डिफरेंस था भारत में और अलग अलग इकोनॉमीज में. अब इंडिया में भी वो एक तरीके से आ गया. और जो ग्लोबल स्तर पे अभी आप देखें तो मेडिकल डिवाइसेस में, ड्रोन्स में, कई कई सेक्टर्स है, स्पेस में, यंग स्टार्टअप्स जो है, इस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस स्पेस

0: में देखे तो इसरो से कम्पीट कर रहे हैं, डिफेंस में डीआरडीओ से कम्पीट कर रहे हैं, मेडिकल में मेडिकल लेबोरेटरीज के,
1: कम्पीट की जगह शायद हम कह सकते हैं कि कोलैबोरेशन का एक सरकार का भी है कि उन्होंने सारे सेक्टर्स खोले हैं और वेलकम किया है।
0: बिल्कुल, आपने इमरजेंसी लोन फैसिलिटी किया था, लेकिन आप वो देखें, वो आत्मनिर्भर भारत का कोविड के अंतर्द्वान एक स्कीम था जो कोविड में गवर्नमेंट, इंडस्ट्री, एनजीओस और सिटीजंस ने जो कोलैबोरेट किया था। देखिए, कोविड के पहले तो हम ना पीपी किट्स बनाते थे, ना वैक्सीन बनाते थे, ना वेंटिलेटर बनाते थे। पूरे गवर्नमेंट इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ हमने वैक्सीन यूज की, अपनी ओन वैक्सीन, ठीक है, पीपीए किट्स में हम नंबर वन बन गए थे, वेंटिलेटर्स बनाना शुरू किया था और कई एक तरीके से थे। और जो स्कीम्स आत्मनिर्भर 1, 2, 3, 4 मेरे ख्याल से थे, उसमें जो स्कीम्स दिए थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे इंडिया को स्टेबलाइज करने के लिए। और उसके खास बात के रिफॉर्म्स थे, अगर आप देखें तो जो हमने परसेंटेज ऑफ जीडीपी उसमें लगाया था वो और देशों से बहुत ही कम था, लेकिन फिर भी अनाज 80 करोड़ लोगों को एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, माइग्रेंट वर्कर्स के लिए, विमेन के लिए, अलग अलग जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी है जो आपके श्रोता सुन रहे होंगे वो अपने बिल्कुल संबंध करेंगे कि हमारे लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और हमारे लिए एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत कुछ हुआ है जिसका हम फायदा उठा सकते हैं।
1: सो हम मान सकते हैं कि ये ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस है, जैसे आपने जन विश्वास बिल की अभी कुछ समय पहले बात की थी कि काफी सारे डिक्रिमिनलाइज हुए हैं ऑफेंसेस और सजा घटाई गई है ताकि एक जो वो डर का जो माहौल था वो ना हो। एक और जो अभी डॉक्टर शर्मा ने बात करी, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान ब्रैप जो 2015 में शुरू किया गया और उसका एक ग्रासरूट्स लेवल की बात कर रहे हैं, ग्रासरूट्स लेवल पर डेवलपमेंट पे जो बल दिया गया है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी ये ब्रैप है, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान। सो आपको लगता है कि ये भी बहुत जरूरी है भारत जैसे देश में जो इतना विस्तृत है, इतना विविध है और हर एक ज्योग्राफी की अपनी कोई प्रोडक्ट है या अपना कोई ऐसा एक यूनिक प्रोपोजिशन है जो मोनेटाइज किया जा सकता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने सुनो जी, और उसमें आप देखें तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और कंपेटिटिव फेडरलिज्म है। पिछले 12 सालों में आपने दोनों देखे। तो मैं आपको एक दूसरी ओर ले जाता हूं जो हमारे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, हम उन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। उसमें क्या किया, उसमें एक डैशबोर्ड बनाया कि भाई ये आपके इंडिकेटर्स, उसमें बिजनेस का भी इंडिकेटर है और एक साल में सबसे ज्यादा कौन तरक्की कर रहा है उसको एक अवार्ड दे रहे थे। तो वहां के जो कलेक्टर्स हैं और वहां ग्रास रूट लेवल पे आप देखें तो वो डैशबोर्ड को देखते थे और कहां कोई अच्छा कर रहा है उसको एक लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट करने का देखते थे और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट एक्चुअली उससे सीख सकते थे। अब क्या हुआ है कि ऑल्दो ये वर्ल्ड बैंक ने अपना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स बंद कर दिया है, बट इंटरनली भारत में कंपेरेटिव करते हैं स्टेट्स में कौन क्या कैसे रिफॉर्म कर रहा है
1: जी,
0: उसको कंटिन्यू हो रहा है। तीसरी जो चीज है, कई स्कीम्स बजट में आए हैं, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, चाहे आप एनवायरमेंट पे देखें, या कई स्कीम्स हैं जिसमें अगर स्टेट रिफॉर्म करेगा और स्टेट कुछ करेगा उसके साथ ही आपको सेंटर से फाइनेंसिंग मिलेगा। 2014 के बाद हर स्टेट में एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा है, हर स्टेट ये प्रेजेंट करना है उन्हें क्या रिफॉर्म किए हैं, इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किए हैं, और इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप्स का होता है और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करें कैटलिस्ट हो गया है कि रिफॉर्म करने का।
1: और ये धुरी यही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे यहाँ बहुत बढ़ी है। डॉक्टर शर्मा, अगर आपके पास आए तो मार्केट एक्सेस पर भी बहुत जो रिफॉर्म्स हुए हैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन, ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी हैज बीन अ बिग एनेबलर इन दीज 12 इयर्स क्योंकि उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट किया गया है। जो अपॉर्चुनिटीज गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा लाई गई या जो ONDC है, वन नेशन डिजिटल, एंड लॉजिस्टिकल रिफॉर्म्स जो हुई है लॉजिस्टिक्स में, उनको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं MSMEs के लिए, स्मॉल बिजनेसेस के लिए, अपना जो भी प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको पहुंचाने के लिए मार्केट तक?
2: जी बिल्कुल सोनू जी, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के साथ साथ सरकार ने नई पॉलिसीज भी दी है, जैसे कि आपने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की बात की है, उसमें बायर्स और सेलर्स, जो आपका कोई प्रोडक्ट है तो आप उसको कैसे आगे सेल कर सकते हैं, गवर्नमेंट उसकी बायर कैसे बन सकती है। और ONDC प्रोवाइड करता है कि जो ई कॉमर्स है आपका उसमें बायर्स एंड सेलर्स मिलकर आपस में कैसे अपने जो बिजनेस है उसको आगे ब्रेक थ्रू दे सकते हैं, कैसे उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स क्या है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आपको बायर जो है इधर उधर खोजने का जरूरत नहीं है, आप एक प्लेटफॉर्म पे अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, उसको आप बता सकते हैं, तो फिर बायर आपको अपने आप ही मिलेगा। तो जैसे आपने

0: रिफॉर्म्स की बात की, लॉजिस्टिक्स पॉलिसी सरकार लेके आई जिसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट होता था 14% ऑफ जीडीपी होता था, और इस पॉलिसी के साथ साथ जो रिफॉर्म्स हुई, जो सरकार ने ट्रांसपोर्ट सिस्टम में रिफॉर्म्स की, जो रेल कनेक्टिविटी में जो रिफॉर्म्स की, जो एयर कनेक्टिविटी में रिफॉर्म्स की और जो वाटरवेज में जो रिफॉर्म्स की, तो उनके मद्देनजर जो अब हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट है दैट इज नाउ 9-10% ऑफ जीडीपी, तो उसमें बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट हुई है पिछले 6-7 वर्षों में। और साथ साथ में जो मैं बताना चाहूंगा कि पीएलआई स्कीम जो एक ऐसी स्कीम है जो आपका प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है, सरकार ने ऐसे 14 सेक्टर्स चूज किए जो कि बहुत ही प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हैं, जहां पे सरकार ने इंसेंटिव बेस्ड उनको स्कीम में आने को बोला,
1: प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव,
0: जिसमें कि आप देखेंगे कि उस स्कीम के मद्देनजर हमारा जो एक्सपोर्ट है बहुत इंक्रीज हुआ है। नाउ वी आर मेकिंग न्यू एंड न्यू रिकॉर्ड्स इन आवर एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 6-7 वर्षों में हरेक साल नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। इवन के पिछले साल भी जब ये हेडविंड्स थे, जब टैरिफ हेडविंड्स भी थे, जब आपका ये जियोपॉलिटिक्स भी चरम सीमा पे चला गया, तब भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसने नया कीर्तिमान $863 बिलियन का स्थापित किया, जिसमें सर्विसेज और मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स दोनों है। और जैसे चिनॉय साहब ने भी बात की कि ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अगर हम पीछे 2020 के बाद कोरोना पीरियड के बाद का अगर हम अपना ग्रोथ रेट देखते हैं, दैट इज मोर देन 7% ऑन एन एवरेज। इमीडिएट कोरोना के बाद हम 9.7% पे ग्रो किए, उसके बाद मोर देन 8% पे ग्रो किए, उसके बाद हम 7.3 पे ग्रो, अभी जो टोटल अगर हम देखेंगे दैट इज मोर देन 7% इन अ रो, तो एक बहुत बड़ी चीज है। जबकि ग्लोबल ग्रोथ जो है वो 6% से गिर के अभी जो लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक का एस्टीमेट है वो लगभग कोई 2.7% रहेगी या 2.6% रहेगी, तो कितना ग्लोबल ग्रोथ में कितनी डिसेलरेशन हुई, लेकिन इंडिया का ग्रोथ रेट जो है इंटैक्ट रहा। अभी भी जो वर्ल्ड बैंक के एस्टीमेट्स हैं वो 6.6% पे, हमारे आरबीआई का एस्टीमेट 6.5% पे, और हमारे जो इंडस्ट्री बॉडीज हैं दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट 7%। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अवर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, अवर एक्सपोर्ट्स, अवर रिफॉर्म्स प्रोसेस एंड अवर रिफॉर्म्स फॉर दीज ऑफ डूइंग बिजनेस गो हैंड इन हैंड। ये चारों चीजें मिलके एक बहुत बड़ी ब्रेक थ्रू जो है हमारी इकोनॉमी को दे रहे हैं। हमारे आगे लक्ष्य है, जैसे हम बात करते हैं कि हम विकसित भारत बनेंगे 2047 तक, वो एक बहुत ही राइट डायरेक्शन में हमारी जो ग्रोथ हो रही है। जैसे 2030 का हमारे अनुमान है कि हमारा एक्सपोर्ट है जो हम $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट देखना चाहते हैं, जिसमें मर्चेंडाइज 1 ट्रिलियन होगा, सर्विसेज 1 ट्रिलियन होगा, और हमारी जो इकोनॉमी है वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी, और जो हमारा जीडीपी का साइज ऑफ जीडीपी दैट विल ऑल्सो क्रॉस 5 ट्रिलियन। तो कुल मिला के जो स्टेटिस्टिक्स है और जो रिफॉर्म्स है और जो क्वालिटेटिव जो डेवलपमेंट्स हैं, जैसे मैंने बताया कि अभी सरकार ने एक भव्य स्कीम अनाउंस की है, उसके पहले सरकार ने जो इंसेंटिव्स दिए एक्सपोर्टर्स को के मद्देनजर के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए, भले ही हम डायरेक्ट तौर पे इंसेंटिव्स नहीं दे सकते, फिर भी हम फैसिलिटेट कर सकते हैं कि उनको जो ये वेस्ट एशिया क्राइसिस है उसका जो इम्पैक्ट है कैसे मिटिगेट किया जा सकता है। तो इन सब चीजों में सरकार बहुत तेज गति से आगे रिफॉर्म्स कर रही है। और जैसे चिनॉय साहब ने एक इमरजेंसी क्रेडिट लाइन की बात की
1: जी,
0: जो सरकार ने कोरोना के टाइम पे अनाउंस की थी, वो बहुत सक्सेसफुल थी। अब वेस्ट एशिया क्राइसिस में सरकार ने उस स्कीम को दोबारा अनाउंस किया, 2,55,000 करोड़ का जो स्कीम है, खास करके जो एमएसएमई है उनको सपोर्ट करेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल है उसको सपोर्ट करेगा। नाउ दे आर रेजिलिएंट, दे आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर लुकिंग हैड टू बिकम मोर एंड मोर प्रॉमिसिंग इन द इकोनॉमिक सिस्टम।
1: Okay, another point, Mr. Chinoy, which I would like your, view on, that logistics, PM Gati Shakti, where they've taken a multimodal approach to physical connectivity. Then there is logistics data bank 2.0, the way the technology has been used, where you can just track real-time cargo. Or there are so many reforms for faster custom clearances and stronger export support. How important are these for creating confidence in India as an investment destination, both for domestic and for the foreign investors?
2: So, Sunilji, you've talked of 3 different things and I'll answer each one separately. So, first, if you look at it, one of the challenges in the whole system was that, to be export, and Mr. Sharma talked about how exports have grown. A lot of our exports were import dependent. I mean, you take gems and jewelry. We import and then polish and then we send out, just for example, which is a large scale employment opportunity. And the challenges there were threefold. The first one was it took inordinate time to clear your goods from customs.
1: Yes.
2: And the processes were cumbersome. The second thing was it took a lot of time to get from your factory to the shipping location because of logistics.
1: Yes.
2: And the third was that when you exported, you didn't have access to credit and there was no guarantee for the export. Mm. Now, all these three issues have been actually addressed by the government.

0: एडॉप्शन में अभी हम सबसे आगे हैं। हमारी जो ग्रोथ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अडॉप्शन में, दैट इज सिग्निफिकेंटली फास्टर देन एनी एडवांस्ड इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम।
1: तो ये कंट्रीब्यूटिंग मेजरली टू
0: यस, जो सरकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन जो है, जो सरकार ने लगभग कोई 10,000 करोड़ के फंड से शुरू किया, तो आज वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ा हुआ है। अब कंपनीज नाउ आर कमिंग फॉरवर्ड टू अडॉप्ट मोर एंड मोर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव एंड कम्पेटिटिव इन दी नॉट ओनली इन दी डोमेस्टिक इकोनॉमी बट एट दी ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम।
1: डॉक्टर शर्मा, मिस्टर चनोय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।
2: थैंक यू।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे व्यापार में सुगमता, सुधारों से सशक्त होती अर्थव्यवस्था पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक दिलीप चिनॉय और डॉक्टर एसवी शर्मा। परिचर्चा का संचालन कर रही थी सोनू सूद। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
4: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, रात के 11:45 और 12 सेकंड हो चुके हैं। आज की नशरियात को बर्खास्त करने से पहले आपको जानकारी देते हैं कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। रात 9:30 पर रहीम रहबर का तहरीर करदा कश्मीरी ड्रामा नष्ट होगा। शाम 10 बजे प्रोग्राम नष्ट होगा। नशरियात में हमारे साथी मेजबान है मारू ब्रॉडकास्टर जहूर जाहिद, होस्ट रशीद निजामी। हमारी मामूल की नशरियात का आगाज 6:30 पर होता है। प्रोग्राम सुबह का ही समाप्त करें 6:35 पर। लाइव मॉर्निंग शो पैम सुबह समाप्त करें 7:10 पर। सुबह 8:45 पर आयुष का स्पॉन्सर प्रोग्राम नष्ट होगा सेहत बदन। मकामी रोजनामों से तरतीब दी गई सुर्खियां नष्ट होती हैं सुबह 9 बजे। सुबह 9:30 पर कश्मीरी मौसीकी पेश होगी। सुबह 10 बजे प्रोग्राम पेश होगा सूफी सदा, मौजू है सूफी कसवनो, तहरीरों पेशकश गुलाम रसूल आखून। सुबह 10:30 पर लाइव इंटरेक्टिव शो पेश होगा। प्रोग्राम के मेहमान है प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद अहमद गंगू, जो कि प्रोफेसर हैं फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री स्कॉस्ट कश्मीर में। मेजबान तस्लीमा और फहमीदा खान, अब्दुल हमीद तेली और उनके साथी चक्री उर्फ पेश करेंगे सुबह 11:30 पर, दोपहर 2:30 और सपर 4:30 पर। इनसे आप सिलसिलावार कलामे गुलाम कादिर, कलामे महबूबा मस्तूर और कलामे मासूम निसार समात करेंगे। समीन, खेर बवानी के मौके पर आप कश्मीरी लीला समात करेंगे दिन में 12:10 पर, 2:15 पर और रात 9 बजे। ख्वातीन की महफिल बज़्मे निस्वा आरास्ता होती है दिन के 12:40 पर और कल सोमवार है। कल का प्रोग्राम आपकी फोन कॉल्स पर मबनी है। मेजबान शाहीना रेशी। NCERT का स्पॉन्सर तालीमी प्रोग्राम पेश होता है दिन में 1:10 पर, जिसके फौरन बाद चंद फिल्मी नगमे भी पेश होंगे। फिल्म संगीत से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए नष्ट होता सपहर 3 बजे। पहाड़ी प्रोग्राम नष्ट होता सपहर 4 बजे। गोजरी प्रोग्राम का वक्त रहता है 5 बजे शाम। 6:05 पर प्रोग्राम पेश होगा गमी बायन हिंदे खतर। हालात हजरा पर मबनी प्रोग्राम शहरबीन आप तक पहुंचेगा शाम 7 बजे। प्रोग्राम वादी की आवाज ब्रॉडकास्ट होता है 8 बजे और रात 8:30 पर खेल शायकीन के लिए प्रोग्राम नष्ट होगा स्पोर्ट्स टाइम। मेजबान एजाज नास्की। प्रोग्राम में खेल खबरें पेश करेंगे सुहेल निसार। तो सामने ये थी तफसील।

कल हमारे यहाँ से नष्ट होने वाले प्रोग्रामों की। घर घर तक पहुंचने वाली यह आवाज आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन की है। मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमें सुन सकते हैं DTH और आकाशवाणी की लाइव मोबाइल ऐप पर। समीन, इस वक्त हमारी स्टूडियोज की घड़ी के मुताबिक शब के 11:49 और 12 सेकंड हो चुके हैं। हमारी आज की नशरियात अब बर्खास्त होती है मामूल की नशरियात लेकर। कल सुबह 6:30 पर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते। जब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान शौकीन हिलाल और मेरे कंट्रोल रूम में मौजूद इंजीनियर समीर अहमद और तारिक अहमद को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। शब खैर। जय हिंद।

जी बिल्कुल, दिन ढल चुका है और घड़ी बता रही है कि विकास अब तुम्हारे जाने का यहाँ से वक्त आ चुका है, क्योंकि मंजू ने स्टूडियो संभाल लिया है। तो विकास को दीजिए आज के लिए इजाजत इस वादे के साथ कि आप रखेंगे अपना ख्याल, उनका ख्याल, जो रखते हैं आपका ख्याल। नमस्कार।

0: इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्र पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देश भर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए देने की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम ने मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH नेशंस कप का खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने FIH महिला प्रो लीग में अपनी जगह सुनिश्चित कर ली। लाल रेमसियामी को प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। दाम्बुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के फाइनल में भारत ए ने श्रीलंका ए को 66 रनों से हराया। भारत के 378 रन के लक्ष्य के जवाब में श्रीलंका की टीम 311 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
1: 2014 तक भारत करीब

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही।

0: जाते हैं। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी जब विदेश यात्रा पर गए तब उन्हें चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई कुछ ताम्र पट्टिकाएं उपहार स्वरूप दी गई, वो उपहार जो भारत की एक अमानत थी। ये ताम्र पट्टिकाएं भारत पहुंची हैं और हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारे साथी इस पर बात कर रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रेरणा दी है हमें कि हम ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानें, इनका क्या रेलिवेंस है, इनकी क्या समसामयिकता है, ये हम समझे, और साथ ही जिस साम्राज्य से ये जुड़ी है, चोल साम्राज्य, हम उस साम्राज्य को भी आज थोड़ा समझें। तो सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं मन की बात का वो हिस्सा जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया है इन ताम्र पट्टिकाओं का।
1: मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई है। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है।
0: तो सुना आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें कितने रोचक तरीके से ये बताया है कि ये ताम्र पट्टिकाएं हमारे सामने इतिहास की एक खिड़की खोलती हैं, जिससे झांक कर हम अपना भविष्य देख सकते हैं। और इन ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जानने के लिए, चोल साम्राज्य के बारे में जानने के लिए हमने आज स्टूडियो में आमंत्रित किया है अपने 2 विशेषज्ञों को। आपसे उनका परिचय करवा रही हूँ। हमारे साथ हैं देवेश विजय जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं, शोध कार्य से आप जुड़े हुए हैं, इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। देवेश जी, आपका स्वागत है स्टूडियो में।
2: धन्यवाद नीलम जी।
0: हमारे साथ हैं मनीषा अग्निहोत्री जी, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के जानकी देवी कॉलेज में इतिहास की प्रोफेसर हैं। मनीषा जी, आपका भी स्वागत है स्टूडियो में।
3: धन्यवाद नीलम जी।
0: जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि हम चोल साम्राज्य के बारे में तो जानेंगे ही, लेकिन साथ ही ये जो ताम्र पट्टिकाएं भारत आई हैं, अपने घर लौट कर आई हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो मनीषा जी, मैं सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगी, क्या महत्व है इन ताम्र पट्टिकाओं का?
3: ये ताम्र पट्टिकाएं बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम अपने प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में देखें, जब

0: ये चोल साम्राज्य जिस समय अपने उरूज पर था, तो उस समय इस तरीके की संस्कृति जो है यहाँ पर प्रचलित थी। हमारे ज्यादातर जो रिकॉर्ड्स हैं, हमारे पास ऐतिहासिक जो रिकॉर्ड्स हैं, वो हम लोगों को कॉपर प्लेट्स पर मिलते हैं
1: जी।
0: और ये जो कॉपर प्लेट्स दिए जाते थे, इशू किए जाते थे, वो भूमि अनुदान से संबंधित होते थे या जो है राजस्व से संबंधित होते थे या कोई रॉयल डिक्री से संबंधित होते थे। तो ये जो चोलों की जो ताम्र पट्टिकाएं हमारे पास लाइडन से यहाँ पर पहुंची हैं
1: जी,
0: वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि ये हमारे इतिहास की जो है झलक देते हैं, एक जो हमारा अधूरा अध्याय था उस अध्याय को वो कंप्लीट करते हैं
1: जी।
0: क्योंकि ये जो पट्टिकाएं हैं इसके अंदर 21 जो है बड़ी प्लेट्स हैं और इसके अंदर 3 छोटी प्लेट्स हैं और उसके साथ साथ ये एक रिंग से बंधी हुई है जिसके अंदर हम देखते हैं कि एक जो है रिंग लगी हुई है जिसमें चोलों के जो शासन काल का स्टैंप है वो स्टैंप लगा हुआ है और उसके अंदर स्टैंप में आप अगर देखें तो वो 2 मछलियां बनी हुई हैं और एक बैठा हुआ आपको टाइगर नजर आता है जो कि चोलास का जो है वो सिंबल था, शाही जो है वो सिंबल था
1: जी।
0: ये बहुत महत्वपूर्ण जो है ताम्र पट्टिकाएं हैं क्योंकि इसके अंदर जो है हम देखते हैं जो चोल शासक राजराज प्रथम थे उन्होंने अनुदान दिया था, एक मोनेस्ट्री थी यहाँ पर नागपट्टिनम में, एक जो है मोनेस्ट्री बनाई गई थी तो वहां पर एक गांव था अनई मंगलम, उसको जो है अनुदान में मोनेस्ट्री को दिया गया था और वहां का जितना राजस्व था यहाँ पर इस मोनेस्ट्री को, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को अनुदान में दिया गया था। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो विहार था या मोनेस्ट्री थी उसको किसी चोल शासक ने नहीं बनाया था बल्कि जो है एक शैलेंद्र जो शासक थे साउथ ईस्ट एशिया के, उन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं कि ये जो ताम्र पट्टिकाएं हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, भाषा क्या है, तो हम देखते हैं कि ये द्विभाषी है। इसका जो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया है और दूसरा जो उसका भाग है वो तमिल भाषा में लिखा गया है। जो पहला भाग है संस्कृत भाषा, अगर आप देखें कि इस समय प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जितने भी अभिलेख आपको मिलते हैं तो उसमें संस्कृत भाषा से वो अक्सर शुरू होते हैं, चाहे आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख हैं उसके अंदर सारे अभिलेख आपके क्षेत्रीय भाषाओं वाले अभिलेख में भी संस्कृत भाषा का आपको हिस्सा मिलता है। ये जो संस्कृत भाषा जो है वो मुख्यतः इन्वोकेशन से शुरू होता है ये हिस्सा, जिसमें की स्तुति की जाती है ईश्वर की, जिससे वो साम्राज्य जो है जिसको अपना वो इष्ट देवता मानता है
1: जी।
0: फिर उसके अंदर हमें जीनियोलॉजी मिलती है, वंशावली मिलती है चोल शासकों की। ये जो वंशावली है वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है कि चोल शासक अपने आप को एक लेजिटिमेट रूलर प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने आप को विष्णु के भक्त बताते हुए अपने आप को सूर्यवंशी जो है शासक घोषित कर रहे हैं
1: जी।
0: हम जानते हैं कि वो क्षत्रिय स्टेटस क्लेम कर रहे थे चोलास, तो यहाँ पर उनकी ये जीनियोलॉजी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो अचीवमेंट्स हैं चोल शासकों की उसको यहाँ पे बयां किया गया है
1: जी।
0: तो इस पोर्शन को प्रशस्ति पोर्शन कहा जाता है और ये आपको ज्यादातर अभिलेखों में देखने को मिलता है जिसमें कि बड़ी बड़ी उपाधियां जो हैं चोल शासकों की उनको मेंशन किया गया है
1: जी।
0: दूसरा पोर्शन जो है वो आता है तमिल में, जो अनुदान दिया गया है इस विहार को उसका उसमें जिक्र किया गया है। तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होता है किसी भी अभिलेख का क्योंकि उसके अंदर वो सारे डिटेल्स होते हैं कि ये जो अनुदान दिया गया है एक पर्टिकुलर गांव का, जैसे हमारे संदर्भ में अनई मंगलम जो गांव है उसके राजस्व को अनुदान में दिया गया है, तो उसके अंदर बाउंड्री बताई जाती है
1: जी।
0: उस गांव की बाउंड्री क्या है, उसका मेजरमेंट होता है वो उसके अंदर दिया गया होता है और उसके अलावा क्या राजस्व लिया जाएगा, क्या एग्जेम्पशंस रहेंगे उनसे, क्या छूट होगी, वो सारे डिटेल इसके अंदर दिए जाते हैं
1: जी। तो अपने समय का ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन है
0: बिल्कुल,
1: जिसमें हमें उस साम्राज्य के बारे में भी पता चलता है, जो घटना घटित हुई है यानी जैसे भूमि अनुदान की गई है उसके बारे में पता चलता है, फिर उससे जुड़े नियम भी हैं और भाषाई संपन्नता भी पता चलती है और ये भी पता चलता है कि वो साम्राज्य अपने आप को लेकर, अपने स्तर को लेकर कितना गंभीर है, किस तरह से वो अपने प्रशासन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीजें वो इंगित कर रहे हैं, चाहे वो अपनी स्टैंप हो या वो भाषा हो, वो सब बता रहे हैं। तो ये जो छोटा सा उपहार है ये हमारे सामने इतिहास के बारे में इतना कुछ बताता है, ये आपने बताया हमें जी। बहुत ही रोचक ये जानकारी है।

0: और मैं यहाँ अब देवेश जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसा मनीषा जी ने कहा कि हमें चोल साम्राज्य की विशेषताएं इस ताम्र पट्टिका से पता चलती हैं, तो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर हम चोल साम्राज्य पर अब ध्यान दें तो साम्राज्य की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किस तरह से वो हमारे समाज से आज जुड़ती हैं।
1: मनीषा जी ने बहुत अच्छी विवरण दिया इनके जो स्पेसिफिक्स हैं ताम्र पट्टिकाओं के, पर कुछ चीजें होती हैं बिटवीन द लाइंस
0: जी,
1: वो समाज के बारे में बड़ी अच्छी हमें अंतर्दृष्टि देती हैं
0: जी।
1: तो बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने इस बार मन की बात में चोल वंश की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो पुस्तिकाएं हैं उनमें दक्षिण भारत का इतिहास
0: जी
1: उसकी ओर कभी कभी उपेक्षा रही है, तो इस वर्णन से उसकी ओर लोगों का ध्यान जाएगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। और खास तौर पे चोल वंश के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चोल वंश करीब 400 साल तक कायम रहा
0: जी,
1: और इसको इंपीरियल चोलास भी इनको कहते हैं, इनके पहले अर्ली चोलास भी थे, उन सबको मिलाकर तो ये करीब 1000 साल का इनका शासन है। लेकिन जो 800 यानी 9वीं शताब्दी से करीब शुरू होता है, विजयालू जो प्रथम शासक थे इनके
0: जी,
1: और राजेंद्र तृतीय 13वीं शताब्दी तक, तो ये करीब 400 साल तक इनका शक्तिशाली शासन रहा, ऐसा बहुत कम है। मुगल खाली 250 साल तक शासक किए थे, सल्तनत का शासन भी करीब 250 साल का था, मौर्य वंश तो केवल 150-200 साल का था
0: जी।
1: तो इतने लंबे शासन करने वाले और जो ओवरसीज जिनका एक्सपेंशन था इंडोनेशिया तक, मलेशिया और कंबोडिया, तो यहाँ भारतीय संस्कृति और को ले जाने वाला ये जो महत्वपूर्ण इतिहास है
0: जी,
1: उसकी ओर ध्यान आकृष्ट होता है इस वर्णन से। और इन ताम्र पट्टिकाओं में कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आपने पूछा कि जो और समाज के बारे में हमें क्या बताती है। पहली बात तो यही है कि ये शिव भक्त थे चोल वंश के राजा, लेकिन वो एक बुद्ध विहार को लैंड ग्रांट दे रहे हैं
0: जी,
1: पूरे एक गांव का राजस्व उसके लिए सुनिश्चित कर रहे हैं। तो ये जो हमारे आज भी जो हमारे शासन की नीति है, सबका साथ सबका विकास
0: जी,
1: ये वही नीति उस समय भी दिख रही है। ये बहुत अच्छी बात है कि वो सभी धर्मों को पैट्रनेज दे रहे थे
0: जी,
1: कोई भेदभाव नहीं था, सर्वधर्म संभाव की थोड़ी सी झलक इसमें दिखती है
0: जी।
1: वास्तव में जो दक्षिण का इतिहास शुरू होता है उस संगम युग से हमें उल्लेख उसका विवरण मिलने लगता है। उस समय तक कई धर्म धार्मिक भावनाएं, जैसे यहाँ का जो इंडिजिनस गॉड्स थे मुरुगन, उनके बारे में संगम में काफी वर्णन है। अभी पूरी तरह से जो वैदिक कल्चर है वो एस्टेब्लिश नहीं हुआ था बीच में, बल्कि जैन और बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रभाव था इस इलाके में। लेकिन पल्लव वंश और बाद में खासतौर पर चोल वंश के काल में शिव भक्ति, विष्णु भक्ति, ये सब ज्यादा स्थापित हुए और ब्राह्मणों को माध्यम बनाकर कृषि का विस्तार किया गया
0: जी।
1: अग्रहार उनको यही अनुदान दिए जाते थे ताकि वो गांव स्थापित करें
0: जी,
1: तो ये सब भी हमें पता चलता है। और एक बहुत बड़ी जो अच्छी चीज पता चलती है जो उस समय के और हमारे समाज की विशेषता रही है कि स्थानीय गांव के स्तर पर भी और शहरों में भी असेंबलीज होती थी
0: जी,
1: जिनके माध्यम से स्वशासन काफी हद तक चलता था। राजा कोई दिक्कत आए तो वो लोग हस्तक्षेप करते थे, लेकिन काफी चीजें लोग अपने स्वशासन के स्तर पर निपटा लेते थे
0: जी।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज इन पट्टिकाओं से भी पता चलती है
0: जी। तो हमें पता चला कि सर्व धर्म संभाव जो है उस वक्त था, फिर सबका साथ सबका विकास जो हम आज सुन रहे हैं ये भावना उस समय भी थी, और स्वशासन आपने बताया कि लोग अपना शासन खुद चलाते थे, जैसे हम आज देखते हैं कि स्थानीय इकाइयां हैं, पंचायत है, फिर उसके बाद जिला स्तर पर है, तो ये हमें चोल वंश में भी देखने को मिलता है जी। ये रोचक बातचीत हम जारी रखेंगे। मैं आपकी पसंद का एक गाना अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहती हूँ। कौन सा गाना सुनवा रहे हैं आप?
1: मेरी पसंद का तो देशभक्ति के कई गीत हैं
0: जी,
1: तो जो इसमें हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है, तो आप है प्रीत जहाँ की रीत सदा ये सुनवा दें
0: जी।
2: जब

0: तो इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य के बारे में और अपने देश लौटी ताम्र पट्टिकाओं के बारे में जो चोल साम्राज्य से जुड़ी हुई हैं। कार्यक्रम में हमारे दो विशेषज्ञ हैं, देवेश विजय जी हैं, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं दिल्ली विश्वविद्यालय से और शोध कार्य से आप जुड़े हैं। इतिहास और समाज शास्त्र विषय पर आपने कई पुस्तकें लिखी हैं। हमारे साथ दिल्ली विश्वविद्यालय की ही प्रोफेसर हैं मनीषा अग्निहोत्री जी। इतिहास की आप प्रोफेसर हैं, लिंग्विस्टिक से आप जुड़ी हैं और आज हम बात कर रहे हैं चोल साम्राज्य की विशेषताओं की। तो देवेश जी, अभी गाने से पहले आप जिक्र कर रहे थे स्वशासन का, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो स्वशासन था इसमें जो हमारे समाज के अलग अलग अंग हैं, अगर हम महिलाओं का जिक्र करें, अगर हम हाशिए पर आए लोगों का जिक्र करें या किसानों का जिक्र करें, तो कैसी नीतियां मिलती हैं, क्या जानकारी हमारे पास है इनसे जुड़ी?
1: देखिए, चोल वंश के इंस्क्रिप्शंस भी हैं और ताम्र पट्टिकाएं भी हैं
0: जी,
1: और ये बहुत अच्छी मात्रा में है।

में हमें इतने नहीं मिलते हैं क्योंकि यहाँ इन्वेजन ज्यादा हुए तो काफी नष्ट हो गए थे, लेकिन दक्षिण के छोर पर हमें ये काफी इंस्क्रिप्शन सरवाइव कर गए हैं। उससे हमें उस समय के समाज का काफी अच्छा दृष्टि स्पष्ट हो जाती है। ये इस समय कास्ट सिस्टम तो कंसोलिडेट कर रहा था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे यहाँ का जो सामंतवाद था एक्चुअली वो

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट UG पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। देशभर में लगभग 7 लाख पुलिसकर्मी, पर्यवेक्षक और कर्मचारी परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल थे। तमिलनाडु के पेरिया पालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 3 सदस्यीय जांच समिति गठित कर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। मणिपुर के कला और संस्कृति मंत्री खुराइजम लोकेन ने कहा है कि मणिपुर एक छोटा राज्य होने के बाद भी देश की सांस्कृतिक विरासत में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। विश्व संगीत दिवस और भाग्यचंद्र ओपन एयर थिएटर की 30वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने यह बात कही। कार्यक्रम में स्थानीय प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कर चुके 29 कलाकारों को सम्मानित किया गया। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति JD Vance कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। मैनचेस्टर में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:11 और 10 सेकेंड। गीत सुहानी प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज के साथ।

अभी जो आपने गीत सुना वो था साल 1959 की सुपरहिट फिल्म अनाड़ी से, और आवाज थी लता मंगेशकर और मुकेश की, संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। इस गीत को पिक्चराइज किया गया था राज कपूर और नूतन पर। और अब हम सुनते हैं अगला गीत फिल्म पतिता से।

फिल्म पतीता से लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत। संगीत था शंकर जयकिशन का और गीतकार थे शैलेंद्र साहब। और इस गीत को फिल्माया गया था उषा किरण पर। अगला गीत हम सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की।

महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

100.1 MHz पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 1:37 और 6 सेकंड और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुहाने। अगला गीत आप तक पहुंच रहा है रफी साहब की आवाज में।

रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप ये सदाबहार गीत फिल्म बरसात की रात से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1960 में और ये एक संगीतमय फिल्म थी जिसका निर्देशन किया था पीएल संतोषी ने और निर्माण किया था आर चंद्रा ने। फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी मधुबाला, भारत भूषण और श्यामा ने। अभी जो गीत हमने आपको सुनवाया था इसमें संगीत था रोशन का और गीतकार थे साहिर लुधियानवी साहब। ये फिल्म जो है वो दो प्रेमियों यानी कि मधुबाला और अमन हैदराबादी यानी कि भारत भूषण के इर्द गिर्द घूमती है और क्योंकि समाज जो है इन्हें स्वीकार नहीं करता। बहुत ही कश्मकश को लेकर लिखी और प्रदर्शित की हुई फिल्म थी ये और 1960 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय बॉक्स ऑफिस फिल्म भी रही ये। 21वीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी ये और आलोचकों ने इस फिल्म को काफ़ी सराहा। और अब हम सुनते हैं अगला गीत गीता दत्त की आवाज़ में।

रफी साहब और आशा जी की जुगलबंदी, ओपी नैयर साहब का जादुई संगीत और कमर जलालाबादी के शब्द आज भी जब हम सुनते हैं तो मन नाचने का जरूर कर उठता है। फिल्म का नाम था हावड़ा ब्रिज और ये फिल्म आई थी 1958 में। जब नाचने का मन हो ही गया है तो अगला गीत रफी साहब और आशा जी की आवाज़ में।

0: हाय ये हुस्न कजद हुस्न पे दुनिया लुट जाए, दिल इसे देखे तो मुश्किल है कि खामोश रहे। मेरा जिम्मा है किसी को भी अगर होश रहे।
1: हाय हाय हाय हाय सच्चे है कुछ

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है। सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 में भारत दुनिया के सबसे बड़े रक्षा आयातकों में शामिल था, लेकिन सरकार के प्रयासों और नीतिगत सुधारों के कारण

0: रक्षा उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। बृहन्मुंबई विद्युत आपूर्ति और परिवहन बेस्ट के कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच हुई बैठक के बाद समाप्त हो गई। इस हड़ताल के कारण पिछले कुछ दिनों से मुंबई में बस सेवाएं बुरी तरह प्रभावित थीं। यात्रियों को यात्रा के लिए लोकल ट्रेन, मेट्रो सेवा, टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहना पड़ा। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर कलीवफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने पर अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहने की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, केरलम, माहे, कोंकण, गोवा, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में अगले 3-4 दिनों संभावना है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow water craft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee Port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted

वो सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं तुम्हारे लिए है। वो सारे फूल जो फूल होने का दावा करते हैं

तुम्हारे लिए है। जो फूल बनेंगे आगे चलकर उन्हें भी अपने पास रख लो। खिलने वाले फूल तुम्हारे लिए खिलेंगे, जो फूल नहीं हैं वो भी फूल बनेंगे तुम्हारे लिए, जो मुरझा गए वो फूल भी तुम्हारे लिए लौट कर आएंगे एक दिन।

मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हम सफर मंजू। वक्त हुआ है 2:12 और 25 सेकेंड। रात सुरमई प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। रात सुरमई यानी एक ऐसा खास प्रोग्राम जहां पर हम रात के सुरों को, रात के दर्द को, रात के एहसास को अपनी बातों से, कुछ गीतों से और कभी कभी शायरी से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ के साथ, एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल के साथ।

सच कहूं तो मैं इस गजल को जब सुन रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वक्त रुक गया है, बस हवा कहीं ना कहीं महसूस हो रही है और उस ताजगी में मैं भीगती चली जा रही हूँ। जगजीत सिंह की आवाज़ और शब्द थे नवाज़ देवबंदी साहब के। इश्क में ऐसा ही होता है कि हम सब ने जिंदगी में कभी ना कभी किसी खास इंसान के आने की आहट ज़रूर महसूस की होती है, और जब उस इंसान के आने की आहट हम महसूस करते हैं तो हमारा दिल और दिमाग एक अजीब से एहसास से गुजरने लगता है, और वो एहसास शायद शब्दों में नहीं गज़लों में ही बयां होता है। अगर आप भी इस गज़ल को सुनकर यादों के गलियारों में निकल गए हैं तो आप लौट आइए, क्योंकि अगला गीत आपका इंतज़ार कर रहा है। अगला गीत किशोर कुमार और आशा जी की आवाज़ में।

ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें दिल अपना कहता है। दुनिया में लोग न जाने कितने चेहरों से मिलते हैं, रोज हजारों लोग हमारी नजरों के सामने से गुजरते हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा इंसान होता है जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को पसंद आता है। तो अगर आप भी इस वक्त किसी की यादों में खो गए हैं, या आपका वो खास आपके बिल्कुल सामने बैठा है, तो इस धुन में खुद को बह जाने दीजिए, क्योंकि अगली गजल आपका इंतजार कर रही है। अगली गजल आशा जी की आवाज़ में।

कहते हैं मोहब्बत में मांग ही क्या होती है, थोड़ा सा वक्त, थोड़ी सी तवज्जो और बहुत सारा भरोसा। और जब ये सब मिल जाता है तो दिल से बस एक ही आवाज़ निकलती है, प्यार की ये मदहोशी अब कम ना हो। अगला गीत किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी।

संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, पत्थर की दुनिया सबसे ईमानदार दुनिया, नींद सबसे धोखेबाज सुख, तुम मेरी सबसे लंबी प्रतीक्षा, मैं तुम्हारी सबसे अंतिम दृष्टि, मौत सबसे ठंडी लपट, पहाड़ बारिशों के लिए रोए तो रोने की आवाज क्या हो, मैं हूं तो मेरे होने का क्या हो, तुम अगर हो तो तुम्हारे होने की आवाज क्या हो। सौदेश्लविक मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ, और मैं हूं आपके साथ आपकी रात की हमसफर मंजू। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रात सुरमई। रात का दर्द, रात का एहसास, कुछ बातों और गीतों के माध्यम से। अगला गीत रफी साहब और लता जी की आवाज़ पे।

वादे के मुताबिक मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ। आपने एक बात नोटिस की, आज आसमान में चांद कितना मुकम्मल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आसमान में आज कोई खास महफिल सजाई गई हो। अक्सर लोग कहते हैं कि रात तन्हा होती है, सुनी होती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी की याद हमारे दिल में हो, चांद हो, तारे हो, सितारे हो, तो सब मिलकर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। क्या कहते हैं आप? मुझे मालूम है आप मेरे साथ हैं। अगला गीत आशा जी और महेंद्र कपूर की आवाज में।

रात सुरमई में आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। 3 बजे सुनेंगे आप हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 3:10 पर आपके साथ रहेंगी अर्चना गोयल, अर्चना सचदेवा। मुझे यानी अपनी रात की हम सफर मंजू को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट, आईएनएस दुनागिरी संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का

0: कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनू राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय सहित कई एजेंसियों ने सहयोग लिया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सीफूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमरीका और ईरान के बीच अंतरिक्ष समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलिबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघची कर रहे हैं। इथोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रोस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की है। अक्टूबर में नई संसद के सत्र शुरू होने और अबी को अगले 5 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुने जाने की उम्मीद है। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजान कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में ऐसी स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
0: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपये पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना

रात के 3:11 और 22 सेकंड हुए हैं। हम राही कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हुए आज मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अर्चना सचदेवा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वो 70 का दशक, वो गानों की झंकार याद आती है। वो 70 का दशक, वो गानों की झंकार याद आती है। तुम्हारी एक झलक से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। कोई पूछे जो हमसे कि क्या हाल है इस दिल का, तो लबों पर बस तुम्हारी ही बात आती है।

किशोर कुमार, लता मंगेशकर, मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना अमर अकबर एंथनी फिल्म से। सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, सोमवार से इतवार का सफर कितना सुहाना है, इस बहाने से दिल को बस तुम्हारे करीब आना है। कैलेंडर की तारीखें तो बदलती रहेंगी, उम्र भर पर हमारे प्यार का ये हफ्ता तो सदियों पुराना है।

किशोर कुमार और सुलक्षणा पंडित की आवाज में फिल्म अपनापन से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्यार करने से पहले ये बहुत जरूरी होता है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान लें, जो कि इस गीत में भी बताया गया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार द्वारा फिल्म दुनियादारी से।

0: प्यार करने से पहले जरूरी है ये मैं तुझे जान लूं और तू मुझे जान ले।
1: जाओ जाओ

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। हमराही कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं छलिया बाबू फिल्म से, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में।

चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। चलो एक बार फिर से जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दुनिया को छोड़ो, खुद से मुलाकात करते हैं। चल कहीं दूर निकल जाएं, जहां कोई जानता ना हो, बस तुम, मैं और खामोशी की बात करते हैं।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म दूसरा आदमी से अभी आपने गीत सुना। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। इतनी वफा, इतना सुकून, इतनी दीवानगी अच्छी नहीं। हद से ज्यादा चाहना भी कभी कभी मुकद्दर को रास नहीं आता। आइए सुनते हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म छाया से ये गीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आशा भोसले और मोहम्मद अजीज की आवाज में फिल्म मुद्दत से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म श्री 420 से।

दोस्तों, हमराही कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ एफएम गोल्ड चैनल पर। और कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए भारत अपने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण कर रहा है, नई क्षमता तैयार कर रहा है, नई कनेक्टिविटी बना रहा है, नदी जलमार्गों का विस्तार कर रहा है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक नेटवर्क विकसित कर रहा है, सागरमाला जैसे अभियान इसी व्यापक सोच का हिस्सा है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये तीनों पोत देश के राष्ट्रीय हितों की रक्षा और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने के लिए विश्वभर के लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग विभिन्न देशों के सभी क्षेत्रों के लोगों को स्वस्थ जीवन और कल्याण के लिए एकजुट कर रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में योग दिवस और अधिक लोगों को योग को अपना

0: ने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कूनो राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। वह चीता पुनर्वास परियोजना की प्रगति की समीक्षा भी करेंगी। दौरे के दौरान राष्ट्रपति सहरिया जनजाति के सदस्यों से बातचीत करेंगी, जो चीता मित्र, चीता निगरानी दल, स्थानीय वन कर्मचारी और पर्यटक गाइड के रूप में काम कर रहे हैं। नीट यूजी पुनर्परीक्षा कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच संपन्न हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने बताया कि देश भर के 5,440 जबकि विदेश के 14 केंद्रों पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 भाषाओं में आयोजित की गई। एजेंसी ने बताया कि परीक्षा के संचालन में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, विदेश मंत्रालय, डाक विभाग, भारतीय वायुसेना और गृह मंत्रालय समेत कई एजेंसियों का सहयोग लिया गया। तमिलनाडु के पेरियापालयम स्थित सी फूड निर्यात कंपनी में अमोनिया गैस रिसाव के कारण 7 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक श्रमिक प्रभावित हुए हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल और रासायनिक, जैविक तथा परमाणु आपदा से निपटने वाली विशेष टीमों ने तुरंत राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घटना में हुई जानमाल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने घटना की उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते को मजबूत करने और पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के लिए स्विट्जरलैंड में वार्ता जारी है। यह वार्ता कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। अमरीकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कर रहे हैं, जबकि ईरान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गलीबफ और विदेश मंत्री अब्बास अराघाची कर रहे हैं। इथियोपिया की सत्तारूढ़ पार्टी ने संसद में बहुमत बरकरार रखा है। देश में 1 जून को मतदान हुआ था। इथियोपिया के राष्ट्रीय चुनाव बोर्ड ने बताया कि प्रधानमंत्री अबी अहमद की प्रॉस्पेरिटी पार्टी ने प्रतिनिधि सभा की 501 सीटों में से 438 सीटों पर जीत दर्ज की। मैनचेस्टर में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 159 रन का लक्ष्य दिया। जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 5 गेंद शेष रहते ही लक्ष्य हासिल कर लिया। मारिजाने कप को शानदार 81 रन की पारी के चलते प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मौसम विभाग ने असम और मेघालय में शनिवार तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi has emphasized the importance of maritime strength in the modern world, stressing that strong maritime capabilities are a deciding factor for countries' economic and strategic influence. He stated that India fully understands this reality and is preparing itself accordingly.
2: 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपये के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपये पहुंच रहा है। भारत में बने रक्षा उपकरण अब दुनिया के 80 से अधिक देशों तक पहुंच रहे हैं। 12 साल में जो प्रगति हुई है वो ये बताती है कि जब नीति स्पष्ट हो तो देश में कितना बड़ा परिवर्तन हो सकता है।
1: The Prime Minister commissioned 3 indigenously designed and built naval ships, an advanced stealth frigate INS Dunagiri, a large survey vessel INS Sanshodhak, and an anti-submarine warfare shallow water craft INS Agra at the Shyama Prasad Mukherjee port in Kolkata yesterday. Mr. Modi noted that more than 200 MSMEs contributed to their construction, generating substantial employment and economic activity across the country. Highlighting recent achievements, the PM said, more than 40 indigenously built warships and submarines have been inducted into the Indian Navy over the past few years. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-exam.

सुबह के 4:11 और 14 सेकंड हुए हैं। सुबह की इस सुहानी बेला में आप सभी को मेरा यानी अर्चना सचदेवा का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। दोस्तों, जून का महीना चल रहा है और आप सब आजकल छुट्टियों का एंजॉय कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि यही तो वो दिन है जब आप अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी से दूर सुकून में हैं। क्यों, सही बात है ना?

0: मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म आस का पंछी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, जीवन में खुशी गम साथ साथ ही चलते हैं। खुशी है तो उसमें भी सहज रहिए और गम है तो उसमें भी।
1: उठ सबके

बातों बातों में फिल्म से अभी आपने गीत सुना अमित कुमार पर्ल पद्म से और लता मंगेशकर की आवाज में। दोस्तों, जिंदगी में कभी हम जीत जाते हैं तो कभी हार जाते हैं, कभी पास होते हैं तो कभी फेल हो जाते हैं। पर अगर हम कहीं फेल होते हैं या कहीं हार जाते हैं, उसमें भी हमें निराश नहीं होना है, फिर भी आगे बढ़ते जाना है।

आशा भोसले और मन्ना डे की आवाज में फिल्म सीता और गीता से अभी आपने गीत सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। अरुणिमा कार्यक्रम में आज मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त अर्चना। आइए अगला गीत सुनते हैं दिल की राहें फिल्म से, मन्ना डे और उषा मंगेशकर की आवाज में।

0: संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: 10 दिन बीत गए बैठो, मैं तो थक गई चलते चलते।
2: अरे सावली, काबुल के गुलजार खान कह गए हैं कि तन हारो मन हारो धन दौलत हारो खुशी हिम्मत मत हारो, किस्मत पर भरोसा रखो। अभी तो हमारे पास पूरे 2 महीने और 20 दिन बाकी हैं।
1: बैजू, चरिंदे जागे परिंदे जागे, यहाँ तक के मच्छर और मक्खी जागे, मगर ना जाने हमारे किस्मत कब जागेगी।
2: अरे वो तो अभी अंगड़ाई ले रही है, बस जागी समझो। अरे हम क्यों करती है पगली, मुस्कुराना मुस्कुराना, एक जरा सैंपल आप नहीं थोड़ा सा ये।

0: लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में फिल्म मेरी जंग से अभी आपने गीत सुना। आइए सुनते हैं अगला गीत, पर उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी,

गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म छूमंतर से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, प्रभु की शक्ति से ही हमारा तन मन सब चलता है, पर साथ में अगर अपने पर विश्वास हो तो फिर देखिए आपके काम कैसे बनते चले जाएंगे।

वाणी जयराम की आवाज में फिल्म गुड्डी से अभी आपने गीत सुना। दोस्तों, अगर हम किसी से प्यार से बोलते हैं तो आपने देखा होगा कि हमें भी उसके बदले में प्यार ही मिलता है, परंतु अगर हम किसी से गुस्से में बात करते हैं तो सामने से भी आपको गुस्सा ही मिलेगा। तो देखिए, अब आपने क्या करना है।

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सौतन से अभी आपने गीत सुना। आइए अब अगला गीत सुनते हैं गोरा और काला फिल्म से मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज में।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम से अब अपनी दोस्त अर्चना को अनुमति दीजिए और आगे भी इसी तरह हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। मैं आपके साथ बनी रहूंगी सुबह 6 बजे तक और कुछ ही पलों में आप सुनिएगा समाचार।